ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज़्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
3: प्रातः बेला की आराधना

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भारत

कार्यक्रम का आरंभ मातृवंदना से। सुबह उठने के साथ मातृभूमि का प्रथम स्पर्श न केवल अपनी जन्मभूमि का सम्मान करने का प्रतीक है, बल्कि ये एक अवसर होता है पृथ्वी की सहनशीलता का भाव स्वयं में संचारित करने का। अतः प्रथम नमन मातृभूमि को।

जिस परमात्मा ने हमें अपने अंश से रचा और हमारे लिए ये संसार बनाया, हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए। और यह तभी संभव हो पाता है जब हम उस परम पिता की आराधना करके अपने रचनाकार को समझने का प्रयास करें।

जब तक हमारे चारों ओर अंधेरा होगा तब तक हम केवल इधर उधर भटकते रहेंगे और अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग खोजते रहेंगे। लेकिन परमात्मा की भक्ति, उसका स्मरण अहम के अंधकार में प्रज्वलित उस दीपक के समान है जिसका प्रकाश हमें इस मोह माया के अंधकार से बाहर निकाल सकता है।

ईश्वर की भक्ति में रम जाना स्वयं में उसे स्वीकार करने का प्रतीक है, क्योंकि यही वो चरण है जहां से हम ये जानने की शुरुआत करते हैं कि हमारा अस्तित्व ईश्वर द्वारा रचे गए संसार रूपी महासागर की एक बूंद के समान है। परंतु जब तक हम इससे अलग रहेंगे तब तक स्वयं को ही महासागर समझने की भूल करते रहेंगे।

हमारे स्थूल शरीर में विद्यमान प्राण के रूप में सूक्ष्म शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम अपने अंतर मन में उत्तम विचारों को ग्रहण करें, क्योंकि हमारे मनोभाव का निर्मल हो जाना ही उस ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाने का पर्याय होता है।

आज के इस कार्यक्रम में आपने समूह स्वर में देशभक्ति रचना के बाद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, के महावीर, नरेंद्र चंचल, मन्नाडे और साथियों की गाई भक्ति रचनाएं सुनी। अब आज की वंदना संपन्न होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

आकाशवाणी भोपाल से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, स्वर रंजना जोगलेकर का, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी, जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है, जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

0: रंजना जोगलीकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए चिंतन। विषय है ध्यान, आलेख अवधेश श्रीवास्तव का।
1: पतंजलि योग सूत्र में

योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिनमें से अंतिम 3 अंग क्रमशः धारणा, ध्यान एवं समाधि नाम से विख्यात हैं। सामान्यतः धारणा से आशय एकाग्रता तथा ध्यान से आशय धारणा का लगातार बने रहना है। ऐसे परिपक्व ध्यान की परिणति समाधि में होती है, परंतु यहां ये समझना आवश्यक है कि एकाग्रता ध्यान का पर्याय नहीं है। योग सूत्र में कहा गया है, तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम, अर्थात जहां चित्त ठहरा हुआ है उसमें वृत्ति का एक तार चलते हुए जागृत रहना। ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शब्द धीय से हुई है। इसका आशय केवल यही है कि जहां तरंगायत मन शांत हो जाए, संकल्प विकल्प और विचार शून्य हो सके, चित्त की ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है। ध्यान की ऐसी अवस्था साक्षी भाव को जन्म देती है। साक्षित्व ही समाधि का लक्षण है। मनुष्य सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला बहिर्मुखी, जिनकी कर्म में अधिक प्रवृत्ति होती है। गीता में ऐसे लोगों के लिए कर्म योग की शिक्षा दी गई है। इसका आशय केवल यही है कि ध्यान को कर्म से जोड़ा जाए, अर्थात अनाशक्त भाव से उसमें लिप्त हुए बिना कर्म संपादित किए जाएं। अर्जुन इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। सामान्य व्यक्ति कर्म फल में निष्ठा से कर्म करते हुए मानसिक रूप से लिप्त रहता है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति विचारशील होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति चिंतन या विचारों में होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्ञान योग महत्वपूर्ण है। अपने चिंतन या विचारों को ध्यान से जोड़ा जाना ही ज्ञान योग है। शंकराचार्य को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। सामान्य व्यक्ति दिशाहीन विचारों की दौड़ में लिप्त रहता है और अपनी पूर्व धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में भटकता है। तीसरे प्रकार के व्यक्ति भावुक या भाव प्रधान व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग उपयुक्त है। भावनाओं की तरंगों को ध्यान से जोड़ा जाना ही भक्ति योग है। चैतन्य महाप्रभु एवं मीराबाई इसके उदाहरण हैं। सामान्य व्यक्ति भावनाओं में लिप्त होकर दुखी होता है। अष्टावक्र ने इन 3 प्रकारों से हटकर एक और सूत्र सुझाया है। उनके अनुसार साक्षी भाव चित्त का नैसर्गिक गुण है, जिसे हमने भुला दिया है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, अपितु एक कला है। हमें अपने दृष्टिकोण में बदलाव भर करते जाना है। अष्टावक्र सीधे ही साक्षी भाव के उपलब्ध होने पर बल देते हैं। ध्यान का निकटवर्ती अर्थ है जागृत रहना या होश में रहना। सामान्य व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सोचता विचारता है, प्रसुप्तावस्था में होता है। यही हमारे दुख का मूल कारण है। इस श्रेणी में राजा जनक को रखा जा सकता है। स्पष्ट है कि जनक राजा होते हुए भी उनका दूसरा नाम विदेह है, अर्थात देह युक्त होने पर भी वे कर्म, विचार एवं भाव से अलिप्त हैं। भगवान बुद्ध इस संबंध में कहते हैं कि जो भी है उसे स्वीकार किया जाए, अस्वीकार ही दुख है। ऐसे स्वीकार भाव के लिए उन्होंने तथाता की संज्ञा दी है। ध्यान की विधि उनके द्वारा जो अन्वेषित की गई है उसे विपस्सना कहा गया है। विपस्सना का एक चरण है पानापानसति, जिसके द्वारा प्रथमतः श्वास प्रश्वास के पर्यवेक्षण का अभ्यास दृष्टा भाव से किया जाता है। कर्म, विचार या भावनाओं को साक्षी भाव से देखना, अर्थात उसमें संलिप्त हुए बिना जीने की कला ध्यान है। हमारा चित्त हमारे मन, बुद्धि एवं अहंकार से प्रभावित होता है। मन का विषय प्रेक्षण, बुद्धि का विषय तर्क है। ध्यान की अवस्था प्राप्त होने पर ये अच्छी तरह से समझ में आता है कि मन और अहंकार का अस्तित्व ही नहीं है। वास्तविक सुख या आनंद का स्रोत ध्यान से साक्षित्व को प्राप्त करना है, अपितु ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि साक्षी भाव का होना ही ध्यान है। इस प्रकार ध्यान साधन नहीं, अपितु स्वयं में साध्य है।

0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था ध्यान, आलेख अवधेश श्रीवास्तव का था, वाचन स्वर डॉक्टर अरविंद सोनी का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया। आकाशवाणी भोपाल से लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। वार्ताकार हैं डॉक्टर रुपेंद्र खांडवे।
1: आज कृषि चर्चा में किसान भाइयों नमस्कार, हम एलोवेरा की खेती पर आज चर्चा करेंगे। एलोवेरा की खेती पे आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम जो हमारी गेहूं है, सोयाबीन की फसलें, ये तो हम लगातार लेते ही जा रहे हैं, पर कुछ ज़मीन हमारे पास ऐसी भी हैं जिन पे हम इन फसलों का उत्पादन उतना अच्छा नहीं ले पाते। तो ऐसी जो बंजर ज़मीन है या जो अनुपजाऊ ज़मीन है या जिस पे हमको फसल का उत्पादन अच्छा नहीं मिल रहा है, उन ज़मीन पर हम एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। अब एलोवेरा की खेती करने के लिए जो पानी का साधन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसको कम पानी में भी हम इसकी फसल अच्छी ले सकते हैं। अब जहाँ तक के फसल लेने की बात है, तो फसल लगाने के लिए जो फसल हमने देखी हुई है, क्योंकि हमको पहले इसकी फसल देखना पड़ेगा कि इसकी फसल जिस किसान भाई के पास या किसी रिसर्च स्टेशन में या कंपनी में, प्राइवेट औषधि कंपनी है, वो लगाते हैं, तो वहाँ से इसके हमको बल्ब लेना पड़ता है, जो बल्ब या कंद कहते हैं उनको। तो कंद जो है, वो जो मुख्य फसल रहती है, उसी में से कंद बगल से निकलते हैं और वो कंद लेके हम उसकी रोपाई कर सकते हैं। तो इसको जो रोपाई है, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखकर हम उसकी रोपाई कर सकते हैं। जहाँ तक कि इसमें खाद की मात्रा है, तो क्योंकि ये एक औषधि फसल है, तो ज़्यादातर हम मतलब कोशिश करते हैं, फसल भी हो जाती है, कि हम इसको गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसका उपयोग करके हम इसको फसल को लें। क्योंकि जहाँ पे हम रोपण कर रहे हैं, क्योंकि दूर पे भी लग रही है, तो वहाँ पे जैसे हम एक से दो मुट्ठी अगर गोबर की खाद डाल देते हैं, तो उसमें हम बहुत आराम से इसकी फसल ले सकते हैं बगैर किसी रासायनिक खाद का उपयोग करते हुए। इस प्रकार से हम रोपाई कर देंगे। इसके रोपाई का जो सबसे उचित समय है, वो जुलाई से अगस्त है, क्योंकि जुलाई से अगस्त जब हम कंद को रोपते हैं, तो प्राकृतिक रूप से भी हमारी मिट्टी में नमी रहती है, तो शुरू की अवस्था में थोड़ा सा कंदों को नमी की आवश्यकता रहती है, जिससे उनकी वृद्धि अच्छी होती है। और एक बार हम इस फसल को लगा लेते हैं, तो आप समझिए जो पहली उसकी तुड़ाई है, वो 10 से 12 माह में हो जाती है। और जो कंद हमने लगाया, उसके बाहरी तरफ बड़ी बड़ी मांसल पत्तियां हो जाती हैं, और जब वो 8 से 12 इंच के लंबाई के आकार की हो जाएंगी, पक जाएंगी, काफ़ी उनमें गुदा आ जाता है, और उसको हम नीचे से तोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से वो टूट जाती हैं। मुख्य पौधे को किसी भी तरीके से बगैर उसको हलचल किए हुए आराम से पत्तियां निकल आती हैं, और एक पौधे से 3 से 5 पत्तियां आराम से निकल आती हैं। थोड़ा बहुत मतलब पौधे जो जहाँ पे हमने रोपे हैं, उसके आसपास हमको गोबर की खाद है, या अगर रासायनिक खाद भी डालना है, तो थोड़ा यूरिया, DAP और पोटाश बहुत कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा डालें, तो और उसको गुड़ाई कर दें, तो उस पर हम ये फसल को ले सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे हम फसल लेते हैं, तो समझ लीजिए आप कि एक हेक्टेयर में आप 30 से 40 टन जो पत्तियों का वजन है, वो एक हेक्टेयर में हमको प्राप्त हो जाता है, और दूसरी कटाई भी फिर इसी तरीके से हमको लगभग मिलती रहती है। तो जो खर्चा है इसमें, शुरू में तो ज़रूर हमको समझ लीजिए आप 1 लाख 1 लाख 20 हज़ार, क्योंकि हमको कंद खरीदने पड़ेंगे, तो उसमें कंदों का भी, पर ये जो खर्चा है, ये 3-4 साल का उसमें खर्चा मिला हुआ खर्चा जो प्रबंधन में लगता है। बस इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका बाज़ार आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो जब भी आप इसकी खेती करें, पहले आराम से उस एरिए को देखें, घूमें, फसल को देखें, और यदि कोई औषधि कंपनी है, तो उससे आपस में पहले समझौता भी कर लें। अगर और मेरा तो यह है कि आप थोड़ा सा एक समूह में इसकी खेती करें, तो आपको व्यापार में आसानी होगी। धन्यवाद।
0: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एलोवेरा की उन्नत खेती विषय पर जानकारी डॉक्टर रुपेंद्र खांडवे से। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल, स्थल

गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ

0: भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विकशक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरकशक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विककल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया

0: उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5 बजे से। इसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 7

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी

0: आज का 20 मिनट पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल में आप सुनेंगे मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा से की गई बातचीत, हिंदी ग्रंथ अकादमी के 56वें स्थापना दिवस पर की गई चर्चा और बेहतर पोस्चर हेतु योग की भूमिका पर बातचीत होगी। कुछ बातों के साथ फिल्मी नगमे सुरमई सवेरा कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे। रमेश इंदुबासु के गाए कुछ गीत और भजन आप सुन सकेंगे सुबह 9:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत। सुबह 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम में ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता का विषय होगा भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और डॉक्टर सुभाष जाटव का काव्य पाठ होगा। जिले की चिट्ठी अपने निर्धारित समय सुबह 10 प्रसारित होगी। कुछ बातों के साथ फिल्मी नगमे गीत सागर प्रोग्राम में सुबह 10:05 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में सुबह 10:30 पर सुनिएगा सलीम अल्लाह वाले का तबला पर बजाया ताल एक ताल। शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में आप सुनेंगे डॉक्टर मीना यादव से सतत कृषि में विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका विषय पर की गई भेंटवार्ता। आपको पुनः याद दिला दें सुबह 9:30 पर शब्द सागर कार्यक्रम में ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता का विषय होगा भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और डॉक्टर सुभाष जाटव का काव्य पाठ होगा। ये थी जानकारी आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। दिन में 11 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। मध्याह्न 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक भुवन मोहनी की 5वीं कड़ी। आपकी फरमाइश कार्यक्रम मध्याह्न 12 और दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे। महिला कार्यक्रम दिन में 1 होगा। लोक संगीत का कार्यक्रम दिन में 1:30 पर, दिन में 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5 से। इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम कहकशा में पेश करेंगे महफिले समा। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सलीम अल्लाह वाले का तबला पर बजाया ताल तीन ताल। इसके अलावा फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 11:00, शाम 5:33 पर, शाम 6:30 पर, रात्रि 8:15 पर और रात 10:00। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था वाला देश बना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश, स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज से शुरू होगा विशेष पखवाड़ा, प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। और राज्य में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले हजार वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। समारोह स्थल पर विकास कार्यों और योजनाओं को जन सामान्य के सामने रखने के लिए प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला विकास समितियों का राजधानी भोपाल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विकास समितियां विकास गतिविधियों के लिए शासकीय योजनाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन आज देवास जिले के कन्नौद तहसील के डोकाकुई गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान डॉ. मुरुगन सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। इस अवसर पर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, संतान, दत्तक नियम जैसे विभिन्न विषयों पर राय दी। इस उच्च स्तरीय समिति में सदस्य और उत्तराखंड के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और डॉ. शोभा वेथनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर, समाजसेवी बुद्ध पाल सिंह ने सुझाव रखे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की

की पुण्यतिथि आज से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का मानना था कि युवा राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने युवाओं को नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक दायित्व के लिए प्रेरित किया। इस पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पखवाड़े के दौरान युवा सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। इससे नई पीढ़ी को राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्यप्रदेश और वन्य जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 का समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों और डिजाइन हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही शिल्पकारों, डिजाइन विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से वो संवाद करेंगे। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा शुरू की गई गोल्डन आवर हीरो अभिनव पहल ने जिले में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। इस अभियान के प्रभाव से जनवरी से मई 2026 की अवधि में सड़क दुर्घटनाओं में 33%, मृत्युदर में 23% और तथा गंभीर घायलों की संख्या में 52% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना के बाद का पहला आधा घंटा गोल्डन आवर घायल व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए नरसिंहपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित ढाबों, पेट्रोल पंप संचालकों, स्थानीय ग्रामीणों को चिन्हित कर उन्हें CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उज्जैन में अगले वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सागर पुलिस लाइन सभागार में पुलिसकर्मियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे बैच का कल शुभारंभ किया गया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। 2024 में चीन ने हुलुनबुइर में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला है। 2024 में हुए मुकाबले में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी। प्रदेश में मॉनसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह, उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में रबी मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली और एक सिला एक उत्पाद में चयनित इंदौर के मालवी आलू को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान मिल गई है। खंडवा में आगामी मुहर्रम पर्व के दौरान कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है। तंबाकू नियंत्रण और तंबाकू मुक्त युवा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आगरमालवा में कल कार्यशाला हुई, जिसमें तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर चर्चा हुई। झाबुआ कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से बामनिया क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। कटनी में राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कटनी के 17,000 नागरिकों ने ऑनलाइन लिखित रूप से अपने सुझाव शासन को प्रेषित किए। डिंडौरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जल संचय और जन भागीदारी के माध्यम से किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: दुनिया को जिन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया वो थे महात्मा गांधी।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।

0: आकाशवाणी भोपाल से लीजिए प्रस्तुत है दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार भोपाल के सभी सुनने वालों को संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है और सभी को हम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। हमें आशा है कि आपने विश्व योग दिवस पूरे मनोयोग से मनाया होगा और ये संकल्प भी लिया होगा कि केवल इंटरनेशनल योगा डे पर ही नहीं बल्कि रोजाना की दिनचर्या में योग को स्थान हम देंगे। योग को नियमित इस्तेमाल करने से हम स्वस्थ रहते हैं, वहीं स्वस्थ रहने से हर क्षेत्र में कामयाबी के द्वार भी हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। योग विशेषज्ञों के साथ साथ कई ओलंपियन भी यही राय रखते हैं कि उन्हें खेलों में बेहतर प्रदर्शन में योग बहुत काम आता है। ओलंपियंस की जब बात निकली है तो आज 23 जून का दिन इंटरनेशनल ओलंपिक डे यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। 23 जून 1894 को IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी और 1948 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है तेज ऊंचा मजबूत साथ मिलकर यानी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, जबकि उद्देश्य है पूरी दुनिया में खेलों को बढ़ावा देना और लोगों को उनकी उम्र लिंग या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना ज्यादा खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। यकीनन आज ओलंपिक गेम्स के जरिए इस उद्देश्य को पूरी तरह सार्थक होते हम देख रहे हैं। दुनिया के अनेक देशों के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में अपने कौशल का प्रदर्शन कर हासिल कर रहे हैं स्वर्ण रजत और कांस्य यानी गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज। और भारत की बात करें तो पहली बार 1900 में भारत ने ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया और पहला एशियाई देश बना। तब से लेकर अब तक नई ऊर्जा उत्साह उमंग से प्रतिभागिता कर अब तक 40 से ज्यादा पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। हॉकी, शूटिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, कुश्ती, भाला फेंक, वेटलिफ्टिंग जैसे तमाम इवेंट में भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और हमें उम्मीद है कि 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में भारत के पदकों की फहरिस्त बहुत बड़ी होगी। हम सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक दिवस पर कहते हैं ऑल द बेस्ट। तो नमस्कार भोपाल की महफिल का आगाज हो चुका है और इस महफिल में अब से लेकर 8 बजे तक बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि आज हम बात करेंगे योग की, साथ ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में ये पहला गीत है।

0: और नमस्कार भोपाल में। आज हम आप तक पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों पर चर्चा। हिंदी ग्रंथ अकादमी का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस संबंध में जानकारी आप तक पहुंचेगी और बात करेंगे योग विशेषज्ञ के साथ। बस रोजाना की तरह सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: मैं हूँ राजन मिश्र।
2: मैं हूँ साजन मिश्र। आप सुन रहे हैं
1: नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार भोपाल।
0: सुबह के 7:26 और 50 सेकंड हुए हैं। देखते हैं समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। आज जिस खबर को तकरीबन हर अखबार ने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है, उसमें लखनऊ में हुए हादसे की खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार 1:30 बजे एक इमारत में आग लग गई। हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो गई, इसमें 3 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित किया गया है। दल को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है सीएस की अध्यक्षता वाली कमेटी से मंजूरी, भोपाल वेस्टर्न बाईपास एक कदम और बढ़ा, कैबिनेट की मंजूरी बाकी। भोपाल वेस्टर्न बाईपास को राज्यस्तरीय साधिकार समिति की मंजूरी मिल गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई एसएलईसी की मीटिंग में वेस्टर्न बाईपास को मंजूरी दी गई, अब ये कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। और यूनिसेफ की रिपोर्ट बता रही है कि भारत में जलवायु जोखिम पर चिंता, बढ़ती गर्मी से बच्चों में 15% तक बढ़ सकता है ठिगनापन। सामान्य से कम मानसून और बढ़ती गर्मी का असर बच्चों के पोषण पर पड़ने लगा है। यूनिसेफ इंडिया और ICRISAT की रिपोर्ट भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन के अनुसार जलवायु जोखिम बढ़ने पर बच्चों में स्टंटिंग और कुपोषण 15% तक बढ़ सकता है। और मध्य प्रदेश से एक कदम दूर मानसून दक्षिण छत्तीसगढ़ तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश से सिर्फ एक कदम दूर है। मानसून फिलहाल पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से तक पहुंच चुका है और अगले 48 घंटों में ये पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करेगा। लिहाजा मध्य प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून की धमाकेदार एंट्री होगी। और फुटबॉल का खुमार बढ़ता जा रहा है। कल की जो खबर है वो ये है कि मैसी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में 17वां गोल कर बने सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मैसी फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच में 40वें मिनट में किया गया उनका गोल करियर का 17वां वर्ल्ड कप गोल रहा, जिसके साथ उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोसे का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये थी समाचार पत्रों की ताजा तरीन खबरें। यदि आप किसी भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं, जनहित में आपका कोई कार्यक्रम है तो सूचना हमें जरूर दीजिए, क्योंकि नमस्कार भोपाल के माध्यम से हम पहुंचते हैं दूर दूर तक। आपके काम की बातें, आपके आयोजनों की बातें कई श्रोताओं तक पहुंचती हैं। और चलिए कार्यक्रम में अब आ रहा है लक बाय चांस फिल्म का ये गीत। संगीत है शंकर असन लॉय का।

0: और इस गीत के बाद बारी है छोटे से ब्रेक की, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के स्थापना दिवस की। जारी है नमस्कार भोपाल।
1: मैं हूं बेंटल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय प्रोग्राम नमस्कार भोपाल।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है जिसका नाम है नमस्कार भोपाल। नमस्कार भोपाल का आनंद आप ले सकते हैं मीडियम वेव के साथ साथ डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर। 7:32 हुए हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी अपनी स्थापना के 55 साल पूरे कर चुकी है। कल 22 जून को इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इस मौके पर कल विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन, प्रगति पथ, रचना और एक ब्रोशर का विमोचन हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पांडुलिपि निर्माण में योगदान देने वाले शिक्षाविदों का सम्मान भी शामिल था। हमने बात की संयुक्त संचालक उत्तम सिंह चौहान, सहायक संचालक राम विश्वास कुशवाहा और सारस्वत सम्मान प्राप्त प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया के साथ।
2: मध्य प्रदेश की जो चेतना से संबंधित भाषा है हिंदी है, उसमें उच्च गुणवत्ता और उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करके, संदर्भ ग्रंथों का निर्माण करके निरंतर प्रगतिशील है। हमारे समक्ष महत्वपूर्ण चैलेंज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद में आया था। निश्चित समय सीमा में अध्यादेश 14(1) और 14(2) के अनुसार पुस्तकों का निर्माण करके और समय अवधि में छात्रों तक उपलब्ध कराना था। विगत 4 वर्षों से निरंतर अथक प्रयास से ये विभिन्न हमारे सारस्वत विद्वानों की सहायता से पूर्ण किया है। उसी संदर्भ में 56वां स्थापना दिवस है। जो ये दिवस होता है, ये अब आगे के संकल्प क्या है उसको स्मरण करना है और पुरानी उपलब्धियां और जिनमें जिन्होंने सहायता की है उनका सम्मान करना है।
0: जॉन साहब, मैं जानना चाहता हूं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो प्रकाशन है अपने आप में बहुत ही विशेष होते हैं, बहुत ही अनूठे होते हैं और उपयोगी भी होते हैं, तो इनका जब हम प्रकाशन करते हैं तो कौन सी बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है ताकि विद्यार्थियों तक जो हम विषय वस्तु पहुंचा रहे हैं वो उनके लिए उपयोगी हो, बेहतर भविष्य के निर्माण सहायक भी बने।
2: देखिए, विद्यार्थियों की दृष्टि से सबसे पहले हम उच्च शिक्षा विभाग से जो हमको पाठ्यक्रम प्राप्त होता है उस पाठ्यक्रम के अनुसार लेखक मनोनयन समिति के संयोजक हैं, उनको निवेदन करते हैं, वो हमको लेखकों की सूची भेजते हैं, उन लेखकों से उनकी रुचि का विषय जान करके और उनको फिर अलॉटमेंट किया जाता है। वो जब पांडुलिपि हमको भेजते हैं, संयोजक के माध्यम से विषय विशेषज्ञ है उसके पास भेजते हैं, विषय विशेषज्ञ उसमें अपेक्षित सुधार करके भेजता है, उसको हम पुनः लेखक के पास भेज करके और उस स्तर तक लाते हैं। उसके बाद अकादमी की मुद्रण शाखा में जाता है, मुद्रण में फिर उसकी 2 बार प्रूफ प्रिंटिंग करवा करके और हम इस प्रकाशन के स्तर तक आते हैं।
0: हिंदी ग्रंथ अकादमी के विविध प्रकाशन होते हैं, अधिकतर स्नातक स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए तो होते ही हैं, इससे हटकर भी कुछ कार्यक्रम या फिर कुछ प्रकाशन करता है?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं। अम्बेडकर पर साहित्य, यहाँ की जो जनजातियों पर साहित्य है, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित संदर्भ ग्रंथ, पाठ्यक्रम अनुसार तो यूजी और पीजी की इसकी पुस्तकों का निर्माण होता ही है।
0: कुशवाहा जी, 56 सालों की यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं और आप किस तरह से ये देख रहे हैं कि हिंदी

0: स्टूडेंट एकेडमी के प्रकाशनों ने एक अलग जगह बनाई है और विद्यार्थियों को हमेशा इसकी प्रतीक्षा होती है।
1: ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी में 1986 से कार्यरत हूँ। निश्चित तौर पर हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें अन्य प्रकाशनों की तुलना में इसलिए भी बहुत उपयोगी है। एक तो ये शासन की प्रतिबद्धता है कि विद्यार्थियों को सस्ते दर पर पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। हिंदी ग्रंथ अकादमी के पुस्तक निर्माण की मूल प्रक्रिया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए, तो अकादमी सस्ती दरों पर विद्यार्थियों को समय पर पुस्तक उपलब्ध रहने का काम करती है। जहाँ तक पुस्तकों के मूल्यांकन का सवाल है, तो वही प्रोफेसर बच्चों को किताब पढ़ा रहे हैं जिन्होंने लिखी है या सीनियर है या उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं। बच्चों को पुस्तक कैसी लग रही है इसके संदर्भ में जैसा संयुक्त तो संचालक जी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद इस तरह के दो परीक्षाएँ हो चुकी हैं जो अकादमी के पुस्तकों के आधार पर बच्चों के प्रतियोगी परीक्षा हुई। वो परीक्षाएं पहले कॉलेज स्तर पर भी हुई, फिर उसमें जो चयनित बच्चे आए जिला स्तर पर हुआ, फिर संभाग स्तर में प्रदेश स्तर पर हुई। एक योजना उच्च शिक्षा विभाग की और है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को बच्चों ने अभी तक कितना समझा है उसकी भी निबंध प्रतियोगिता होने वाली है, संभवतः सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी। ये उच्च शिक्षा विभाग माननीय मंत्री जी या संचालक जी तय करेंगे। तो निश्चित तौर पर बच्चे उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी अकादमी के जो संदर्भ पुस्तकें हैं उनका अध्ययन बारीकी से बच्चे करते हैं ताकि वो प्रतियोगी परीक्षा में वो अपने चयन की संभावना तलाश सके।
0: मतलब बहुत उपयोगिता है इन किताबों की, और आपसे जो चर्चा हमारी हो रही है उसको यदि श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं अपने आप में क्यों विशेष हो जाती हैं।
1: बच्चे खोजते हुए आते हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें कहां मिलेंगी। यद्यपि ये प्रक्रिया है कि सारे कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में अकादमी की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
0: हमारे बीच प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया जी उपस्थित हैं, आपको सरस्वत सम्मान से विभूषित किया जाएगा और निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए बहुत उपलब्धि वाली बात है। डहरिया साहब, आपको कैसा लग रहा है?
2: सम्मान तो सम्मान होता है, हम तो ग्रंथ अकादमी के जो है आभारी हैं। खुशी भी होती है हिंदी के क्षेत्र में काम करने के लिए। जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में भी थे तो हिंदी के क्षेत्र में काम किए, यहाँ भी जब से हम ग्रंथ अकादमी से जुड़े हैं, रचना पत्रिका से जुड़े हैं, तो लगातार उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमें भी खुशी होती है उससे, और सम्मान मिलता तो वो और दुगनी खुशी हो जाती है। काम करने की जो प्रेरणा है और मिलती है, तो हम तो ग्रंथ अकादमी का आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे जो संचालक है माननीय अशोक कड़ेल जी, ऐसे हमारे सभी लेखकों का, हम लोगों को हितों का ध्यान रखते हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
0: 56 सालों की यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं स्थापना दिवस पर?
2: बड़ी उपलब्धि है, लगातार हिंदी के क्षेत्र में अकादमी काम कर रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू हुई है हम देखते हैं लगभग 5 साल हो गए। ग्रंथ अकादमी में जो प्रकाशन के क्षेत्र में या जो पुस्तकों की जो लेखन है उसकी गुणवत्ता को लेकर के विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि न्यायालय में भी जब किसी चीज के कोई मामला आता है सामने तो ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को संदर्भित किया जाता है, धरोहर के रूप में हम देखते हैं इन पुस्तकों का। तो बहुत
0: तो इस बातचीत के माध्यम से चौहान साहब आप क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से?
3: मेरी सभी पाठकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आह्वान करता हूं कि इन पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग करें तो हमारा प्रयास भी सार्थक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद श्रीवास्तव।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हिंदी ग्रंथ अकादमी के स्थापना दिवस पर हमने बात की संयुक्त संचालक उत्तम सिंह चौहान, सहायक संचालक राम विश्वास कुशवाहा और प्रोफेसर खेम सिंह डहरिया से। हम यही कामना करते हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी आने वाले समय में भी अपनी गतिविधियों का संचालन दृढ़ता के साथ करती रहेगी और अपने उद्देश्य को सार्थक भी करती रहेगी। आप घर में हों, सफर में हों, मॉर्निंग वॉक कर रहे हों, योग कर रहे हों, चाय का प्याला आपके हाथ में हो, आप आसानी से नमस्कार भोपाल सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर जाइए और मोबाइल पर सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

0: मौसम कोई भी हो, नमस्कार भोपाल का कारवां भी यूं ही बरकरार रखेंगे हम, और उम्मीद करते हैं कि आप श्रोताओं का साथ भी ऐसा ही बना रहेगा।
1: आकाशवाणी भोपाल के सारे सुनने वालों को तहे दिल से नमस्कार, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: पहला उनका भाग
0: सुबह के 7:42 हुए हैं, जारी है नमस्कार भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं और इन 12 वर्षों में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। विश्व पटल पर भारत ने अपनी विशेष छवि निर्मित की है और निश्चित रूप से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। इन 12 वर्षों में अर्जित की गई उपलब्धियों पर अपने विचार हमसे साझा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा।
2: जब पहला उनका भाषण था लाल किले से, जब उन्होंने भाषण दिया, लोग बड़े आतुर थे सुनने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देवालय बाद में शौचालय पहले। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं को समाज में समान अधिकार देना चाहिए। और देखिए किस ढंग से उन्होंने समग्र स्वच्छता अभियान चलाया। कई शहर जो है जो पूरे गंदे थे, लेकिन आज सफाई में बिल्कुल नंबर वन चल रहे हैं, उनकी स्थितियां बिल्कुल बदल गई है। और हम स्वमेव जो है, हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि हम मोदी जी के इस आह्वान को में शामिल होकर के खुद अब कचरा फेंकने से बचने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन 12 वर्षों में आया है। हर मोर्चों में हम सफल रहे हैं। हमारी विदेश नीति बड़ी मजबूत रही है। यदि यूक्रेन और रूस की बात हो, उसमें भी यदि समझौते की बात आती तो हम आगे आते हैं। बॉर्डर में बात आती है तो हम पाकिस्तान को आंख से आंख दिखा करके बात करते हैं और वो उसको पीछे बैकफुट पे जाना पड़ता है। ग्रोथ रेट बढ़ी हुई है।
0: ये तय है कि 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है। गरीब हो, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी के लिए मोदी सरकार में 12 सालों में ऐसा काम हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ।
2: निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इन 12 वर्षों में वो कार्य हुए हैं जो आजादी के बाद देखने को नहीं मिले हैं। और आज बदलाव दिख रहा है। यदि मानी कार्य हुए तो बदलाव देखना चाहिए। यदि आप कहीं जाते हैं, गांवों में जाते हैं, तो देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना बड़ा बदलाव आया। उज्ज्वला योजना से आप देखिए घर घर में जो है गैस पहुंच गई है, लकड़ियों से धुओं से जो उनकी आंखें खराब होती थी उससे बचा हुआ है। जनधन योजना के तहत लोगों के खाते खोल दिए गए हैं। किसानों को जो है उनके खातों में सरकार हर वर्ष पैसा दे रही है। सरकारी खरीदियों में देखिए कि जो सुगमता हो गई है, तो किसानों को भी बहुत सारी राहतें देखने को मिल रही है। सड़कों का जाल बिछ गया है, गांव-गांव में सड़क पहुंच गई है, जो दूरस्थ अंचल थे वहां पे भी सड़क पहुंच गई है। सन 2016 में जब नोटबंदी हुई और उसके बाद UPI आया, तो लोग कहते थे कैसे संभव हो पाएगा, लेकिन आज हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गए हैं डिजिटल के माध्यम से।
0: और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की जो छवि है वो हर कोई जानता है कि भारत ने एक अलग स्थान बनाया है। दूसरे देश अब भारत की कई नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि लगती है झा साहब आपको?
2: यदि हम बात करें, यदि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी तो अमेरिका का जो सुप्रीमो है वो बार बार कहता है कि मैं जो हूँ मोदी का दोस्त हूँ, मोदी मेरे अभिन्न मित्र हैं, कहीं ना कहीं इस बात से घोतक हैं। इसके अलावा आप देखिए जो तमाम राष्ट्रनायक हैं, वो सब राष्ट्रनायक जो है मोदी के मुरीद हैं, मोदी को अपना दोस्त कहते हैं, जिस ढंग से आत्मीय भाव दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आत्मबल को मजबूत कर रहा है, हमारे विश्वास को मजबूत कर रहा है और हमारी शक्तियों को लगातार बढ़ाता जा रहा है कि हम आज कहीं भी कोई बात आती है तो लोग हमारी तरफ देखते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा संजय भाई, कि जब कोरोना आई, विश्व में जो सबसे बड़ी आपदा थी, उस समय हमने अपना काम तो यही किया, हम अपने देश के लोगों की जान तो बचाए, विश्व की जान बचाई। वैक्सीन का जो उपयोग है विश्व में उपयोग हुआ और WHO ने इसकी सराहना की, विश्व के अन्य देशों ने हमारी सराहना की। हमने अपने आप को साबित कर दिया है कि हम कोई कमजोर नहीं, किसी पक्ष में हमारी कमजोरी नहीं है।
0: एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि भारत युवाओं का देश है।

0: और युवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मोदी सरकार में 12 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। विशेष रूप से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है उसके माध्यम से अनेक युवाओं को रोजगार मिला है, वो खुद का कौशल के माध्यम से अपनी आमदनी अर्जित कर रहे हैं।
1: देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने प्रयास किया कि जो स्किल्ड है जो वो वहीं पे वहीं ट्रेंड हो। पहले आपको ध्यान होगा कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें चलती थी उनको प्रोत्साहित करने का लगातार प्रयास हुआ। मेक इन इंडिया की उन्होंने बात की, बाहर जाके विदेशों में जाकर के उन्होंने आह्वान किया कि आप हमारे देश में आकर के रोजगार स्थापित करिए। तो कहीं ना कहीं इसका बदलाव है। इन 12 वर्षों में देखिए कि भारत में उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं, खासतौर पर डिजिटल मार्केटिंग की जो चीजें हैं मोदी जी के दूरदर्शिता को प्रमाणित करती हैं, और उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि इन 12 वर्षों में भारत लगातार संपन्न हो रहा है, समृद्ध हो रहा है।
0: अब उपलब्धियों का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन अभी कई पायदानों को तय करना बाकी है। अब किस तरह की चुनौतियों का अभी आगे भी सामना करना है और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, देश को उन्नति के पथ पर ले जाना है।
1: देखिए, अकेले ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। जब मोदी जी आए थे तो उसमें भाजपा की 8 राज्यों में सरकार थी, 29 राज्यों में सरकार हो गई है, जिसमें 15 राज्य जो ऐसे हैं जिसमें भाजपा खुद शासित कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो विकास के पहिए तेजी से भगते हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। गरीबी को, बेरोजगारी को और बेहतर इंफ्रा देने की स्थिति, जो कि अब एक तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, विश्व के अन्य राष्ट्रों की टक्कर में हम आ रहे हैं, तो वहां की परिस्थितियों के अनुरूप अब हमको काम करना पड़ेगा। हमारी कृषि को भी, कृषि जोत को बढ़ानी पड़ेगी, हमारी कृषि को नई टेक्निक लानी पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज चुनौतियां, खासतौर पर बाह्य चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक सुदृढ़ता बहुत जरूरी है।
0: तो कुल मिलाकर आप सुनने वालों से क्या कहना चाहते हैं कि ये 12 वर्ष कितने महत्वपूर्ण रहे हैं और किस तरीके से जनता को अब खुद भी इन प्रयासों में हाथ आगे लाने की जरूरत है?
1: किसी देश के प्रधानमंत्री की अपील को आत्मसात करना, उसको एक आंदोलन के रूप में तैयार करना, और समय समय पर उन्होंने अभी उन्होंने कहा कि ईंधन को बचाइए तो लोग ईंधन बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनकी अपील थी तो उसको आत्मसात करते जा रहे हैं। भारत की जनता उनके साथ है। 12 वर्षों में काफी बदलाव है जिनकी हम कल्पना नहीं किए थे, आज वो कल्पना साकार रूप दिख रही है। तो हमें लगता है कि आने वाला समय भारत के लिए विकास के नए आयाम लेकर के आएगा, नई संरचना करेगा, ये दिखाई देता है।
0: जैसा भी, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और 12 वर्षों की उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
1: धन्यवाद संजय जी।
0: मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर हमने चर्चा की वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा से। यह तय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा लिए गए निर्णय, उनके अभूतपूर्व फैसलों से भारत ने प्रगति की नई उड़ान भरी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सूत्र वाक्य के माध्यम से विकास का ये क्रम अब थमेगा नहीं। जारी है नमस्कार भोपाल का सफर। ये सफर शुरू होता है रोजाना सुबह 7:20 से और जारी रहता है 8 तक। जानकारियों के साथ साथ आपके लिए स्वस्थ मनोरंजन, नामी हस्तियों से मुलाकात और ताजा तरीन खबरों की वानगी आप तक पहुंचती है। और हम उम्मीद है कि आप अभी भी होंगे हमारे साथ, क्योंकि बहुत कुछ अभी बाकी है।

0: लिबास फिल्म का गीत था, गुलजार के बोल थे, तज बनाई थी राहुल देव बर्मन ने और स्वर लता मंगेशकर। और कुछ ही पलों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे।
1: तमाम सुनने वालों को टॉम वॉल्टर का नमस्कार। इस वक्त आप सुन रहे हैं एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है जिसका नाम है नमस्कार भोपाल।
0: सात बजकर 51 मिनट और 35 सेकंड हुए हैं। भारत की पहल पर आज पूरी दुनिया में योग को विस्तार मिल रहा है और यही कारण है कि आज योग लोगों की दिनचर्या का अंग बनता जा रहा है। कारण भी साफ है, क्योंकि योग व्यक्ति की जिंदगी में सुखद बदलाव लाता है, बेहतर पोस्चर हो या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात, योग का कोई तोड़ नहीं। आइए योग विशेषज्ञ राम नरेश रघुवंशी से जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में योग कितना कारगर है और प्राणायाम की क्या भूमिका है।
2: यदि योग की विशालता देखें तो आकाश से भी विशाल है योग, और योग की सूक्ष्मता देखें तो सुई की नोक से भी सूक्ष्म है। इसलिए इसको शब्दों में बांधना भी बहुत कठिन है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। भगवान कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्चते, सम स्थिति में आ जाइए, सुख दुख से ऊपर उठ जाइए, हानि लाभ से ऊपर उठ जाइए, एक सम स्थिति में आ जाइए, वही योग है।
0: तो योग के माध्यम से हम अपने इम्यून सिस्टम को किस प्रकार से मजबूत बनाएं ताकि हम निरोग भी रह सकें और अपने समस्त कामों को बहुत ही आसानी से सरलता से कर सकें।
2: भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग से बड़ा कोई बल नहीं, तो उसमें इम्यूनिटी भी आ जाती है, उसमें प्रतिरोधक शक्ति भी आ जाती है। व्यक्ति मात्र आसनों को योग समझ लेता है, जबकि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना की है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। सभी जानते हैं लेकिन पालन नहीं कर पा रहे हैं। ये अष्टांग योग यदि इस पे व्यक्ति चले, एक दिन में ना चल पाए तो एक महीने में चलेगा, दो महीने में चलेगा, छः महीने में चल पाएगा। यदि चलना सीख गया अष्टांग योग पे तो उसकी प्रतिरोधक शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, पत्थर भी खाएगा तो पत्थर भी पचा लेगा।
0: अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, आप उन प्राणायामों की आप जानकारी दे दीजिए हमारे श्रोताओं को जिनके माध्यम से हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत कर सकते हैं और रोजाना बहुत आसानी से कुछ समय निकाल कर हम उसे कर सकते हैं।
2: पहला प्राणायाम है भस्त्र का प्राणायाम। भस्त्र का प्राणायाम पहले इसलिए हम करेंगे क्योंकि ये सीधा फेफड़ों को प्रभावित करता है। भस्त्र का प्राणायाम में गहरी लंबी श्वास खींचते हैं और छोड़ते हैं। जो नए अभ्यासी हैं वो सीधे श्वास खींचेंगे छोड़ेंगे तो थक जाएंगे, तो वो अपने हाथों का सहारा लें, हाथ दोनों शक्ति के साथ ऊपर ले जाएं, श्वास खींचें और हाथ शक्ति के साथ नीचे लाएं, श्वास छोड़ें। हाथों के साथ यदि आप करेंगे तो थकेंगे नहीं और आपका मन लगा रहेगा। तो लगभग आपको 50 बार एक राउंड में भस्त्र का प्राणायाम करना है, उसके बाद थोड़ा सा रुक जाना है, ऐसे 5 राउंड आपको भस्त्र का प्राणायाम करना है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम शुरू कर देना है। फेफड़ों के बाद आपको तुरंत पेट आंतों का पैनक्रियाज का लीवर का किडनी का व्यायाम शुरू कर देना है। विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने के लिए कपालभाति प्राणायाम, इसमें हम पावर के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं। जो तीसरा प्राणायाम है ये आपका साधनात्मक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपको बाएं नासिका से श्वास को खींचना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से खींचना है, बाएं से छोड़ना है। कोई दबाव नहीं देना, कोई शक्ति नहीं लगाना, बस रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाना है। बैठते ना बने तो लेट जाना है, चेयर पे बैठ जाना है। इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, लेट के करेंगे तो और ज़्यादा ही फायदा होगा। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों को बंद कर लें, पहली उंगली से बंद कर सकते हैं, अंगूठे से बंद कर सकते हैं। कानों को दबाने के बाद गहरी लंबी सांस लेना है और भौंरे की तरह भ्रमण करते हुए सांस को बाहर निकाल देना है। जैसे एक बार देखिए, इस प्रकार से गहरी लंबी सांस लेना है, इससे आपके लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन को वाइब्रेशन मिलेगा, माइंड को डिटॉक्स करेगा। अंतिम प्राणायाम है ओम का उच्चारण।

0: आ उ मा, अकार उकार मकार, इन तीन शब्दों का उपयोग होगा। प्राणायाम बहुत पावरफुल होता है। प्राणायाम का अभ्यास अर्थात वायु का अभ्यास।
1: चलते चलते आप क्या कहना चाहते हैं हमारे सुनने वालों से कि योग को किस प्रकार से वो दिनचर्या में अपना सकते हैं, भले ही उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है उसके बाद भी?
0: जिस प्रकार से हम भोजन को महत्व देते हैं, वैसे ही आप योग को महत्व देना शुरू कर दीजिए। यदि व्यक्ति के अंदर लगन है तो आपको आपके आसपास ही योग सिखाने वाले मिल जाएंगे। सिखाने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके अंदर ललक होना चाहिए।
1: इतना समय देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।
0: तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं योग का।
1: योग विशेषज्ञ राम नरेश रघुवंशी के द्वारा हमने बखूबी जान लिया कि प्राणायाम कितना अहम है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए। बात आत्मसात करने की है, जीवन में उतारने की है। योग करते रहेंगे तो बदलाव खुद महसूस होगा।

0: धन्यवाद जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं योग का।
1: योग विशेषज्ञ राम नरेश रघुवंशी के द्वारा हमने बखूबी जान लिया कि प्राणायाम कितना अहम है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए। बात आत्मसात करने की है, जीवन में उतारने की है। योग करते रहेंगे तो बदलाव खुद महसूस होगा। और अब वो कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर विजय फिल्म का एक गीत है सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर का गाया, संगीतकार हैं शिव हरी।

0: आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रियाएं भेजकर नमस्कार भोपाल द्वारा निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल पिन 462002 इस पते पर अपनी राय आप भेज सकते हैं। और सुरमई सवेरा सुनिएगा 8:30 नीतिका वर्मा के साथ। अब दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।
1: कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है।

0: G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है, तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।

0: हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करना।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच

0: खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक शॉर्ट में घंटों चली वार्ता, बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। यह शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6ठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability

विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। श्रोताओं, सत्येंद्र नाथ बसु, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, नंदलाल बोस, वी के कृष्ण मेनन, ये वो नाम हैं जिन्हें 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

श्रोताओं, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा, शांति स्वरूप भटनागर, मैथिली शरण गुप्त, वी नरहरी राव, सत्यनारायण शास्त्री, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, कुछ ऐसे नाम हैं जो 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे।

भारत के नागरिक पुरस्कार में पद क्रम अनुसार चौथा पुरस्कार पद्मश्री होता है। पहला है भारत रत्न, पद्म विभूषण दूसरा, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला यह सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन के लिए उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। और श्रोताओं, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण भी आज आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे से। इसे दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बन गया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में अपनी हाल की विदेश यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रमों में अपने प्रभार वाले जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी आमजनों को दें। प्रदेश में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज से उनकी जयंती 6 जुलाई तक विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल इस संबंध में महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों से वीसी के माध्यम से बातचीत की। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरगन कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। डॉ मुरगन का आज देवास जिले का दौरा अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया है। प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह, उमरिया में हीट वेव का आज अलर्ट जारी किया है और FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम ने कल FIH प्रो लीग के स्टारडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मैं नीतिका वर्मा पुनः स्वागत करती हूँ आपका कार्यक्रम सुरमई सवेरा में। श्रोताओं, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ, जिसका उपयोग केवल देश के अंदर डाक भेजने के लिए किया गया। इस पर भारतीय ध्वज का चित्र और जय हिंद लिखा हुआ था। और आज़ाद भारत का पहला डाक टिकट 3.5 आना यानी कि 14 पैसे का था। देश में भेजने वाली डाक टिकट के लिए पहले डाक पर अशोक के और राष्ट्रीय चिन्ह के साथ साथ उसकी कीमत 1.5 आना भी अंकित थी। इसी तरह विदेश में भेजे जाने वाले पत्रों के लिए पहले डाक टिकट पर DC-4 विमान का चित्र बना हुआ था और उसकी राशि 12 आने यानी 48 पैसे की थी। आज़ाद भारत में महात्मा गांधी ऐसे पहले भारतीय थे जिन पर डाक टिकट जारी की गई थी। और देश में अब तक जितनी भी हस्तियों पर डाक टिकट जारी की गई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टिकट महात्मा गांधी जी के नाम पर जारी की गई। आज की युवा पीढ़ी इस बात से अनजान है कि तार भी हुआ करता था और चिट्ठियां किस प्रकार लिखी जाती थी। नई पीढ़ी शायद इस बात पर भी यकीन ना करे कि डाकिया जब तार लेकर किसी के दरवाजे पर आता था तो लोगों के दिलों की धड़कन तेज़ हो जाती थी। ऐसी भी कई बातें हैं डाक विभाग की, जो कि हम कभी और आपके साथ साझा करेंगे।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज है 23 जून और 1952 में जन्मे थे राज बब्बर, जो कि एक अभिनेता है। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। निकाह, प्रेम गीत, आज की आवाज़, आपस की बात, जीवन धारा, इंसाफ का तराजू, कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया और खूब वाहवाही भी लूटी। अभिनय में रुचि होने के कारण NSD उन्होंने ज्वाइन किया था और ग्रेजुएशन उन्होंने आगरा कॉलेज से किया था। दूरदर्शन के लिए उन्होंने महाभारत, बहादुर शाह जफर जैसे धारावाहिकों में भी अभिनय किया।
4: अभी अलविदा मत कहो।

0: करते।
1: तो श्रोताओं, अच्छा रिमझिम बरसता सावन होगा, नए मौसम का आनंद भी आप लीजिएगा, लेकिन हमेशा बने रहिएगा आकाशवाणी भोपाल के साथ में। और कार्यक्रम सुरमई सवेरा से अब दीजिए अनुमति नीतिका वर्मा को, नमस्कार। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में रमेश इंदुबासु के गाए कुछ गीत और भजन। आरंभ कर रहे हैं इस भजन के साथ।

घटनाओं का केंद्र बदलता जा रहा है। अब खबरों के लिए आम जनता को अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। सोशल मीडिया और नागरिक पत्रकारिता के माध्यम से देश के सुदूर कोनों से आ रही आवाज़ों को भी आसानी से सुन और समझ पाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स समाचारों के प्राथमिक स्रोत बन गए हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्निक ने भ्रामक सूचना और फेक न्यूज़ के जाल को अलग अलग कर दिया है। सोशल मीडिया भी इस तरह से काम करता है कि वे दर्शकों को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन इससे समाज के कई एंगल सामने आ रहे हैं। ऐसे दौर में एक निष्पक्ष और जिम्मेवार पत्रकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़ी बात है कि पत्रकारिता के बुनियादी मूल आज भी नहीं बदले हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य की खोज और जनहित आज भी वही है। माध्यम चाहे अखबार हो, टीवी चैनल हो या डिजिटल पोर्टल या फिर कोई और दूसरा साधन, हर जगह विश्वसनीयता ही किसी भी तरह की पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी है। डिजिटल युग में तो हालत यह है कि पत्रकारों और संपादकों का दायित्व बढ़ गया है। यह कह सकते हैं कि इस समय भारतीय पत्रकारिता एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब इसकी पहुंच और विस्तार बहुत तेजी से बढ़ गया है, लेकिन इसके नैतिक पतन को रोकना भी समाज और लोकतंत्र के हित में अत्यंत आवश्यक है। निष्पक्ष पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होती है। तकनीक के इस नए दौर में यदि पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता, साहस और सामाजिक सरोकार को बनाए रखती है तो उसका भविष्य उज्जवल है और लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। लेकिन अब हमको यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया ने भावी पत्रकारों को पेशेवर तरीके से जिस तरह से फील्ड में पेश करने का काम शुरू किया है उससे काफ़ी बदलाव आ रहा है। इस दिशा में पूरी दुनिया में काम हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों ने अपने अपने छात्रों को डिजिटल राजनीतिकार के रूप में भी अपने कैरियर को तैयार करने के लिए कई तरह के सोशल मीडिया पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि नई तकनीक के आगमन से पत्रकारों के कौशल के एक आयाम और बढ़ गए हैं और जो लोग इस कौशल को पूरा कर सकते हैं उनको पत्रकारिता में आगे आने का मौका पहले ही मिलेगा। इन चीज़ों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर और ऑनलाइन कौशल, मल्टीमीडिया, न्यूज़, सूचना और कई ऐसी चीज़ें जिनसे खबरें निकल के आम जनता तक पहुँचती हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया सबसे पहले पहुँचता है और उसमें आने वाली पत्रकारिता की खबरें जनता से सीधी जुड़ती हैं, जिससे पारंपरिक मीडिया, विज्ञापन और जनता के साथ संबंधों के बीच में एक जुड़ाव स्थापित हो जाता है। अब समाचार बुलेटिनों में पत्रकारों की तस्वीर और वीडियो समाचार के साथ दर्शकों तक पहुँचाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले समाचारों की एक सीमा होती है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन पत्रकारिता ने समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो और समाचार अभिलेखागारों को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है, इससे पत्रकारिता के एक बिल्कुल नए आयाम का उदय हो गया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पाठक अब सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल वर्तमान समाचारों तक पहुंच सकते हैं बल्कि वो ऑनलाइन तरीके से उससे जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया भी उसमें दे सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस समय सोशल मीडिया के कारण पत्रकारिता क्षेत्र की व्यावसायिकता का विस्तार हो रहा है। इसमें पेशेवर और सामाजिक लोगों को भी शामिल किया गया है। पत्रकारिता को दैनिक जीवन के व्यापक क्षेत्रों में फैलाने के लिए एक्सपर्ट्स की कमी तराशी जा रही है और उनको दूर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पर्यावरण पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सोशल मीडिया ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चाओं में ला दिया है। पत्रकारिता पेशे से सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक समाचार का प्रारूप मुद्रित समाचार की तुलना में अधिक प्रमुखता पा रहा है। इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि आज सिर्फ खबरें ही लोगों को नहीं आकर्षित करती हैं बल्कि उनको प्रस्तुत करने का तरीका भी उनको लुभाता है। इस समय अधिकांश मीडिया संस्थानों में जिस तरह की मीडिया साइट हैं उनके माध्यम से अपने अपने दर्शकों को खबरें अधिक से अधिक पहुँचे, इसके लिए हर तरीके से काम किया जा रहा है। आज पाठकों में भी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और डिजिटल मीडिया अपना एक अलग स्थान तेजी से बनाता जा रहा है। सोशल मीडिया के युग में पत्रकारिता आम पत्रकारिता नहीं रही है, इसमें आने वाले नए युवा ऐसे अधिक हैं जो पत्रकारिता को अपने अंदाज में पेश करना

0: चाहते हैं। वो सिर्फ ना खबरों के लिए ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं बल्कि वहां का लाइव टेलीकास्ट करके लोगों को भी उससे जोड़ते हैं। यह बात सही है कि खबरों में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिद्वंदिता शुरू से ही रही है और आज भी चल रही है। अब तो यह हालत है कि कई मीडिया संगठन 2400 घंटे संपादकीय सेवाएं न्यूज़ रूम में उपलब्ध कराकर अपनी प्रक्रियाओं से तत्काल निकलकर लोगों को अपडेट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अब ग्रामीण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें दर्शकों को तेजी से पहुँचाई जा रही हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के महत्व को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं वह भी पत्रकारिता का एक बदला हुआ रूप है। इसमें किसी कहानी या समाचार या किसी अन्य घटना पर अपनी व्याख्या करने के अलावा उस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे लोग खबरों से सीधे जुड़ते हैं और अपना नज़रिया पेश करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें पाठकों और दर्शकों की भागीदारी ऐसी सीधी होती है ताकि उसमें कई बार पत्रकार अपनी गलतियां सुधार भी लेते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर टिप्पणियों या संपादन के माध्यम से तुरंत बदलाव भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से पाठकों और पत्रकारों के बीच एक सच्चा रिश्ता भी बनता जा रहा है क्योंकि दोनों ही टिप्पणियों व्याख्याओं के रूप में एक दूसरे से खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। जो पत्रकार आमतौर पर अपने पाठकों से सीधे बात नहीं करते उनको सोशल मीडिया के जरिए ऐसा करने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर ब्लॉग पत्रकारिता में एक ऐसी चीज है जिसमें पत्रकार और उनको जानने वाले श्रोता या दर्शक वह भी उनकी बातों को सुन समझ लेते हैं और अपने रिएक्शन पेश करते हैं। अंत में अपन यही कह सकते हैं कि पत्रकारिता आज की समय से तेज चलने वाली दिशा में जा रही है। सूचना के क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं उससे पत्रकारिता अब केवल कमरे में बंद होकर खबरों को संकलित करने की नहीं रह गई है। इसमें समाचार निर्माण, समाचार साझाकरण और सामाजिकरण के संदर्भ को भी पेश किया जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि आज पत्रकारिता केवल खबरों से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जा रही है, यह लोगों को जिस तरह से जोड़ रही है उसका बदलता स्वरूप टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नया नज़रिया पेश कर रहा है जिसका लाभ मानव जाति को आने वाले समय में और मिलेगा और लोग विकास के साथ मापदंडों को देखते हुए अपने आप को इससे जोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता, भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। शब्द सागर कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर सुभाष जाटव का काव्य पाठ।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष जाटव आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। बन के याचक आ गए हैं द्वार पर हम,

छोड़ो, क्या गलत है क्या सही यह बात छोड़ो। इन प्रपंचों से निरा मन भर रखा है, तुमको अपना पात्र सहयोगी मिला हो।

काव्य पाठ। इसके साथ ही शब्द सागर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता, भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, और आपने सुने डॉक्टर सुभाष जाटव का काव्य पाठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है श्योपुर जिले की चिट्ठी। आलेख अश्विनी बालोटिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल कुनो नेशनल उद्यान के चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अवलोकन किया। इस अवसर पर लगाई गई चीता प्रदर्शनी के दौरान राष्ट्रपति ने अवगत कराया कि 49 चीते कुनो में मौजूद हैं। 3 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर भेजे गए हैं। उन्हें बोत्सवाना से लाए गए चीतों की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा अपनी बोत्सवाना यात्रा के दौरान 8 चीते रिसीव किए गए थे, जिन्हें कुनो लाया गया है। चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय कुनो प्रवास के दौरान चीता मित्रों से संवाद कर चीता संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली। राष्ट्रपति ने चीता मित्रों से चर्चा करते हुए उनके द्वारा चीतों की सुरक्षा और आमजन के बीच चीतों के व्यवहार को लेकर किए जा रहे जन जागरूकता के प्रयासों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। राष्ट्रपति मुर्मू को चीता मित्रों ने बताया कि कुनो नेशनल पार्क से लगे सभी गांवों में चीता मित्र मौजूद हैं, जिनके द्वारा चीतों की सुरक्षा के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुनो नेशनल पार्क में चीतों की पुनर्स्थापना योजना को लगभग 3.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। नेशनल पार्क में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को लाया गया है। जिले में साल 1 जून से अभी तक कुल 8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक 336.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वर्षा 822 मिलीमीटर है। जिला प्रशासन द्वारा बारिश को ध्यान में रखते हुए जिले भर के पिकनिक स्थलों पर लोगों को पानी से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत एसडीआरएफ के जवानों को सभी पिकनिक स्थलों पर तैनात किया गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान इस साल सभी शासकीय भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का कार्य किया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर पालिका के शिवपुरी रोड स्थित ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला उपस्थित थे। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में पश्चिम बंगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सागर जिले के देवरी में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम के माध्यम से 37वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1835 करोड़ राशि का अंतरण किया गया। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की सदस्य डॉ. शोभा पैठणकर ने कहा है कि अनेकता में एकता भारत की पहचान है। किसी भी बड़े नीतिगत परिवर्तन के लिए जन समर्थन अनिवार्य है। समिति प्रदेश के सभी जिलों में भ्रमण कर नागरिकों

से संवाद कर रही हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर ही अंतिम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण सुझाव आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराए जा सकते हैं। कानूनों में सुधार पर विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। श्योपुर जिले के विजयपुर में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन श्योपुर द्वारा की गई पहल पर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की टीम श्योपुर जिले के दो दिवसीय भ्रमण पर पहुंची, जहां विभिन्न पर्यटन स्थलों का अवलोकन कर पर्यटन गतिविधियों की संभावनाएं तलाशी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी, श्योपुर जिले की चिट्ठी अभी आपने सुनी। आलेख था अश्विनी बालूठिया का और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
2: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनें।
1: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
2: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
1: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
2: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
1: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
2: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
1: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
2: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
1: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
2: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
1: थोड़ी सी सावधानी
2: दूर करे सभी परेशानी।
3: बाजू बाबू समझो इशारे और पुकारे, पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम।
0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। श्रोताओं मैं हूं नमस्ते कर रही हूं नीतिका वर्मा, आप सभी को सलाम। आज के इस अंक में कुछ गीत संगीत की बातें करेंगे। वैसे श्रोताओं सात स्वर से बना संगीत कर्णप्रिय हमें तब लगता है जब उसमें गायन वादन का तालमेल सही बने, और सार्थकता भी तभी है जब उस गीत को लोकप्रियता मिले। विजय बेनेडिक्ट का गाया गाना आई एम ए डिस्को डांसर आपको याद आया होगा, जिसे धुनबद्ध किया था बप्पी लाहिरी ने। ये गीत एक नए दौर का गीत माना जाने लगा था और इसमें नृत्य शैली थी, संगीत था, गायन था, इन सब ने एक नया प्रयोग करके दिखाया था और एक नए धुन का दौर चल पड़ा था।

0: पद्धति है। फिल्मी पर्दे पर कव्वाली एक समा बन जाते हैं, धार्मिक आयोजन हो, इसके अलावा जन्म और जीवन चक्र से जुड़े चाहे कोई भी समारोह हो, ये कव्वाली गाई जाती हैं।
1: दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे नबी, तू बुलाता है तेरे दर पर सर झुकाए।

तो श्रोताओं, अक्सर फिल्मों में एक गायक होते हैं, दो होते हैं या चार होते हैं, लेकिन कई गीत ऐसे होते हैं जिसमें समूह स्वर सुनाई देता है, जिसमें ताली का स्वर भी होता है। बात कर रहे हैं कव्वाली की, जो गायन की एक

प्रेम गीत फिल्म से ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। गज़ल एक बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह होता है, जिसमें मतले का शेर भी होता है और अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। मक्ते में सामान्यतः शायर अपने नाम शुमार करते हैं। भारत में अमीर खुसरो को गज़ल का जनक माना जाता है और गज़ल को मूड के अनुसार सुनना लोग पसंद करते हैं और इसे गंभीर संगीत की श्रेणी में माना जाता है। श्रोताओं, इन दिनों हिंदी, उर्दू या देशज भाषा के प्रयोग के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी बॉलीवुड में काफ़ी हो रहा है। इसके कारण फिल्मों को यूनिवर्सली रिलीज भी किया जाता है और ये एक चलन भी बन पड़ा है। कुछ ऐसा ही गीत आपकी नज़र।

तो श्रोताओं, सभी गीत राग आधारित जरूर होते हैं, धुन जरूर शास्त्रीयता लिए हो या ना हो, पाश्चात्य का तड़का उसमें भी लगे, लेकिन सुमधुर होना उसका बहुत ज़रूरी है और संगीत हमें बहुत प्यारा भी लगता है। कार्यक्रम में अब अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में लीजिए सुनिए सलीम अल्लाह वाले का तबला पर बजाया ताल एक ताल। इनके साथ वायलिन पर संगत की है जाकिर हुसैन ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में अभी आप सुन रहे थे सलीम अल्लाह वाले का तबला पर बजाया ताल एक ताल, इनके साथ सारंगी पर संगत की जाकिर हुसैन ने। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण हम करेंगे 11 बजे से। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड की नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हो रही मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इन बैठक में उज्जैन में स्थायी सिंहस्थ मेला कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और बन्या जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। विमान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्म गुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। प्रदेश में 25 जून के

0: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हो रही मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। इन बैठक में उज्जैन में स्थायी सिंहस्थ मेला कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल के आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्या जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्म गुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। प्रदेश में 25 जून के बाद मानसून के प्रवेश करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम ने कल FIH प्रो लीग के रोटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कुछ ही देर में करेंगे।

दिन के 11 बजे हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। रवि के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत है, मोहम्मद रफी ने गाया है। फिल्म का नाम आज और कल।

फूल बने अंगारे फिल्म का ये गीत था, मुकेश ने गाया था। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम में अगला गीत बम्बई का बाबू फिल्म से आशा भोसले ने गाया है। गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज एस डी बर्मन की।

आरजू फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, हसद जयपुरी ने गीत लिखा था, शंकर जयकिशन की धुन थी। और अब असली नकली फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर ने इसे गाया है, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है, हसद जयपुरी के बोल।

हसन जयपुरी का लिखा गीत सुनवाते हैं आपको, बेटी बेटे फिल्म का गीत। मोहम्मद लफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने इसे गाया है, धुन शंकर जयकिशन की।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत था। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। नीला आकाश फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया फिल्म गीत का ये गीत था और हसन जयपुरी ने बोल लिखे थे। परिवार फिल्म का ये गीत है, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर का गाया हुआ, गुलशन बावरा ने बोल लिखे हैं और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की।

0: सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र किशन का लिखा यह गीत था। लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज़ थी। फिल्म थी आज़ाद। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

आज भोपाल के आचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्म गुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों से राय जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है और प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है और प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी ख्वाहिश पूरी करेंगे हम इस कार्यक्रम में। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की। डोंगर गांव, जिला रांदन गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये की। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गंवाड़कर, सिद्धांत गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर की। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गंवाड़कर, श्रीमती वैशाली गंवाड़कर, श्वेता सुमित गंवाड़कर, कुमारी ध्वनि गंवाड़कर परी की। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही और महराज जहां हमें अपनी ख्वाहिश भेजते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। वारिस फिल्म का ये गीत सुनना पसंद किया है, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने इसे गाया है। वर्मा मलिक ने गीत लिखा है, उत्तम जगदीश ने धुन बनाई।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। महसवाड़ी तहसील मनकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर की। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। भटिंडा पंजाब रेलवे कॉलोनी से जगपाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सदस्य। चांद का टुकड़ा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और विपिन सचदेव ने इसे गाया है। सावन कुमार का लिखा, महेश किशोर की धुन है।

अगली पसंद शामिल कर रहे हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा का फिर शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और माखीजा परिवार के सदस्य। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल और आशा सपकाल की दुगई, सेलू से चंदू कुलकर्णी हेमलता और परमणी से सी आर कुलकर्णी की, शिवाजी नगर बड़ाली देश से देशमुख परिवार के सदस्य और राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई और सुनैना खोबरखेड़े, खाड़वी जलगांव जामोद से राम धाड़े, दिवाली धाड़े और स्वराज धाड़े की, थिलोरी दरियापुर से सुनैना पवन और तनुज पवन भोड़े की, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक और मीका बीरक की।

यसबाज फिल्म का ये गीत है। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत जतिन ललित का है और गाया है अभिजीत ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश शामिल कर रहे हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन की, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया की, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की, और साथ में है विनोद किशोरी। सुनना पसंद किया है विजयी पथ का गीत कुमार सानू और साधना सरगम का गाया, फैज अनवर ने बोल लिखे हैं और अनु मलिक की धुन है। ये पत्र और शामिल कर रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की।

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में फैज़ अनवर का लिखा यह गीत था। कुमार सानू और साधना सरगम ने गाया था। फिल्म थी विजयी पथ। इसके साथ ही आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। भारतीय सेना कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने ये जाना कि धारा नगरी का राजकुमार विजय श्रवा नर्तकी भुवन मोहिनी से प्यार करने लगा था, जिससे विजय श्रवा के पिता राजा द्युम्न सेन नाराज हो गए और भुवन मोहिनी को राज्य से निकाल दिया। निर्वासित नर्तकी भुवन मोहिनी पहुंच गई इंद्रप्रस्थ और वहां के नरेश आदित्य सेन से पा लिया आश्रय। परंतु कुछ ही महीनों बाद राजमाता के तानों से नाराज होकर श्रेष्ठी का वेश धारण कर राजकुमार भी इंद्रप्रस्थ आ पहुंचा। उधर इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित ही थे। जब उनको पता चला कि एक सुदर्शन व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठी बताता है आश्रम में ठहरा हुआ है, तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं वो धारा नगरी का राजकुमार तो नहीं। असलियत का पता लगाने के लिए आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रम भेजा। भुवन मोहिनी राजकुमार को वहां देखकर प्रसन्न तो हुई, परंतु असमंजस में पड़ गई कि राजकुमार किससे मिलने आए हैं, उससे या राजकुमारी चंद्रहासिनी से। भुवन मोहिनी ने जब राजा आदित्य सेन को विजय श्रवा के बारे में बताया तो वे राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाने के लिए बुलाने आए और उसके सम्मान में एक समारोह रखा। सम्मान समारोह से लौटते समय राजकुमार और राजकुमारी चंद्रहासिनी की मुलाकात हुई। अब आगे सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।
1: आरण्यक महोदय, अब हमें लौटना होगा।
2: क्यों?
1: देखो, राजकुमार जी और हमारी सखी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रथों की ओर जा रहे हैं।
2: हाँ, परंतु मणिहार का क्या होगा?
3: उसने अपना मूल्य तो चुका दिया
2: है?
3: ना भी मिले तो क्या है।
2: अच्छा, ऐसा है, तो फिर चलो। अरे भाई सारथी मित्रों, अपने अपने रथों को आगे बढ़ाओ।
3: मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए। मैंने राजकुमारी का

0: कहाँ था?
1: यहां गिरा था।
0: राजकुमारी जी को बधाई।
2: किसके लिए?
0: मणिहार के लिए।
2: इतनी तुच्छ वस्तु के लिए क्या बधाई? मुझे तो आज संसार की संपूर्ण निधि प्राप्त हो गई। लग रहा है मानो मैं वायु में उड़ रही हूं।
0: विदा, अब अपने रथ पर सवार होइए।
3: चलो भाई, रथों को आगे बढ़ाओ। बस यहीं से हमारे रथों के मार्ग अलग अलग हो जाएंगे।
1: आरण्यक महोदय, अपने मित्र से कहिएगा कि शीघ्र ही पुनः दर्शन दें।
3: अवश्य अवश्य।
4: राजकुमारी जी, क्या मैं आपके कक्ष के भीतर आ सकती हूँ?
2: अरे आओ आओ भुवन मोहिनी, मैं तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी।
4: तो फिर बुलवाया क्यों नहीं? आपकी दासी हूँ। अरे ये मणिमाल आपके गले में
2: क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने भेंट किया आपको?
2: हाँ, भारत के भावी सम्राट ने, मेरी विजय श्रवा ने।
4: ओह
2: भुवन मोहिनी, अरे क्या हुआ? तुम्हारा मुखड़ा अचानक मलिन क्यों हो गया?
4: नहीं तो?
2: तो फिर मुझे भ्रम है।
4: हो सकता है।
2: क्या तुमसे भावी सम्राट का अतीत में कोई एकांत मिलन हुआ था?
4: मुझसे क्यों? कहां भावी सम्राट और कहां भ्रष्ट दलित एक क्षुद्र नर्तकी।
2: अरे भाई, राजकुमार तुम्हारे अनन्य उपासक हैं, इसलिए पूछ रही हूँ।
4: कौन कहता है?
2: मैं कहती हूँ।
4: अच्छा, इसका प्रमाण?
2: तुम्हारा चित्र उनके एकांत पर्णकुटी में लगा हुआ, जिसे राजकुमार ने अपनी तूलिका से स्वयं चित्रित किया है।
4: ये झूठी बात है।
2: मैंने स्वयं देखा है तुम्हारे सौंदर्य सौष्ठव का वह महान चित्र, राजकुमार की महान कृति, अपनी आंखों से देखा।
4: तो क्या राजकुमारी से भावी सम्राट का एकांत मिलन संभव हो सका?
2: नहीं, मैं उनके शून्य पर्णशाला में उस समय पहुंची जब राजकुमार कहीं पर्यटन में निकल गए थे।
4: विश्वास नहीं हो रहा। क्या सचमुच राजकुमार के एकांतवास स्थल में मेरा चित्र है?
2: हाँ हाँ सखे, बिल्कुल सच है। मेरी नेत्र तुम्हारे चित्र को प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए। किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस सूचना में ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना उद्विग्न कर दिया।
4: बात तो सचमुच कुछ भी नहीं है राजकुमारी जी, और ना ही किसी प्रकार की उद्विग्नता ही है। हाँ, कौतूहल इस बात का अवश्य है कि इतने महान व्यक्ति को मुझ तुच्छ नारी का चित्र रखने की कैसी लालसा उत्पन्न हुई।
2: तुम सदा अपने को तुच्छ क्यों समझती हो भुवन मोहिनी? क्या तुम वास्तव में इतनी भोली हो कि अपने सौंदर्य से स्वयं अपरिचित हो? कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता। जब स्त्री जाति तुम्हारे अनन्य स्वरूप का दर्शन करके अपने को धन्य मान लेती है, तब विजयश्रवा तुम्हारे स्वरूप पर क्यों न पसीजे? माना कि वे भावी सम्राट हैं, सत्ता अधिकार वैभव और राजलक्ष्मी उनके चेरी हैं, किंतु अपने पुरुष हृदय को वो कहाँ फेंकते? हाय भुवन मोहिनी, जब स्त्री जाति तुम पर अनुरक्त है, तब तुम्हें निश्चय पूर्वक मान लेना चाहिए कि कोई भी पुरुष तुम्हारे रति से सुंदर स्वरूप पर सहज ही मोहित हो जाएगा। अरे भुवन मोहिनी, ये भी संभव है कि अब तक जितनी नारियां राजकुमार की दृष्टि से गुजरी हों, उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तुम ही रही हो सकता है इसी कारण से राजकुमार

0: माँ ने तुम्हारा चित्र अंकित कर डाला हो? इतनी व्यग्र क्यों हो?
1: जो कुछ भी हो, किंतु एक महान व्यक्ति के पास एक नर्तकी का चित्र कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।
0: ओ रूप की जादूगरनी, तुझे ज्ञात नहीं है कि तेरे मधुर स्पर्श में अमूल्य आसव किसी उत्तेजना और विस्मृति भरी पड़ी है। तेरी रूप माधुरी का सुखद स्पर्श जब मुझे विस्मय विमुक्त और विह्वल कर देता है, तब भला धारा नगरी की राजकुमार को क्यों ना करेगा? क्यों न वो तेरी वासना में सिहर कर तेरा चित्रांकन करें, तेरी मानसिक पूजा करें।
1: बस बस राजकुमारी, बहुत न बनाइए मुझे। इन व्यर्थ की आडंबरपूर्ण प्रशंसाओं से मैं नहीं फंसने वाली। हाँ, ये कहिए कि राजकुमार ने अब अपनी प्रेयसी को खोज निकाला है और प्रथम प्रेमोपहार में ही आपको कृतकृत्य कर दिया है। अब मैं साहसपूर्वक राजकुमार से निवेदन करूंगी कि राजकुमारी चंद्रहासिनी मणिमाल के स्थान पर स्वयं को राजकुमार के हृदय का हार बनाना चाह रही हैं।
0: नहीं सखी, ना जाने कौन हृदय से कह उठता है कि वो मुझे अपना न सकेंगे।
1: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, ये तो निश्चित है कि राजकुमार भारत के भावी सम्राट हैं, उनके ऊपर महान दायित्व है। ऐसे में हो सकता है आपके प्रेम सिक्त हृदय की रिक्ति अधूरी रह जाए। ये भी हो सकता है कि आपको अपने पवित्र प्रेम का न जाने कितना मूल्य भी चुकाना पड़ जाए। परंतु
0: सखी, मैंने तो उन्हें प्रथम दर्शन में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इन नेत्रों पर अब कोई मेरा अधिकार नहीं रहा। भारतीय नारी तो उत्सर्गमयी है, उसका प्रेम सर्वस्व समर्पण रहा है। मैं इसी परंपरा का पालन करूंगी। पहले ही जिन्हें मैंने फूल सा कोमल समझा था, वो प्रस्तर की भांति कठोर निकले। अब और कोई चारा ही क्या है? अब चाहे जैसे भी थे, मुझे तो उनके प्रेम की अलग जगानी ही पड़ेगी। वो मुझे भाई थी, उनकी रूप माधुरी में निष्ठुरता की छाया मुझे नहीं दिखी थी और ना ही मैंने देखी कोई हृदयहीनता। मुझे तो जैसे उनके नेत्रों ने एक मौन आमंत्रण दिया था, बस मैंने उसे स्वीकार किया। मैं कहाँ जानती थी कि उनकी इस देवोपम सरलता के चारों ओर महान दायित्वों की कठोर श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं।
1: विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उनके प्रेम से तुम्हें विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैं उनके प्रेम से तुम्हें परानमुख ना कर सकी राजकुमारी। मुझे जिन कड़वे परिणामों को प्रेम के नाम पर भोगना पड़ रहा है, संभवतः वो सब अग्नि की लपटों के दृढ़ालिंगन से कहीं अधिक हैं। जीवन में प्रलयंकर हाहाकार है, संताप है, रुदन है।
2: राजकुमारी जी, युवराज विजयश्रवा का भृत्य आरण्यक भुवन मोहिनी को बुलाने आया है। उसे स्वयं राजकुमार ने बुलवाया है।
1: मुझे?
0: जा, तू उस वृत्य से कह दे कि अभी वो राजकुमारी के पास है, अवकाश पाते ही युवराज की सेवा में उपस्थित होगी।
2: जो आज्ञा।
0: सखी, आज मैं तुमसे एक याचना कर रही हूँ। क्षमा करो, अपने अंतर से इस भाव को हटा दो कि तुम एक साधारण नर्तकी हो और मैं राजपुत्री हूं। मैं देख रही हूं कि तुम एक असाधारण नारी हो। मैंने तुम्हारे विनम्र शिष्या बनकर तुमसे संगीत का ज्ञान और उसकी सिद्धि प्राप्त की है। मैं धन्य भाव से तुम्हारी कृतज्ञ हूं।
1: इन सबके लिए हमारी तुम्हारे बीच कृतज्ञता प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी।

0: कृतज्ञता तो मैं प्रकट करती हूं, प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण। विधि विधान ने मुझे महाराज आदित्य सेन की शरण में ला पटका और उन्होंने साहसपूर्वक अभयदान प्रदान किया। अन्यथा भारत सम्राट द्वारा निर्वासित किए जाने पर मुझे निश्चय हो गया था कि मेरा समग्र जीवन विपत्तियों की गाथा बन जाएगा। मेरी सहायता करने का कोई भी साहस न करेगा। महाराज ने मुझ पर जो दया प्रकट की है, उसकी सराहना मैं किस मुख से करूं?
1: सखी, ये भी तुम्हारी महानता है जो सदैव पिताजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हो। अन्यथा राष्ट्र की कुशल और सर्वश्रेष्ठ गायिका होने के नाते तुम जहां भी जाती, वहीं लुब्ध मधुब की भांति मानव सागर को उद्वेलित करती। तुम्हें प्रत्येक स्थान पर आदर और पुरस्कार प्राप्त होता। क्या तुम जानती हो कि युवराज के बुलाने पर भी मैंने तुम्हें क्यों रोक लिया?
0: नहीं।
1: तो सुनो सखी, मैं तुमसे जो कहने जा रही थी वो ये कि हम तुम दोनों एक ही पद की कामनी है। मैं भली भांति समझ गई हूं कि युवराज तुम्हें सर्वांतःकरण से प्यार करते हैं। जो कुछ अपनी ओर से वे तुम्हें प्रदान कर चुके हैं, उसे वो किसी मूल्य पर लौटा न सकेंगे। और मैं वही चाह रही हूं जो तुम्हें युवराज से प्राप्त हो चुका है, वो है प्रेम, जो एक बार में एक ही को दिया जा सकता है। मैं समझती हूं कि युवराज द्वारा वो प्रेम भी तुम्हें प्राप्त हो चुका है। यदि मुझे अपने प्रेम से युवराज पुरस्कृत भी करना चाहे तो वो एक बार समर्पित किया हुआ होगा। भुवन मोहिनी, तुम स्वयं एक नारी हो, तुम्हें ज्ञात है कि नारी हृदय रहस्य और गोपनीयता के परिधि के भीतर रहकर अपने निश्चल प्रेम की ज्योति जलाता है। वो प्रीतम की मधुमेह मोहिनी मूर्ति अपने हृदय मंदिर में आसीन कर बड़ी गोपनीयता के साथ उस प्रेम देवता की आराधना में लीन हो जाता है। वह आवरण में नारी हृदय ज्यों का त्यों कौतूहलहीन रहता है, परंतु अंदर ही अंदर प्रेमानुभूतियों के उत्तप्त आंसुओं से रोता है, सुलगता है। अवश्य अश्रुओं की धारा में नारी हृदय चलते हुए भी शांति का अनुभव करता है। उत्पीड़ित और प्रताड़ित होकर भी वो बाहर से मुस्कुराता है। सखी, तुम्हें भी ये सब ज्ञात है। अस्तु, राजपुत्री होकर भी भिखारिणी की भांति तुमसे तुम्हारे प्रियतम की भीख मांगती हूं। बोलो बोलो, मुझे निराश तो ना करोगी?
0: नहीं राजकुमारी, यदि वे तुम्हें स्नेह और आदर प्रदान कर सकें तो मैं अपने को धन्य समझूंगी और चाहूंगी कि वो तुम्हें अपने नेत्रों की पुतली बनाकर तुम्हारी दृष्टि से देखें, तुम्हारे कानों से सुने, तुम्हारी हृदय से बात करें। तुम्हारे अस्तित्व में उनके प्रेम की लय हो और वो पूरी तरह से तुममय हो जाएं। मैं अपने को भाग्यशालिनी समझूंगी। भारत साम्राज्ञी का गौरवमय पद तुम्हारे प्रतिष्ठित होने पर ही उज्जवल रहेगा, अन्यथा मुझ नर्तकी की छाया परंपरागत महानता की सीमा का अतिक्रमण कर उसे तुच्छ बना देगी।
1: ओह भुवन मोहिनी,
0: जाइए राजकुमारी। राजकुमार विजय श्रवा की गौरवमयी प्रेसी और जीवन संगनी बनिए। मैं आप दोनों के प्रेम संबंधों में कभी भी ईर्ष्या का विष सम्मिलित नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि इस अभागिनी नर्तकी ने भी कभी भावी सम्राट की प्रेमिका होने का गौरव प्राप्त

0: किया था। मैं अपना अहोभाग्य यही समझूंगी कि विजय श्रवा की जीवन संगनी खोजने के श्रेय का एक अंश मुझे भी प्राप्त हुआ था। राजकुमारी, जिस दिन सम्राट द्युमत सेन ने मुझे धारानगरी से निर्वासित किया था, उसी समय मैंने निश्चित किया था कि मैं राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी राजकन्या का परिणय विजय श्रवा से कराऊंगी और अपनी खोज में लगी हुई ही इंद्रप्रस्थ नगरी में आई थी। इसके पूर्व भी अनेक बार मुझे नरेशों से ज्ञात हुआ था कि महाराज आदित्य सेन की एकमात्र कन्या ही राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। इसीलिए मेरी रानी, अपने विजय श्रवा के लिए मैंने आपको चुना है। मुझसे भय मत खाइएगा। मैं आपकी अमृत प्रेम प्याली में अपने द्वेष की विषैली घृणा कभी नहीं भरूंगी।
1: इसी विश्वास और इसी पवित्र देन के कारण तुम मुझसे बहुत ऊंची हो। मैं आज तुम्हारे प्रदान किए हुए प्रेम और प्रीतम द्वारा अपने स्नेह का संसार बसाने का कौतूहल में स्वप्न देख रही हूँ। देखो देखो, कभी मुझे भी पुरस्कृत करेगा या नहीं मेरे रूप का देवता।
0: तो चलिए
1: कहाँ?
0: राजकुमार विजयश्रवा से मिलने।
1: लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं।
0: तो क्या हुआ? क्या अभी भी आपको मुझ पर शंका है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं उनके दर्शन की बेचैनी को कुछ पलों के लिए शांत करना चाहती हूँ।
0: ये मेरे लिए भी सुखद होगा राजकुमारी।

0: ओहो, मित्र विजय शर्मा से मिलने भुवन मोहिनी देवी अभी तक नहीं आई। अब मुझे तो भय लग रहा है कि उन्हें बुलाने के लिए युवराज मुझे कहीं फिर से ना भेज दें। अरे ये क्या, लगता है कि भुवन मोहिनी आ गई परंतु राजसी रथ में। प्रतीत हो रहा है कि भुवन मोहिनी के संग राजकुमारी भी पधार गई। अब क्या होगा? आइए आइए, राजकुमारी जी को अरण्यक का अंजुलिबद्ध सादर प्रणाम।
1: शुभ हो अरण्यक, जाओ देव से निवेदन करो कि भुवन मोहिनी के साथ राजकन्या चंद्रहासिनी भी दर्शन के लिए उपस्थित हैं।
0: अवश्य देवी। अरे मित्र मित्र मित्र, अचंभा हो गया।
2: क्या हुआ अरण्यक?
0: भुवन मोहिनी आ गई हैं।
2: इसमें अचंभा क्या, उन्हें तो हमने ही बुलवाया था।
0: उनके साथ राजकुमारी जी भी हैं।
2: क्या?
0: हाँ,
2: चलो उनकी अगवानी के लिए चलता हूं।
0: यही उचित भी होगा। आइए ये देखिए।
3: शुभ स्वागत है राजकुमारी और भुवन मोहिनी का। देवी, कुटिया के अंदर पधारिए। मैं अतिथि सेवा द्वारा अपने को सौभाग्यशाली और कृतार्थ समझूंगा। ओह भुवन मोहिनी, हम लोग दीर्घ वियोग के पश्चात आज मिले हैं। तुम्हारे साथ राजपुत्री चंद्रहासिनी भी हैं। बोलो, इस शुभागमन के अवसर पर मुझे किस प्रकार अतिथि पूजा और सत्कार करनी चाहिए?
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
3: एवं अस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 5वीं कड़ी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल अचारपुरा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश और वन्य जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। उज्जैन में अगले वर्ष आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल और धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों की राय जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोगों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। प्रदेश में मानसून के 25 जून के बाद प्रवेश

0: करने के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। और FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम ने कल FIH प्रो लीग के रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

हौसलों के पंख तैरते हैं खुली उड़ान में, आज की नारी कम नहीं किसी आसमान में। समेटे है खुद में वो हर रंग कायनात का, वजूद उसका गूंज रहा पूरे जहान में। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आज के महिला सभा कार्यक्रम का। आज आपके साथ हूँ मैं शालिनी सोनी, स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, ये महिला सभा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक सुकून है, एक रिश्ता है हमारा और आपका। एहसास है हमारी ताकत का, हमारी ममता का, हमारी समझ सूझबूझ का और हमारे हौसले का, जिससे हम हर रोज अपने घर और समाज को संवारती हैं। सखियों, कहा गया है ना, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ खुशियाँ खुद ब खुद चली आती हैं, और हम सभी के खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे इस बात का गवाह हैं कि जब हम सब एक साथ मिलती हैं तो सकारात्मकता की एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। आज की इस महिला सभा में हम खुलकर बातें करेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ नया सीखेंगे और जिंदगी के सफर को और हसीन बनाने के लिए संकल्प लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम है हमारा और आपका। सखियों, ये बात एकदम सही है कि किसी भी देश का विकास उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की सेवा में लगे कर्मचारियों से होता है। इसी सेवा भाव को दर्शाता है हमारा आज का विशेष दिन। जी हाँ सखियों, आज हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। आज का ये दिन सखियों उन अनगिनत लोक सेवकों को समर्पित है जो बिना थके पर्दे के पीछे रहकर समाज के हर व्यक्ति तक विकास और न्याय पहुंचाने का काम करते हैं। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य केवल एकमात्र यही है सखियों, समाज के लोक सेवकों को पहचानना और युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना। सखियों, संयुक्त लोक सेवा दिवस पर हम सब मिलकर अपने लोक सेवकों के निस्वार्थ योगदान को सलाम करें, उनका सम्मान करें और एक बेहतर समाज के निर्माण में उनका सहयोग करें, क्योंकि उनकी सेवा में ही छुपा है हमारा सुरक्षित कल। सखियों, किसी ने सच ही कहा है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अकेले चलना है। आज 23 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस सिर्फ कैलेंडर में एक तारीख नहीं, यह एक दिन है उन करोड़ों महिलाओं के संघर्ष को पहचानने का जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया। जब एक घर का मुखिया चला जाता है ना, तो पीछे छूट जाती है एक महिला। समाज अक्सर उसे सहानुभूति तो देता है, लेकिन अधिकार नहीं। ताने, आर्थिक तंगी और अकेलेपन के साए में वह अपने और अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए जूझती रहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, कहानी है हौसलों की भी। हमारे समाज में कई ऐसी प्रेरणादायक महिलाएं हैं जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा, पति के जाने के बाद न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का यही असल मकसद है सखियों, कि इन महिलाओं को दया की नज़रों से नहीं देखना है, बल्कि उन्हें सम्मान और समानता देनी है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार मिलने चाहिए। आज के इस विशेष दिन पर आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, अपने आसपास, हमारे परिवार में या पड़ोस में अगर कोई ऐसी बहन या माँ है तो उनका संबल बने, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेली नहीं हैं। सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचाएं और उनकी मदद करें, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है पूरा परिवार समाज मजबूत होता है। चलिए आज से रूढ़िवादिता को पीछे छोड़ते हैं और सम्मान की एक नई शुरुआत करते हैं।

सखियो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र सेवा के शानदार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वर्णिम यात्रा में सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ देश ने अभूतपूर्व प्रगति, डिजिटल क्रांति और वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, कई योजनाएं ऐसी ऐतिहासिक पहल की है कि जिससे करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदल गया है। मोदी जी के मजबूत इरादों ने हर क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। आज का आत्मनिर्भर भारत उनके अद्वितीय समर्पण और निर्णायक नेतृत्व की जीती जागती मिसाल है सखियो। और अब बात प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही एक योजना की। आज सखियो हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना सखियो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 2029 तक देश के सभी गरीबों और बेघरों को पक्का घर प्रदान करना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,30,000 तक की सहायता और शहरी क्षेत्रों में लगभग 2.75 लाख की ब्याज सब्सिडी शामिल है। सखियो, इसके लिए जो भी आवेदक हैं उनका भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए, साथ ही वो गरीबी रेखा के नीचे हों। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं ना सखियो, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बहनों न केवल छत प्रदान कर रही है बल्कि हमारा जीवन स्तर भी सुधार रही है। सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाकर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। सचमुच सखियो, ये योजना सभी के लिए आवास के सपने को साकार करने का एक मील का पत्थर है। तो सखियो, अगर आपका सपना भी है अपना घर बनाने का, तो जरूर जुड़िए प्रधानमंत्री आवास योजना से और इस योजना का लाभ लेकर इसे सफल बनाइए। सखियो, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्रम मेरी उड़ान के साथ। आज क्रम मेरी उड़ान में है हमारे साथ गेम्स टीचर, खेल शिक्षिका अन्नू झारिया। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी, क्रम मेरी उड़ान में।

0: मेरे साथ हैं खेल प्रशिक्षिका या कहूँ गेम्स टीचर अन्नू झारिया। ये एक प्रतिष्ठित संस्थान में बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण देती हैं। बतौर गेम्स टीचर सफल और आत्मनिर्भर हैं। आइए मिलते हैं अन्नू झारिया से और जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में। अन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मेरी उड़ान में। सबसे पहले अनु जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका रुझान इस फील्ड में कैसे आया।
1: धन्यवाद शालिनी जी, मुझे आपने मेरे बारे में बताने का मौका दिया। जैसे कि बच्चे बूढ़े सभी को ही खेलों में इंटरेस्ट होता है, उसी प्रकार मुझे भी खेलों में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने गेम्स में जाने का फैसला किया और मैं 8 साल की एज से जिमनास्टिक खेलने लगी थी। मेरे सर है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से आज मैं एक स्पोर्ट टीचर भी बनी हूँ और एक अच्छा प्लेयर बनी हूँ।
0: अनु जी, आप हमारी सखियों को ये बताइए कि आप किस प्रकार के खेल में आप माहिर हैं और आपका पसंदीदा खेल कौन सा है।
1: मेरा फेवरेट गेम जिमनास्टिक है, जिसमें मैंने बहुत नेशनल भी खेला है, स्टेट लेवल चैंपियन रह चुकी हूँ। मैं 8 साल की एज से इस गेम को खेल रही हूँ। मैंने इसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल, ओपन्स नेशनल, वुमेन्स नेशनल, सभी नेशनल खेल चुकी हूँ मैं, और ये सब मैंने जिमनास्टिक में ही अचीव किया है। और जिमनास्टिक के ऐसा गेम है जिसमें 4 अपरेटस होते हैं, 4 अपरेटस गर्ल्स के लिए होते हैं, 6 अपरेटस बॉयज के लिए होते हैं। जिमनास्टिक वैसे तो एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वाला गेम है, जिसे मतलब कम एज से आप स्टार्ट करते हो तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत होती है। बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल रहेगा तभी आप जिमनास्टिक कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपके अंदर बहुत पावर, स्टेमिना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिमनास्टिक गेम बहुत रिस्की भी होता है। इसमें स्टंट करने के साथ साथ चोट लगने का भी डर रहता है। आपका माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब आप कुछ भी स्टंट करते हैं या फिर कुछ जंप करते हैं तो उसमें आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे मूव करना है।
0: बहुत सही बात कही अनु जी। देखिए, जब हम अपने शरीर में तालमेल बैठाना सीख जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो काम बहुत ही अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात बोल रही हैं आप। और भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारी कोई सखी आपकी तरह गेम्स टीचर या ट्रेनर बनना चाहती है तो उसे क्या करना होगा।
1: सबसे पहले तो शालिनी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस फील्ड में बहुत मेहनत है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक खुद से इंटरेस्टेड नहीं होगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल सही।
1: इसीलिए मतलब जैसे इसको आपने जैसे पहले कभी कोई गेम में आपका इंटरेस्ट हो या फिर आपने कुछ गेम खेल रखे हो या जिस गेम के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, जानकारियां हो, तो उस गेम में आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे BPED होता है, BPED कोर्स है जिसको करने से आपको है ना तो स्पोर्ट्स के हर गेम के बारे में नॉलेज मिलती है। मेन गेम जैसे आपका कुछ भी हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, जिमनास्टिक क्यों ना हुआ।
0: बहुत बढ़िया अनु जी, आपने हमारी सखियों को इतने सारे कोर्सेज के बारे में बताया जिनकी वजह से वो आगे चलकर एक अच्छी ट्रेनर या गेम्स टीचर बन सकती हैं। अब मैं आगे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गेम्स की फील्ड में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
1: क्यों नहीं शालिनी जी, छोटे से लेवल से भी आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। और हम सब मिलकर एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे आते हैं, थोड़े बहुत बच्चों से स्टार्टिंग होती है, भले से 4 बच्चे आ रहे, 2 बच्चे आ रहे, धीरे धीरे वो चीज चल के बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: और धीरे धीरे आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। जैसे कि हर स्कूलों में स्पोर्ट टीचर की डिमांड, सभी को मतलब खेलों में अब रुचि आने लगी है, बच्चों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा खेलों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी धीरे धीरे करके अर्निंग शुरू होने लग जाएगी और आप इसमें माहिर हो जाएंगे।
0: तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खेल हमें स्वस्थ तो रखते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जेब को भी हरा भरा रखते हैं ना। आखिर में आप हमारी सखियों के लिए क्या कहना चाहेंगे।
1: अब मैं सखियों से यह कहना चाहूँगी कि अब वो समय नहीं रहा है जब कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब। अब वह समय है, जितना महत्व पढ़ाई का है उतना महत्व खेलों का भी है। अब आप भी चुप मत रहिए, अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारिए, और आप भी अगर किसी गेम में रुचि रखती है या इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़िए।
0: बहुत अच्छी बातें कही अनु जी ने हमारी सखियों से। हम भी चाहेंगे कि सखियां अपने अरमानों को, अपने सपनों को पूरा करें, चाहे तो गेम्स टीचर के रूप में। अनु जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

जाते हैं, जबकि वे दिन भर हमारे शरीर का भार सहते हैं और बाहरी परिस्थितियां से लड़ते रहते हैं। पैरों का प्राकृतिक स्थान उन्हें आराम देता है सखियो, थकान कम करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो आज जानेंगे रूप लावण्य में पैरों को सुकून देने वाले फुटपाथ। सखियो, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के अनुसार तलवों में अनेक तरह की नाड़ियों का जाल होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी होती हैं, और यही कारण होता है कि पैरों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका अवशोषण हो पाता है। सही देखभाल से रक्तचाप सुचारू रहता है, तनाव भी कम होता है और हाँ, शरीर को आराम मिलता है। अगर आप थकान दूर करना चाहते हैं ना सखियो, तो टब में 2 बड़े चम्मच ग्रीन टी या टी बैग ले सकते हैं और गुनगुने पानी में उन्हें 5 से 10 मिनट डालकर छोड़ दें ताकि उनके पोषक तत्व उसमें घुल जाएं। अब इसमें आप 1/2 कप नमक डालें और 1/4 कप बेकिंग सोडा डालें, 5 बूंद पेपरमेंट ऑयल की डालें और पैरों को 15 से 20 मिनट तक इसमें डुबा कर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्त संचार सुचारू हो, तो गुनगुने गुनगुने पानी में 1/2 कप समुद्री नमक, 1/4 कप बेकिंग सोडा, 5 बूंद पेपरमेंट ऑयल और थोड़ी सी कद्दूकस की हुई अदरक मिला लें और पैरों को लगभग 15 मिनट तक इसमें भिगो कर रखें। और अगर मकसद हो क्लींजिंग का, कि आप पैरों को साफ करना चाहते हैं, तो गुनगुने पानी में 1 कप सेब वाला सिरका लें, 1/2 कप समुद्री नमक डालें, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और 5 बूंद किसी भी तेल की डाल सकते हैं। अब पैरों को 15 से 20 मिनट तक इसमें भिगो कर रखें। इसके नियमित इस्तेमाल से रक्त संचार तो बेहतर होगा ही सखियो, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुधरेगी, साथ ही तनाव कम होगा, अनिद्रा और मानसिक थकान को भी राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें सखियो, यदि पैरों में कोई खुला हुआ घाव या संक्रमण है तो फुटपाथ बिल्कुल ना करें और अधिक गर्म पानी का उपयोग भी ना करें। मधुमेह के जो मरीज हैं वे चिकित्सक की सलाह लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी तेल या सामग्री से एलर्जी हो तो उसे भी शामिल ना करें। सखियो, अगर आप फुटपाथ लेती हैं तो फिर देखिए कि कैसे आपके पैर कोमल, मुलायम, खूबसूरत तो दिखेंगे ही, साथ ही साथ आपको चुस्त दुरुस्त भी रखेंगे।

और अब रुख करते हैं फूड जोन की तरफ। फूड जोन में आज हम बात करेंगे बच्चों और बड़ों की पसंदीदा चटनी, सेजवान चटनी की। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं होममेड सेजवान चटनी। सखियो, इसके लिए आपको चाहिए सूखी लाल मिर्च 15 से 20, आप चाहें तो काश्मीरी और तीखी मिर्च मिली जुली ले सकते हैं, बारीक कटा हुआ लहसुन आधा कप, बारीक कटा हुआ अदरक 1/4 कप, तेल आधा कप, सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, सफेद सिरका 1 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और हाँ, काली मिर्च का पाउडर 1 छोटा चम्मच। अब सबसे पहले सखियो, दोनों तरह की लाल मिर्च को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो कर रख दें ताकि वे नरम हो जाएं। अब इन्हें पीस कर पेस्ट बना लें। कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन और अदरक को गुलाबी होने तक भून लें। इसमें मिर्च पेस्ट मिलाएं और धीमी आंच पर तेल अलग होने तक चलाते हुए पकाएं। सोया सॉस, सिरका, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। 2 से 3 मिनट तक पकाएं और अंत में काली मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं। अब इस चटनी को ठंडा करें और ठंडा करके जार में भर के फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहें तो इस चटनी को 1 महीने तक लगभग स्टोर कर सकते हैं। देखिए ना, कितनी आसानी से तैयार हो गई होममेड सेजवान चटनी। अब चटपटी चटनी के बाद हो जाए सगियो एक प्यारा सा मीठा मीठा गीत।

सखियो अब होंगी कुछ काम की बातें। आज हम बात करेंगे सखियो कि अक्सर हमारा जो थका हुआ शरीर है वो बताता है कि शरीर में आयरन की कमी हो रही है। जी हाँ, आयरन की कमी। जब ध्यान भटकता हो, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो, तो ये आयरन की कमी के संकेत हो सकते हैं। ये समस्या सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन शरीर पर इसका गहरा असर होता है सखियो। आयरन शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज है, जो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है सखियो, और ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। पर्याप्त आयरन होने पर शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है, दिमागी कार्य क्षमता बेहतर होती है, और हाँ, प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। वहीं अगर इसकी कमी हो जाती है ना सखियो, तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कभी कभार कुछ सामान्य से कारण जैसे संतुलित आहार का अभाव, आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की कमी या इसके अलावा महिलाओं में अत्यधिक मासिक स्त्राव, गर्भावस्था के दौरान बढ़ी हुई जरूरत, बार बार खून की कमी या पेट की समस्या के कारण भी आयरन का सही अवशोषण नहीं हो पाता। और सखियों, कुछ लोगों को ये समस्या अनुवांशिक या लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के कारण भी हो सकती है। सांस फूलने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, धड़कनें तेज होती हैं। इसके अलावा जो मानसिक एकाग्रता है वो भी कम होने लगती है, सिर दर्द होता है, त्वचा पीली पड़ने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और भी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। आयरन की कमी से हम सभी जानते हैं कि एनीमिया भी हो सकता है सखियों। ऐसा ना हो सके इसलिए हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान में अगर आप मांसाहारी हैं तो रेड मीट, कलेजी, मछली व अंडे अच्छे स्रोत होते हैं आयरन के। और अगर आप शाकाहारी हैं तो चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, तिल, दाल, हरी सब्जी, कद्दू के बीज, गुड़, खजूर व किशमिश ले सकते हैं। और हाँ, रोज सुबह नाश्ते में गुड़ या सूखे मेवे जरूर शामिल करें। सलाद में नींबू डालकर खाएं और प्रोस्टेट फूड से दूरी बनाकर रखें। आयरन का सही अवशोषण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है विटामिन सी। तो सखियों, काम की ये बातें जरूर याद रखिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फिलहाल चलने का समय हो रहा है, तो बता दें आपको कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

श्रोता बहनें अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता।
3: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
4: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
3: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
4: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
3: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें।
4: चौराहे पर हमेशा जेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
3: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
5: ए भाई जरा देख।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है लोक संगीत, कलाकार हैं कालू सिंह चोपड़ा और साथी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला लोकगीत।
1: हे जी गगन मंडल से उतरे और सतगुरु

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आपने कालू सिंह चोपड़ा और साथियों के गाए लोकगीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। कलाकार हैं श्रुति कलवे।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने श्रुति कलवे के गाए कुछ भक्ति गीत सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की थी। ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए गुलजार के लिखे गीत से। संगीत खयाम का है और फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए गुलजार के लिखे गीत से। संगीत खयाम का है और फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

और अब पेश है कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर। लता मंगेशकर के गाए इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष

0: 2026 के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल है। शाम 5 बजे शुरू होने वाले इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास राष्ट्रप्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। इसके साथ ही भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत को बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी गई, जो पहले 6,941 करोड़ रुपए थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का सपना एक देश, एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कम वर्षा की स्थिति में जरूरी तैयारियों, वैकल्पिक फसल योजनाओं और किसानों के हितों की रक्षा पर चर्चा हुई। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 जुलाई की रात तक लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। आवेदक हज कमेटी की वेबसाइट या हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया में चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया और पंजीयन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा कलेक्टर ने जिला पोषण समिति की बैठक में गर्भवती महिलाओं का 100% पंजीयन करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों में अवैध गैसकेट और अनफिट वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। और शिवपुरी में मोहर्रम पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सद्भावना समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

News. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री

0: शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रैप का काम सीखा, मूवी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है। तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद का

0: कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरो मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने

0: आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। SIT के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनेनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनेनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का आरंभ कर रहे हैं फिल्म राजनीति के गीत से। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है और आवाज आदेश श्रीवास्तव, रोसेली और शशि की।
4: ते।

फिल्म राजनीति का ये गीत सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी अनिल कवचाले, सुषमा, आरती, सबीहा, रूपाली, श्वेता, पूजा, सीमा और उनके सभी साथियों ने गुमाश्ता नगर इंदौर से। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की भी यही फरमाइश थी। लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली, अनरत, हल्ले, लल्लू, ऋषि और रैकवार परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी फरमाइश बंडा बेलई सागर से भेजी थी। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जिसे सुनवाने की फरमाइश की है गोला बाजार बक्सर से जीत प्रसाद, आशीष कुमार, सतीश कुमार, आयुष और आयुषी ने। गोला बाजार बक्सर से ही श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और बीबी आरजू। तो पेश है आप सबकी पसंद पर राहत फतेह अली खां और तुलसी कुमार के स्वर में इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत प्रीतम का है और फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

शफकत अमानत अली की आवाज़ में आप सुन रहे थे निरंजन आयंगर का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से संवारा था शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म थी माई नेम इज़ खान। फरमाइश करने वाले श्रोता थे अंबेडकर चौक खुरई से परमानंद आर्य, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनका पूरा परिवार। हनुमानगढ़ राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और उनके सभी साथी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू और तासू, मयंक शुक्ला, राशि शुक्ला, पंकज शर्मा, साधना शर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कोला रोड भोपाल से अपनी फरमाइश हमें भेजी। तो आप सबकी पसंद के इस गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनते हैं शंकर महादेवन और अलीशा मेंडोसा की आवाज़ में जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत एक बार फिर शंकर एहसान लॉय का है। फिल्म है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार और मोहम्मद हसनैन। ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। जिला खंडवा ग्राम छेंगा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र, झवर, तनुश्री, आरोही और कान्हा ने इस गीत की फरमाइश की है। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मुस्कान और जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। बिलहरी बड़खेरा से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खां, सुमित, सुनील और उनके सभी साथी। तो पेश है आप सबकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत अब आप सुनेंगे राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ में। विशाल ददलानी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने। फिल्म है अनजाना अनजानी और इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमें लिख भेजी है भाटापारा दत्रेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छविंद्र कुमार वर्मा ने। टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप से ने मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल की फरमाइश हमारे पास आई है। राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतना, रोशनी, बेबी प्रियांशी ने शाहू नगर यवतमाल से फरमाइश भेजी है। बलिया नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश है। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी, प्रांजल और गाजीपुर के शेरपुर कला से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय भी यही गीत सुनना चाहते हैं। इसी गीत को सुनना चाहा है राजेश सावले पाटिल, राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने छत्रपति संभाजी नगर से। तो सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना अनजानी का गीत। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनने में प्रेरक बल रहा है। कल नई दिल्ली में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के प्रति प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अल नीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए बैठक की। इस बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। आज के इन मुख्य कार्यक्रमों में शाम 5 बजे से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू

द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी शाम 6 बजे आप सुनेंगे। 7:21 का समय ग्राम सभा कार्यक्रम का रहेगा। इसके अंतर्गत सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका विषय पर आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता। बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल होगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुना जा सकेगा रात 10 बजे। और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन सुना जा सकेगा। ये थे संध्याकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण।

0: कृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका विषय पर आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता, बुंदेली समाचार, गीत संगीत और चर्चा शामिल होगी। सुर्खियों में कार्यक्रम रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे। उर्दू कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुना जा सकेगा रात 10 बजे, और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन सुना जा सकेगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:01 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है लोक संगीत।
1: आजी गुरु

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा है। सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं श्रुति कालवे।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से डीटीएच के ऑडियो चैनल पर किया जा रहा है। पेश है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म है टू स्टेट्स

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने अभी सुना इरशाद कामिल का लिखा गीत। संगीत यार रहमान का था और फिल्म थी तमाशा। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज़ सोनू निगम और कीर्ति सगाथिया की है। दावत-ए-इश्क फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत साजिद वाजिद का।

दम लगा के हईशा, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनेंगे मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। वरुण ग्रोवर की रचना है और संगीत अनु मलिक का।

मोनाली ठाकुर के गाए इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है।

0: यह आकाशवाणी भोपाल है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए 5,365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। बैठक में किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने से जुड़े फैसले भी लिए गए। अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो कि 25 जून को भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसमें राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारी और सभी जिलों के नोडल अधिकारी शामिल होंगे। उन्हें छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया और पंजीयन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 20 जुलाई की रात तक किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। वहीं विभाग ने आज जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट भी जारी किया है, जबकि प्रदेश के कई अन्य जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुभाष जाटव का काव्य पाठ, साथ ही होगी वार्ता भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। तो सुनते हैं ये वार्ता। वार्ताकार है ऋषिकांत सक्सेना।
2: नमस्कार, आज हम बात करेंगे भारतीय पत्रकारिता के बदलते स्वरूप की। इस बात में कोई शक नहीं है कि आज भारतीय पत्रकारिता का स्वरूप प्रिंट और टेलीविज़न से आगे बढ़कर डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में प्रवेश कर चुका है। आज ब्रेकिंग न्यूज़ और त्वरित प्रतिक्रिया ने पारंपरिक संपादकीय मूल्यों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। इससे एक तरफ सूचना का लोकतंत्रीकरण हुआ और दूसरी तरफ इसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता और बढ़ गई है। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, मूल्यों और समाज सुधार की मजबूत नींव पर खड़ा है। आज़ादी के बाद जिस तरह से हमारे देश ने विकास की यात्रा

को तय करना शुरू किया, विकास के मापदंडों को छुआ, उससे यह तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। पत्रकारिता का विकास भी ऐसे ही होता जाता है। आज की पत्रकारिता केवल गली मोहल्लों तक सीमित नहीं रही है, आज एक गांव की चौपाल से लेके बड़े बड़े शहरों की एक्टिविटीज़ को मिलाती है और एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। आज पत्रकारिता के जरिए ही हम लोग जान पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। पत्रकारिता के कई रंग रूप समय के हिसाब से बदलते जाते हैं। आज की पत्रकारिता तकनीकी पत्रकार से कंधा मिला के चल रही है। आज खबरें आपका इंतजार नहीं करती, अगर हम लेट होते हैं तो वो किसी और एंगल से फ्लो हो जाती हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य आम जनता की आवाज़ उसके लिए पहुँचे ये साधन होना चाहिए। आम आदमी का क्या हक है, उसकी क्या दिक्कतें हैं और उसको किस तरह से दूर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक सेतु है सरकार और जनता के बीच का। ये सेतु दोनों का

प्रिंट मीडिया हो। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य आम जनता की आवाज़ उसके लिए पहुँचे ये साधन होना चाहिए। आम आदमी का क्या हक है, उसकी क्या दिक्कतें हैं और उसको किस तरह से दूर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पत्रकारिता एक सेतु है सरकार और जनता के बीच का। ये सेतु दोनों को आपस में मिलाता है, उसके साथ ही लोगों की मानसिकता बदलती है, हालात सामने आते हैं और विकास का तरीका तेजी से आगे होता है। पिछले कुछ दशकों में विशेषकर इंटरनेट और डिजिटल क्रांति के इस दौर में पत्रकारिता का परिदृश्य काफ़ी कुछ बदल गया है। हकीकत तो यह है कि आज प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न की सीमाएं टूट रही हैं और सूचनाएं सीधे मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रही हैं। यह बदलाव जितनी तेज़ी से हुआ है उसने पत्रकारिता के स्वरूप और उसके नैतिक मूल्यों को और भी गहराई तक जाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे समय में डिजिटल मीडिया के उदय का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि अब सूचनाओं का केंद्र बदलता जा रहा है। अब खबरों के लिए आम जनता को अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। सोशल मीडिया और नागरिक पत्रकारिता के माध्यम से देश के सुदूर कोनों से आ रही आवाज़ों को भी आसानी से सुन और समझ पाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स समाचारों के प्राथमिक स्रोत बन गए हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्निक ने भ्रामक सूचना और फेक न्यूज़ के जाल को अलग अलग कर दिया है। सोशल मीडिया भी इस तरह से काम करता है कि वे दर्शकों को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन इससे समाज के कई एंगल सामने आ रहे हैं। ऐसे दौर में एक निष्पक्ष और जिम्मेवार पत्रकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़ी बात है कि पत्रकारिता के बुनियादी मूल आज भी नहीं बदले हैं। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य की खोज और जनहित आज भी वही है। माध्यम चाहे अखबार हो, टीवी चैनल हो या डिजिटल पोर्टल या फिर कोई और दूसरा साधन, हर जगह विश्वसनीयता ही किसी भी तरह की पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी है। डिजिटल युग में तो हालत यह है कि पत्रकारों और संपादकों का दायित्व बढ़ गया है। यह कह सकते हैं कि इस समय भारतीय पत्रकारिता एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब इसकी पहुंच और विस्तार बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, लेकिन इसके नैतिक पतन को रोकना भी समाज और लोकतंत्र के हित में अत्यंत आवश्यक है। निष्पक्ष पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होती है। तकनीक के इस नए दौर में यदि पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता, साहस और सामाजिक सरोकार को बनाए रखती है तो उसका भविष्य उज्जवल है और लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। लेकिन अब हमको यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया ने भावी पत्रकारों को पेशेवर तरीके से जिस तरह से फील्ड में पेश करने का काम शुरू किया है उससे काफ़ी बदलाव आ रहा है। इस दिशा में पूरी दुनिया में काम हो रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों ने अपने अपने छात्रों को डिजिटल राजनीतिकार के रूप में भी अपने कैरियर को तैयार करने के लिए कई तरह के सोशल मीडिया पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि नई तकनीक के आगमन से पत्रकारों के कौशल के एक आयाम और बढ़ गए हैं और जो लोग इस कौशल को पूरा कर सकते हैं उनको पत्रकारिता में आगे आने का मौका पहले ही मिलेगा। इन चीज़ों को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर और ऑनलाइन कौशल, मल्टीमीडिया, न्यूज़, सूचना और कई ऐसी चीज़ें जिनसे खबरें निकल के आम जनता तक पहुँचती हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया सबसे पहले पहुँचता है और उसमें आने वाली पत्रकारिता की खबरें जनता से सीधी जुड़ती हैं, जिससे पारंपरिक मीडिया, विज्ञापन और जनता के साथ संबंधों के बीच में एक जुड़ाव स्थापित हो जाता है। अब समाचार बुलेटिनों में पत्रकारों की तस्वीर और वीडियो समाचार के साथ दर्शकों तक पहुँचाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले समाचारों की एक सीमा होती है, लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन पत्रकारिता ने समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो और समाचार अभिलेखागारों को एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है, इससे पत्रकारिता के एक बिल्कुल नए आयाम का उदय हो गया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पाठक अब सोशल मीडिया के माध्यम से न केवल वर्तमान समाचारों तक पहुंच सकते हैं बल्कि वो ऑनलाइन तरीके से उससे जुड़कर अपनी प्रतिक्रिया भी उसमें दे सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस समय सोशल मीडिया के कारण पत्रकारिता क्षेत्र की व्यावसायिकता का विस्तार हो रहा है। इसमें पेशेवर और सामाजिक लोगों को भी शामिल किया गया है। पत्रकारिता को दैनिक जीवन के व्यापक क्षेत्रों में फैलाने के लिए एक्सपर्ट्स की कमी
तराशी जा रही है और

0: उनको दूर किया जा रहा है। उदाहरण के लिए पर्यावरण पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सोशल मीडिया ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चाओं में ला दिया है। पत्रकारिता पेशे से सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक समाचार का प्रारूप मुद्रित समाचार की तुलना में अधिक प्रमुखता पा रहा है। इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि आज सिर्फ खबरें ही लोगों को नहीं आकर्षित करती हैं, बल्कि उनको प्रस्तुत करने का तरीका भी उनको लुभाता है। इस समय अधिकांश मीडिया संस्थानों में जिस तरह की मीडिया साइट हैं, उनके माध्यम से अपने अपने दर्शकों को खबरें अधिक से अधिक पहुँचे, इसके लिए हर तरीके से काम किया जा रहा है। आज पाठकों में भी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और डिजिटल मीडिया अपना एक अलग स्थान तेजी से बनाता जा रहा है। सोशल मीडिया के युग में पत्रकारिता आम पत्रकारिता नहीं रही है, इसमें आने वाले नए युवा ऐसे अधिक हैं जो पत्रकारिता को अपने अंदाज में पेश करना चाहते हैं। वो सिर्फ न खबरों के लिए ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं, बल्कि वहां का लाइव टेलीकास्ट करके लोगों को भी उससे जोड़ते हैं। ये बात सही है कि खबरों में एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिद्वंदिता शुरू से ही रही है और आज भी चल रही है। अब तो यह हालत है कि कई मीडिया संगठन 2400 घंटे संपादकीय सेवाएं न्यूज़ रूम में उपलब्ध कराकर अपनी प्रक्रियाओं से तत्काल निकलकर लोगों को अपडेट करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अब ग्रामीण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरें दर्शकों को तेजी से पहुँचाई जा रही हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के महत्व को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया में जिस तरह से खबरें आ रही हैं, वह भी पत्रकारिता का एक बदला हुआ रूप है। इसमें किसी कहानी या समाचार या किसी अन्य घटना पर अपनी व्याख्या करने के अलावा उस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं। इससे लोग खबरों से सीधे जुड़ते हैं और अपना नज़रिया पेश करते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें पाठकों और दर्शकों की भागीदारी ऐसी सीधी होती है ताकि उसमें कई बार पत्रकार अपनी गलतियां सुधार भी लेते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर टिप्पणियों या संपादन के माध्यम से तुरंत बदलाव भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से पाठकों और पत्रकारों के बीच एक सच्चा रिश्ता भी बनता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टिप्पणियों व्याख्याओं के रूप में एक दूसरे से खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। जो पत्रकार आमतौर पर अपने पाठकों से सीधे बात नहीं करते, उनको सोशल मीडिया के जरिए ऐसा करने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर ब्लॉग पत्रकारिता में एक ऐसी चीज है जिसमें पत्रकार और उनको जानने वाले श्रोता या दर्शक वह भी उनकी बातों को सुन समझ लेते हैं और अपने रिएक्शन पेश करते हैं। अंत में अपन यही कह सकते हैं कि पत्रकारिता आज के समय से तेज चलने वाली दिशा में जा रही है। सूचना के क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उससे पत्रकारिता अब केवल कमरे में बंद होकर खबरों को संकलित करने की नहीं रह गई है। इसमें समाचार निर्माण, समाचार साझाकरण और सामाजिकरण के संदर्भ को भी पेश किया जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि आज पत्रकारिता केवल खबरों से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जा रही है, यह लोगों को जिस तरह से जोड़ रही है, उसका बदलता स्वरूप टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक नया नज़रिया पेश कर रहा है, जिसका लाभ मानव जाति को आने वाले समय में और मिलेगा और लोग विकास के साथ मापदंडों को देखते हुए अपने आप को इससे जोड़ने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।
1: भारतीय पत्रकारिता का बदलता स्वरूप, इस विषय पर अभी आपने ऋषिकांत सक्सेना की वार्ता सुनी और अब शब्द सागर के अगले क्रम में सुनते हैं काव्य पाठ सुभाष जाटव से।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष जाटव आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। बन

साथ छोड़ो, क्या गलत है क्या सही यह बात छोड़ो, इन प्रपंचों से निरामन भर रखा है, तुमको अपना पात्र सहयोगी मिला हो।

शब्द सागर कार्यक्रम में अभी आप सुभाष जाटव का काव्य पाठ सुन रहे थे। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने ये जाना कि धारा नगरी का राजकुमार विजय श्रवा नर्तकी भुवन मोहिनी से प्यार करने लगा था, जिससे विजय श्रवा के पिता राजा द्युम्न सेन नाराज हो गए और भुवन मोहिनी को राज्य से निकाल दिया। निर्वासित नर्तकी भुवन मोहिनी पहुंच गई इंद्रप्रस्थ और वहां के नरेश आदित्य सेन से पा लिया आश्रय। परंतु कुछ ही महीनों बाद राजमाता के तानों से नाराज होकर श्रेष्ठी का वेश धारण कर राजकुमार भी इंद्रप्रस्थ आ पहुंचा। उधर इंद्रप्रस्थ के राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित ही थे, जब उनको पता चला कि एक सुदर्शन व्यक्ति जो अपने आप को श्रेष्ठी बताता है आश्रम में ठहरा हुआ है, तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं वो धारा नगरी का राजकुमार तो नहीं। असलियत का पता लगाने के लिए आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रम भेजा। भुवन मोहिनी राजकुमार को वहां देखकर प्रसन्न तो हुई, परंतु असमंजस में पड़ गई कि राजकुमार किससे मिलने आए हैं, उससे या राजकुमारी चंद्रहासिनी से। भुवन मोहिनी ने जब राजा आदित्य सेन को विजय श्रवा के बारे में बताया तो वे राजकुमार को राजकीय अतिथि बनाने के लिए बुलाने आए और उसके सम्मान में एक समारोह रखा। सम्मान समारोह से लौटते समय राजकुमार और राजकुमारी चंद्रहासिनी की मुलाकात हुई। अब आगे सुनते हैं धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी।
1: आरण्यक महोदय, अब हमें लौटना होगा।
2: क्यों?
1: देखो, राजकुमार जी और हमारी सखी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रथों की ओर जा रहे हैं।
2: हाँ, परंतु मणिहार का क्या होगा?
3: उसने अपना मूल्य तो चुका दिया।
2: आए?
3: ना भी मिले तो क्या है।
2: अच्छा, ऐसा है तो फिर चलो। अरे भाई सारथी मित्रों, अपने अपने रथों को आगे बढ़ाओ।
3: मुझे पुरस्कार चाहिए, मुझे पुरस्कार चाहिए। मैंने राजकुमारी का हृदय हार खोज लिया।
2: कहाँ था?
3: यहाँ गिरा था।
4: राजकुमारी जी को बधाई।
5: किसके लिए?
4: मणिहार के लिए।
5: इतनी तुच्छ वस्तु के लिए क्या बधाई? मुझे तो आज संसार की संपूर्ण निधि प्राप्त हो गई। लग रहा है मानो मैं वायु में उड़ रही हूं।
4: विदा, अब अपने रथ पर सवार होइए।
2: चलो भाई, रथों को आगे बढ़ाओ। बस यहीं से हमारे रथों के मार्ग अलग अलग हो जाएंगे।
3: आरण्यक महोदय, अपने मित्र से कहिएगा कि शीघ्र ही पुनः दर्शन दें।
2: अवश्य अवश्य।
6: राजकुमारी जी, क्या मैं आपके कक्ष के भीतर आ सकती हूँ?
5: अरे आओ आओ भुवन मोहिनी, मैं तो कब से तुमसे मिलना चाह रही थी।
6: तो फिर बुलवाया क्यों नहीं? आपकी दासी हूँ। अरे ये मणिमाल आपके गले में
5: क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है?
6: बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने भेंट किया आपको?
5: हाँ, भारत के भावी सम्राट ने, मेरी विजय श्रवा ने।
6: ओह
5: भुवन मोहिनी, अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुखड़ा अचानक मलिन क्यों हो गया?
6: नहीं तो?
5: तो फिर मुझे भ्रम है।
6: हो सकता है।
5: क्या तुमसे भावी सम्राट का अतीत में कोई एकांत मिलन हुआ था?
6: मुझसे? मुझसे क्यों? कहां भावी सम्राट और कहां भ्रष्ट दलित एक क्षुद्र नर्तकी।

0: अरे भाई, राजकुमार तुम्हारे अनन्य उपासक हैं, इसलिए पूछ रही हूँ।
1: कौन कहता है?
0: मैं कहती हूँ।
1: अच्छा, इसका प्रमाण?
0: तुम्हारा चित्र उनके एकांत पर्ण कुटी में लगा हुआ, जिसे राजकुमार ने अपनी तूलिका से स्वयं चित्रित किया है।
1: ये झूठी बात है।
0: मैंने स्वयं देखा है तुम्हारे सौंदर्य सौष्ठव का वह महान चित्र, राजकुमार की महान कृति, अपनी आंखों से देखा।
1: तो क्या राजकुमारी से भावी सम्राट का एकांत मिलन संभव हो सका?
0: नहीं, मैं उनकी शून्य पर्णशाला में उस समय पहुंची जब राजकुमार कहीं पर्यटन में निकल गए थे।
1: विश्वास नहीं हो रहा। क्या सचमुच राजकुमार के एकांतवास स्थल में मेरा चित्र है?
0: हाँ हाँ सखे, बिल्कुल सच है। मेरे नेत्र तुम्हारे चित्र को प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए। किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस सूचना में ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना उद्विग्न कर दिया।
1: बात तो सचमुच कुछ भी नहीं है राजकुमारी जी, और ना ही किसी प्रकार की उद्विग्नता ही है। हाँ, कौतूहल इस बात का अवश्य है कि इतने महान व्यक्ति को मुझ तुच्छ नारी का चित्र रखने की कैसी लालसा उत्पन्न हुई।
0: तुम सदा अपने को तुच्छ क्यों समझती हो भुवन मोहिनी? क्या तुम वास्तव में इतनी भोली हो कि अपने सौंदर्य से स्वयं अपरिचित हो? कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं होता। जब स्त्री जाति तुम्हारे अनन्य स्वरूप का दर्शन करके अपने को धन्य मान लेती है, तब विजयश्रवा तुम्हारे स्वरूप पर क्यों न पसीजे? माना कि वे भावी सम्राट हैं, सत्ता अधिकार वैभव और राजलक्ष्मी उनकी चेरी हैं, किंतु अपने पुरुष हृदय को वो कहाँ फेंकते? हाय भुवन मोहिनी, जब स्त्री जाति तुम पर अनुरक्त है, तब तुम्हें निश्चय पूर्वक मान लेना चाहिए कि कोई भी पुरुष तुम्हारे रति से सुंदर स्वरूप पर सहज ही मोहित हो जाएगा। अरे भुवन मोहिनी, ये भी संभव है कि अब तक जितनी नारियां राजकुमार की दृष्टि से गुजरी हो, उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी तुम ही रही हो। हो सकता है इसी कारण से राजकुमार ने तुम्हारा चित्र अंकित कर डाला हो। इतनी व्यग्र क्यों हो?
1: जो कुछ भी हो, किंतु एक महान व्यक्ति के पास एक नर्तकी का चित्र कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।
0: ओ रूप की जादूगरनी, तुझे ज्ञात नहीं है कि तेरे मधुर स्पर्श में अमूल्य आसव किसी उत्तेजना और विस्मृति भरी पड़ी है। तेरी रूप माधुरी का सुखद स्पर्श जब मुझे विस्मय विमुक्त और विह्वल कर देता है, तब भला धारा नगरी की राजकुमार को क्यों ना करेगा? क्यों ना वो तेरी वासना में सिहर कर तेरा चित्रांकन करें, तेरी मानसिक पूजा करें।
1: बस बस राजकुमारी, बहुत न बनाइए मुझे। इन व्यर्थ की आडंबरपूर्ण प्रशंसाओं से मैं नहीं फंसने वाली। हाँ, ये कहिए कि राजकुमार ने अब अपनी प्रेयसी को खोज निकाला है और प्रथम प्रेमोपहार में ही आपको कृतकृत्य कर दिया है। अब मैं साहसपूर्वक राजकुमार से निवेदन करूंगी कि राजकुमारी चंद्रहासिनी मणिमाल के स्थान पर स्वयं को राजकुमार के हृदय का हार बनाना चाह रही हैं।
0: नहीं सखी, ना जाने कौन हृदय से कह उठता है कि वो मुझे अपना न सकेंगे।
1: ऐसा मत कहिए राजकुमारी, ये तो निश्चित है कि राजकुमार भारत के भावी सम्राट हैं, उनके ऊपर महान दायित्व है। ऐसे में हो सकता है आपके प्रेम सिक्त हृदय की रिक्ति अधूरी रह जाए। ये भी हो सकता है कि आपको अपने पवित्र प्रेम का न जाने कितना मूल्य भी चुकाना पड़ जाए। परंतु
0: सखी, मैंने तो उन्हें प्रथम दर्शन में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इन नेत्रों पर

0: कोई मेरा अधिकार नहीं रहा। भारतीय नारी तो उत्सर्गमयी है, उसका प्रेम सर्वस्व समर्पण रहा है। मैं इसी परंपरा का पालन करूंगी। पहले ही जिन्हें मैंने फूल सा कोमल समझा था, वो प्रस्तर की भांति कठोर निकले। अब और कोई चारा ही क्या है? आप चाहे जैसे भी दे, मुझे तो उनके प्रेम की अलग जगानी ही पड़ेगी। वो मुझे भाई थी, उनकी रूप माधुरी में निष्ठुरता की छाया मुझे नहीं दिखी थी और न ही मैंने देखी कोई हृदयहीनता। मुझे तो जैसे उनके नेत्रों ने एक मौन आमंत्रण दिया था, बस मैंने उसे स्वीकार किया। मैं कहाँ जानती थी कि उनकी इस देवोपम सरलता के चारों ओर महान दायित्वों की कठोर श्रृंखलाएं बंधी हुई हैं।
1: विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैंने उनके प्रेम से तुम्हें विजय श्रवा के संबंध में सब कुछ जानते हुए भी मैं उनके प्रेम से तुम्हें परानमुख ना कर सकी राजकुमारी। मुझे जिन कड़वे परिणामों को प्रेम के नाम पर भोगना पड़ रहा है, संभवतः वो सब अग्नि की लपटों के दृढ़ालिंगन से कहीं अधिक हैं। जीवन में प्रलयंकर हाहाकार है, संताप है, रुदन है।
2: राजकुमारी जी, युवराज विजय श्रवा का भृत्य आरण्यक भुवन मोहिनी को बुलाने आया है। उसे स्वयं राजकुमार ने बुलवाया है।
1: मुझे?
0: जा, तू उस भृत्य से कह दे कि अभी वो राजकुमारी के पास है, अवकाश पाते ही युवराज की सेवा में उपस्थित होगी।
2: जो आज्ञा।
0: सखी, आज मैं तुमसे एक याचना कर रही हूँ। क्षमा करो, अपने अंतर से इस भाव को हटा दो कि तुम एक साधारण नर्तकी हो और मैं राजपुत्री हूं। मैं देख रही हूं कि तुम एक असाधारण नारी हो। मैंने तुम्हारे विनम्र शिष्या बनकर तुमसे संगीत का ज्ञान और उसकी सिद्धि प्राप्त की है। मैं धन्य भाव से तुम्हारी कृतज्ञ हूं।
1: इन सबके लिए हमारी तुम्हारे बीच कृतज्ञता प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजकुमारी। कृतज्ञता तो मैं प्रकट करती हूं प्रत्येक दिवस, प्रत्येक क्षण। विधि विधान ने मुझे महाराज आदित्य सेन की शरण में ला पटका और उन्होंने साहसपूर्वक अभयदान प्रदान किया। अन्यथा भारत सम्राट द्वारा निर्वासित किए जाने पर मुझे निश्चय हो गया था कि मेरा समग्र जीवन विपत्तियों की गाथा बन जाएगा। मेरी सहायता करने का कोई भी साहस न करेगा। महाराज ने मुझ पर जो दया प्रकट की है, उसकी सराहना मैं किस मुख से करूं?
0: सखी, ये भी तुम्हारी महानता है जो सदैव पिताजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हो। अन्यथा राष्ट्र की कुशल और सर्वश्रेष्ठ गायिका होने के नाते तुम जहां भी जाती, वहीं लुब्ध मधुब की भांति मानव सागर को उद्वेलित करती। तुम्हें प्रत्येक स्थान पर आदर और पुरस्कार प्राप्त होता। क्या तुम जानती हो कि युवराज के बुलाने पर भी मैंने तुम्हें क्यों रोक लिया?
1: नहीं।
0: तो सुनो सखी, मैं तुमसे जो कहने जा रही थी वो ये कि हम तुम दोनों एक ही पद की कामनी है। मैं भली भांति समझ गई हूं कि युवराज तुम्हें सर्वांतःकरण से प्यार करते हैं। जो कुछ अपनी ओर से वे तुम्हें प्रदान कर चुके हैं, उसे वो किसी मूल्य पर लौटा ना सकेंगे। और मैं वही चाह रही हूं जो तुम्हें युवराज से प्राप्त हो चुका है, वो है प्रेम, जो एक बार में एक ही को दिया जा सकता है। मैं समझती हूं कि युवराज द्वारा वो प्रेम भी तुम्हें

0: प्राप्त हो चुका है। यदि मुझे अपने प्रेम से युवराज पुरस्कृत भी करना चाहे तो वो एक बार समर्पित किया हुआ होगा। भुवन मोहिनी, तुम स्वयं एक नारी हो, तुम्हें ज्ञात है कि नारी हृदय रहस्य और गोपनीयता की परिधि के भीतर रहकर अपने निश्चल प्रेम की ज्योति जलाता है। वो प्रीतम की मधुमेह मोहिनी मूर्ति अपने हृदय मंदिर में आसीन कर बड़ी गोपनीयता के साथ उस प्रेम देवता की आराधना में लीन हो जाता है। वह आवरण में नारी हृदय ज्यों का त्यों कौतूहलहीन रहता है, परंतु अंदर ही अंदर प्रेमानुभूतियों के उत्तप्त आंसुओं से रोता है, सुलगता है। अवश्य अश्रुओं की धारा में नारी हृदय चलते हुए भी शांति का अनुभव करता है। उत्पीड़ित और प्रताड़ित होकर भी वो बाहर से मुस्कुराता है। सखी, तुम्हें भी ये सब ज्ञात है। अस्तु, राजपुत्री होकर भी भिखारिणी की भांति तुमसे तुम्हारे प्रियतम की भीख मांगती हूँ। बोलो बोलो, मुझे निराश तो ना करोगी?
1: नहीं राजकुमारी, यदि वे तुम्हें स्नेह और आदर प्रदान कर सकें तो मैं अपने को धन्य समझूंगी और चाहूंगी कि वो तुम्हें अपने नेत्रों की पुतली बनाकर तुम्हारी दृष्टि से देखें, तुम्हारे कानों से सुने, तुम्हारी हृदय से बात करें। तुम्हारे अस्तित्व में उनके प्रेम की लय हो और वो पूरी तरह से तुममय हो जाएं। मैं अपने को भाग्यशालिनी समझूंगी। भारत साम्राज्ञी का गौरवमय पद तुम्हारे प्रतिष्ठित होने पर ही उज्जवल रहेगा, अन्यथा मुझ नर्तकी की छाया परंपरागत महानता की सीमा का अतिक्रमण कर उसे तुच्छ बना देगी।
0: ओह भुवन मोहिनी,
1: जाइए राजकुमारी। राजकुमार विजय श्रवा की गौरवमयी प्रेसी और जीवन संगनी बनिए। मैं आप दोनों के प्रेम संबंधों में कभी भी ईर्ष्या का विष सम्मिलित नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि इस अभागिनी नर्तकी ने भी कभी भावी सम्राट की प्रेमिका होने का गौरव प्राप्त किया था। मैं अपना अहोभाग्य यही समझूंगी कि विजय श्रवा की जीवन संगनी खोजने के श्रेय का एक अंश मुझे भी प्राप्त हुआ था। राजकुमारी, जिस दिन सम्राट द्युमत सेन ने मुझे धारानगरी से निर्वासित किया था, उसी समय मैंने निश्चित किया था कि मैं राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी राजकन्या का परिणय विजय श्रवा से कराऊंगी और अपनी खोज में लगी हुई ही इंद्रप्रस्थ नगरी में आई थी। इसके पूर्व भी अनेक बार मुझे नरेशों से ज्ञात हुआ था कि महाराज आदित्य सेन की एकमात्र कन्या ही राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। इसीलिए मेरी रानी, अपने विजय श्रवा के लिए मैंने आपको चुना है। मुझसे भय मत खाइएगा, मैं आपकी अमृत प्रेम प्याली में अपने द्वेष की विषैली घृणा कभी नहीं भरूंगी।
0: इसी विश्वास और इसी पवित्र देन के कारण तुम मुझसे बहुत ऊंची हो। मैं आज तुम्हारे प्रदान किए हुए प्रेम और प्रीतम द्वारा अपने स्नेह का संसार बसाने का कौतूहल में स्वप्न देख रही हूँ। देखो देखो, कभी मुझे भी पुरस्कृत करेगा या नहीं मेरे रूप का देवता?
1: तो चलिए।
0: कहाँ?
1: राजकुमार विजय श्रवा से मिलनी।
0: लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, मुझे नहीं।
1: तो क्या हुआ, क्या अभी भी आपको मुझ पर शंका है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मैं उनके दर्शन की बेचैनी को कुछ पलों के लिए शांत करना चाहती हूँ।
1: ये मेरे लिए भी सुखद होगा राजकुमारी।

0: हो, मित्र विजय शर्मा से मिलने भुवन मोहिनी देवी अभी तक नहीं आई। अब मुझे तो भय लग रहा है कि उन्हें बुलाने के लिए युवराज मुझे कहीं फिर से ना भेज दें। अरे ये क्या, लगता है कि भुवन मोहिनी आ गई, परंतु राजसी रथ में। प्रतीत हो रहा है कि भुवन मोहिनी के संग राजकुमारी भी पधार गई। अब क्या होगा? आइए आइए, राजकुमारी जी को अरण्यक का अंजुलिबद्ध सादर प्रणाम।
1: शुभ हो अरण्यक, जाओ देव से निवेदन करो कि भुवन मोहिनी के साथ राजकन्या चंद्रहासिनी भी दर्शन के लिए उपस्थित हैं।
0: अवश्य देवी। अरे मित्र मित्र मित्र, अचंभा हो गया,
2: क्या हुआ अरण्यक?
0: भुवन मोहिनी आ गई हैं।
2: इसमें अचंभा क्या, उन्हें तो हमने ही बुलवाया था।
0: उनके साथ राजकुमारी जी भी हैं।
2: क्या,
0: हाँ
2: चलो उनकी अगवानी के लिए चलता हूं।
0: यही उचित भी होगा। आइए ये देखिए।
3: शुभ स्वागत है राजकुमारी और भुवन मोहिनी का। देवी, कुटिया के अंदर पधारिए। मैं अतिथि सेवा द्वारा अपने को सौभाग्यशाली और कृतार्थ समझूंगा। ओह भुवन मोहिनी, हम लोग दीर्घ वियोग के पश्चात आज मिले हैं। तुम्हारे साथ राजपुत्री चंद्रहासिनी भी हैं। बोलो, इस शुभागमन के अवसर पर मुझे किस प्रकार अतिथि पूजा और सत्कार करनी चाहिए?
1: सर्वप्रथम भावी सम्राट को वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं जिस प्रकार चाहूंगी वो पालन करेंगे।
3: एवं अस्तु।
1: तो सुनिए देव, राजकुमारी चंद्रहासिनी आपका आतिथ्य ग्रहण करने से पूर्व ये जानना चाहती हैं कि आपके जीवन में उन्हें कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं।

संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक भुवन मोहिनी की पांचवी कड़ी। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने को है, मीडियम वेव पर अब हमारी सभा प्रारंभ होती है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपको सुनवाएंगे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करने हेतु नागरिक अलंकरण समारोह के आयोजन का सजीव प्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगी। मैं शालिनी मित्तल अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर नितेश अरोड़ा के साथ आकाशवाणी की ओर से इस गरिमामय समारोह का सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाने के लिए राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद हैं। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों के प्रति भारत की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ

सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियाँ और गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित है वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य, जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए सभी लोग उनके

0: और अब हम देख रहे हैं गणतंत्र मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितिश,
1: ए वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी फ्रॉम गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ ऑनरेबल प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द पद्मा अवार्ड्स 2026 एट द सेकेंड सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ दिस ईयर। द प्रेजिडेंट विल कन्फर 65 पद्म अवार्ड्स इंक्लूडिंग 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण एंड 56 पद्म श्री। Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines including art, literature, education, sports, medicine, social work, science, engineering, public affairs and ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
0: और नितिश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में, सभी को नमस्कार करते हुए।
1: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud moment, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in a lifetime.
0: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितिश, यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है। ये सम्मान ना केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी का भी परिचायक है। श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता ये है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं। हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नितिश। इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है।
1: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. And the bugler's announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गुरुम के नेतृत्व में।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद।
0: और अब औपचारिक रूप से एक स्वीकृति ले गई माननीय राष्ट्रपति से कि आज विधिवत
1: पद्म विभूषण
0: की शुरुआत की जा रही है।
1: श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।
0: नारायण जी के नाम से लोकप्रिय श्री पी नारायण राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आयोजक हैं, जिन्होंने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2: Beyond journalism, Sri Narayanan made significant contributions as a scholarly author and a prolific translator. His work as a translator includes the works of V.D. Savarkar, M.S. Galwalkar and Deen Dayal Upadhyay from English and Hindi into Malayalam.
0: Nabhyavarshiye Narayanji, Padma Vibhushan, Maninaya Rashtrapati se grahan karte hue.

0: बहुत ही गौरव का क्षण।
1: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस लोक कार्य।
0: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी टॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपको आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए काफी जाना जाता है। न्यायमूर्ति टॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अन्य पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे उनको पुरस्कार दिए मिल चुके हैं।
2: दिस इज राइट। टॉमस इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, पुलिस रिफॉर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन इन प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड्स। ही इज रिसीविंग द पद्म विभूषण फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।

0: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस।
1: डॉक्टर विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से जूनियर स्पर्धाओं में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और फिर ओपन इवेंट्स में गए। लगातार 20 वर्षों तक डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, जिसने टीम को 2 बार फाइनल में पहुँचाया है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के ओपन युग में इतिहास में एक बेजोड़ एग्जाम्पल मानी जाती है। अपना पुरस्कार लेते हुए
0: डॉक्टर SKM महिला नंदन समाज सेवा।
1: SKM कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर SKM मलियानंदन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता भी हैं।
2: Dr. Melanandan has received several awards and honors, Padma Shri Award for Social Work in 2013, National Productivity Awards, he got it for 8 times, and National Safety Awards 2 times, Agriculture and Processed Food Products Export Promotion Awards 5 times.
1: अपना पुरस्कार ग्रहण करते हैं
0: श्री ममूटी कला फिल्म अभिनय।
1: ममूटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो दक्षिण भारतीय भाषा के सिनेमा में है, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में श्री ममूटी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।
2: Clad is in a formal band gala. Shri Ramamurthy is widely respected as a goodwill ambassador for numerous social causes also and the patron for several charitable initiatives.
0: Shri Vellapalli Nateshan Lok Karya.
1: Shri Vellapalli Nateshan Kerala ke pramukh rajneetik neta aur pratishthit vyakti hain. Shri Nateshan ne के मार्गदर्शन में शिक्षा योगों का सबसे स्थायी योगदान रहा है। श्री नारायण ट्रस्ट के माध्यम से इस नेटवर्क में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी केंद्रों सहित संस्थानों की संख्या 40 से बढ़कर 130 हो गई है।
2: एंड श्री नटेशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फैमिली यूनिट्स एट द शाखा लेवल, एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रीच इनटू हाउसहोल्ड्स एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन्स लीडरशिप, एजुकेशनल सपोर्ट, सेविंग्स प्रमोशन, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी कोहिजन बियॉन्ड केरला। SNDP units were established in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Delhi and the Gulf. Receiving the Padma Bhushan from Honorable President.
0: Dr. Datta Treyodu Nori, Chikitsa Oncology.
1: आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशस्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अग्रणी चिकित्सक और महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी नेता हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नल मेडिकल सेंटर और में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ ही कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है।
2: डॉक्टर नोरी हैज एक्सटेंडेड हिज एक्सपर्टाइज इन एक्सपीरियंस टू वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर्स इन नियरली 2000। In early 2000, he helped the government of Andhra Pradesh.
0: Shri Shibu Soren, Marnopranth, Lok Karya, unki patni, Shrimati Rupi Soren.
1: Shri Shibu Soren, Marnopranth, ye award diya ja raha hai, jo unki patni lengi aur maane Rashtrapati niche utarte hue, unko ye padak pradan karne ke liye पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है।

0: सोरेन का 4 अगस्त 2025 में निधन हो गया था। उन्हें श्रद्धापूर्वक विशोम गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से वो एक थे।
1: For millions, Shri Soren was more than a political leader. He was a custodian of memory, resistance,
2: Shrimati
1: and hope.
2: Alka Yajnik, Kala, Parshv Gayan.
0: और अब नाम बुलाया गया है अलका याग्निक का, जो भारत की एक प्रख्यात पार्श्व गायिका है और कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार है। माननीय प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए झुककर प्रणाम कर रही हैं। हम देख पा रहे हैं 4 दशक से अधिक की उल्लेखनीय गायन यात्रा में उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है।
1: Born on 20th of March 1916 in Kolkata, West Bengal, Shrimati Yajnik embarked upon her musical journey with a strong classical foundation that shaped her distinctive artistic sensibility and vocal identity. Her most famous song was Ek Do Teen.
0: बहुत सारे उनके गाने हैं जो अति
2: पद्म श्री
0: हैं।
2: श्री नूरुद्दीन अहमद, कला निर्देशन।
1: Now we move on to पद्मश्री awardees, and Shri Nuruddin Ahmed is a visionary art director, sculptor, and set designer who has refined the visual landscape of Ahamiya art and culture through his pioneering work in mobile theater, films, and television. His works.
0: आप एक दूरदर्शी कला निर्देशक, मूर्तिकार और सेट डिजाइनर हैं जिन्होंने मोबाइल थिएटर, फिल्मों और टेलीविजन तथा स्मारकीय सार्वजनिक चित्रों में अपनी अग्रणी कार्य के माध्यम से असमिया कला और संस्कृति के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है। माननीय राष्ट्रपति से अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए
2: श्री तिरुवरूर भक्त वसलम, कला मृदंगम।
0: श्री तिरुवरूर भक्त वत्सलम एक प्रतिष्ठित मृदंगम कलाकार हैं और कर्नाटक संगीत की काल्य वाद्य परंपरा के सबसे विशिष्ट कलाकार हैं। श्री भक्त वत्सलम ने 9 वर्ष की आयु से ही अपनी माता के साथ संगीत समारोह में जाना प्रारंभ कर दिया था। और इनके साथ एक खास बात जो मैं बताना चाहूँगी अपने श्रोताओं को कि इनके असाधारण संगीत प्रतिभा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। उन्हें बीच की बी हाई श्रेणी को पार करते हुए बी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया, जो उस समय अत्यंत असामान्य उपलब्धि मानी जाती थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें प्रतिष्ठित ए टॉप ग्रेड भी प्राप्त हुआ। अपना सम्मान
1: Shri Thiruvarar Vatsalam was rooted in Tanjore style and
2: Dr. Krishnamurti Balasubramanyam, Vigyan Evam Engineering.
0: अब नाम पुकारा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यम का, जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और एक संस्था निर्माता भी हैं। आपने IIT कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित एल्टन फेलोशिप से सम्मानित होने पर सीधे PhD करने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में स्कूल ऑफ मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
2: श्री ब्रिज लाल भट्ट, समाज सेवा।
1: Shri Brijlal Bhatt is known for his distinguished social service promoting peace and harmony after his exemplary contribution during active service in Jammu and Kashmir. Under his payback stage of life now, Shri Bhatt is now working as Chairman Administrative Committee, Shri Ramakrishna Mahasammelan Ashram Vivekanand Kendra, Nagdandi, Anantnag, Kashmir. Clad in the Bandgala two-piece suit, receiving the Padma Shri from the president.
2: Shri Tarun Bhattacharya, Kala Santur.
0: श्री तरुण भट्टाचार्य जी का, जो प्रख्यात संतूर वादक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी है और शततंत्री वीणा वादन शैली में नए परिवर्तन की आधार शिक्षा रखी है। उनकी नई तकनीकों और तरीकों ने शततंत्री वीणा को एक व्यापक रूप से सीखा और प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र बना दिया है।
1: श्री भट्टाचार्य credited for having created new Hindustani classical ragas, Rag Ganga, based on Swachh Ganga Abhiyan, and also having created
2: Shri Jyotish Devnath, Kala, Hatkarga Bunai.
0: और अगला नाम श्री ज्योतिष देवनाथ का, जो पारंपरिक हथकरघा बुनाई और मलमल और चांदनी साड़ियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। ये बंगाल के समृद्ध वस्त्र परंपराओं के प्रमुख शिल्पकार

0: शिल्पकार हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की सबसे बारीक और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण बुनाई विरासतों में से एक को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया है।
1: Beyond his personal artistry, Shri Devnath has made significant contribution as a mentor and
2: Dr.
1: leader.
2: Jogesh Deori, Krishi.
0: अगला नाम डॉक्टर जोगेश देओरी का। आसाम के एक प्रसिद्ध रेशम उत्पादन विशेषज्ञ हैं जिन्हें रेशम उद्योग विशेष रूप से एरी रेशम में अपने अग्रणी योगदान के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है।
1: Absolutely, Dr. Deori is Eri silk pioneer credited with modernizing traditional Eri silk rearing methods. He's a strong advocate for Eri silk ahimsa, a non-violent silk, viewing it as a sustainable future for Assam's economy and rural youth. I think he's wearing the Eri silk.
2: Shri Biklaya Ladkya Dinda, Kala, Lok Sangeet.
0: अगला नाम श्री डिंडा। आप एक प्रतिष्ठित आदिवासी लोक संगीतकार हैं और बालवंडा गांव तालुका जवार के प्रतिष्ठित तरपा कलाकार हैं। उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय से अपना जीवन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न और पवित्र अंग तरपा संगीत को प्रशिक्षित करने में संरक्षित करने में बिताया है।
1: Well, in addition to being a master performer, Shri Dhinda has served the tribal community as a bhagat, that is a traditional
2: Dr. Amida Fernandez, Chikitsa, Neonatology.
0: प्रसिद्ध न्यूनेटोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस को भारत में न्यूनेटोलॉजी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है।
1: डॉक्टर फर्नांडिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटली रिड्यूसिंग द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग प्री टर्म एंड सिक न्यूनेटल्स एट LTMG हॉस्पिटल थ्रू लो कॉस्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस। क्लैड इन अ ग्रीन साड़ी, शी इज proudly receiving this award from Honorable President
2: Dr. Chandramouli Gaddamunugu, Vigyan Evam Engineering.
0: आप एक भूतपूर्व उत्कृष्ट वैज्ञानिक, परियोजना निदेशक, आकाश रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद DRDO के कार्यक्रम निदेशक हैं।
1: Despite numerous hurdles over a demanding journey spanning more than 3 decades, Dr. Chandramouli remains steadfast in his focus, inspiring teams across diverse organizations, resolving complex technical challenges for surface-to-air missile technology.
2: Dr. Prem Lal Gautam, Vigyan Evam Engineering.
0: डॉक्टर प्रेम लाल गौतम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुल अधिपति हैं। एक प्रख्यात पादप प्रजनक शिक्षक, मार्गदर्शक, अनुसंधान प्रबंधक, संस्था निर्माता हैं।
1: डॉक्टर गौतम वाज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ अ डजन इंप्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज, पायनियर्ड नेशनल सिस्टम ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन, एक्सेलरेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वैराइटीज।
2: डॉक्टर राजा स्थापति कलियप्पा गौंडर, कला कांस्य शिल्प।
0: अगला नाम कांस्य कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गौंडर ने अपने संस्थान में युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की हैं।
1: And due to Dr. Gonder's avid interest in arts, he also started focusing on preserving the old temples, which was struggling due to financial stress and left without maintenance. He renovated more than 100 temples which were left to perish and rebuilt them, and finally conducted Kumbh Abhishekam. What a great achievement.
2: Dr. Padma Gurmed, Chikitsa, Sowa Rigpa.
0: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान लेह के संस्थापक निदेशक और लद्दाख अमची सभा लेह लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास के अग्रदूत में से एक माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करते हैं, एक अत्यंत गौरव का पल।
2: श्री अशोक कुमार हल्दर, साहित्य एवं शिक्षा।
1: श्री अशोक कुमार हल्दर इज अ नोटेड इंडियन राइटर एंड सोशल थिंकर फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट।

0: West Bengal. In addition to books, Sri Haldar has authored approximately 3,000 articles published in leading newspapers of West Bengal and Tripura. His first walked up to the Prime Minister Shri Narendra Modi and is now walking slowly to receive his Padma Shri award.
1: उन्होंने अपना जीवन साहित्य और सामाजिक चेतना तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम में द्वारा लेते हुए श्री अशोक कुमार हल्दार।
2: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, चिकित्सा हीमोफीलिया।
0: Dr. Suresh Hanagwadi, founder and president of Karnataka Hemophilia Society, Devangiri, KHS, is a distinguished medical professional, visionary institution builder, and a tireless advocate for persons with hemophilia and rare bleeding disorders in India. Himself being suffering from severe hemophilia B, he transformed personal adversity into a lifelong mission of service, dedicating over four decades in improving diagnosis, treatment, rehabilitation and dignity for thousands of affected people.
1: Maananiya Rashtrapati Dr. Suresh Hanagwadi ko Padma Shri se sammanit karte hain.
0: A proud moment for his family members who are all standing up and cheering.
2: Dr. Charan Hembram, Sahitya evam Shiksha, संथाली।
1: श्री चरण हेम्ब्रम एक संथाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने उड़ीसा में संथाली भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार पर प्रसार और संस्थागत विकास में असाधारण योगदान दिया है। कई सरकारी और साहित्य पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने संथाली ऑडियो एल्बम के लिए गीत भी रचे और आज भी संथाली साहित्य और संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं।
0: श्री हेम्ब्रम प्लेड ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन संथाली एजुकेशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन ओडिशा अंडर AS ECA Rai Rangpur from 1992 to 2004.
2: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar, Vigyan Evam Engineering.
1: डॉक्टर शुभा वेंकटेश अयंगर एक प्रख्यात वैज्ञानिक है जिनके काम ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
0: Receiving the Padma Shri, Dr. Iyengar's most significant innovations are Drishti visibility imaging system and aviation weather observation system, which have enhanced the safety of all Indian international airports as they are mandatory
2: Shri
0: equipments.
2: Shri T.T. Jagannathan, Marnoprant, Vyapar Evam Udyog, unke putra Shri Mukund Thatte.
1: Shri Jagannathan ko Marnoprant पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है जब उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टिज लिमिटेड का नेतृत्व 5 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने किया था।
0: As chairman of the TTK group, Shri Jagannath built a reputation for quality, innovation,
2: संत निरंजन दास जी अध्यात्म।
1: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी, जो विश्व प्रसिद्ध डेरा सचखंड बलराम के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
0: सिंस अगस्त 9, 1994 संत निरंजन दास जी हैज बीन लीडिंग डेरा सचखंड बलराम। हिज टेन्योर हैज बीन मार्क्ड बाय अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर। He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.
2: Professor Vijayanathan Kamakoti, Vigyan Evam Engineering.
1: IIT Madras Chennai के निदेशक प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
0: In the academic realm, Shri Kamakoti has guided around 20 PhD and 30 MS by research scholars. He has published over 200

0: read extensively cited papers in
1: India. Professor Mangala Kapoor, Sahitya Evam Shiksha, Shastriya Sangeet.
2: अगला नाम पुकारा गया है प्रोफेसर मंगला कपूर का. आप एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका, संगीतज्ञ, शिक्षाविद हैं. आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में म्यूजिक में पीएचडी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कई साल लगभग 30 वर्षों से अधिक समय तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सेवा की और वर्ष 2019 में संगीत विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हैं.
0: Professor Kapoor has made significant contributions to Indian classical music through performance and research. She is the author of the 5 books on music, including her autobiography, Seerat.
2: Professor Mangala Kapoor, Mananiya Rashtrapati se Padma Shri grahan karte hain.
1: Dr. Ashok Khade, Vyapar evam Udyog.
2: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का. आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की स्वदेशी अपतटीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
0: डॉक्टर खाड़े बिगेन हिज प्रोफेशनल करियर इन 1975 मुंबई,
1: साहित्य एवं शिक्षा,
0: वर्क इन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल.
2: और अब अगला नाम खोकलोवा. डॉक्टर खोकलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग, एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं. वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनको उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं.
0: At present, Dr. Khokhlova is teaching different linguistic courses at Moscow Dr. State University, Prabhakar, which are very popular Basa among Prabhu students. Kore, Hindi at BA Sahitya and MA in Punjabi.
2: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं. डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है.
0: Among his most significant achievements is the establishment and development of 2 universities, KLE Academy and Higher Education and Research, KHER, and KLE Technological University.
1: Shrimati Pakhila Lekthepi, Kala Karbi Geet.
2: Shrimati Pakhila Lekthepi, Assam ki Karbi Geeton ke prasiddh gayika hai. वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने करबी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए. उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी करबी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए.
0: श्रीमती लेखथेपी स्टार्टेड कंपोजिंग ओन सॉन्ग एंड लिरिक्स ऑन करबी मॉडर्न सॉन्ग इन द ईयर 1975 फॉर करबी यूथ फेस्टिवल्स. शी गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हर ओन कंपोजिशन लिरिक सॉन्ग इन करबी यूथ फेस्टिवल इन 1976. अटायर्ड इन अ ट्रेडिशनल
2: पारंपरिक परिधान में, असम के परिधान में, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए.
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी, मरणोपरांत, सहकारिता, उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी.
2: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे. आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे.
0: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. श्री मामिदी passed away on 26th October 2025. And the award is
1: Shri
0: received by her
1: Ra
0: wife.
1: Vesu Mani, Civil Seva.
2: Shri RVS Mani, ek super parichit civil sevak hain. Shri Mani ne Bharat Sarkar ke Grih Mantralay mein apar सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी. अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा. श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया.
0: श्री मणि हैज रिटन 5 बुक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हैज वर्कड एज अ सिंसियर गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन एपॉलिटिकल मैनर. credits were given to him for handling several sensitive cases without

0: Mandalam Vimla Menon Kala Mohini Attam.
1: आप वर्तमान मोहिनी अट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा है, चाहे वो उसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनी अट्टम की पहचान बन चुका है।
2: श्रीमती मेनन फ्रॉम द यंग एज रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ आर्ट एज ए नेशंस वाइटल सॉफ्ट पावर एंड डेवलप्ड हर जर्नी टू यूजिंग क्लासिकल डांस एज ए मीडियम फॉर पीस, यूनिटी, इंक्लूजन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट।

0: श्री व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली मरणोपरांत खेल कुश्ती कोच, उनकी पत्नी श्रीमती मरीन सारिया।
1: 23 जून 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्लादिमीर मिस्ती वरिशवली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है, जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे। उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रमों द्वारा।
2: He is remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medals.
0: श्री मागंटी मुरली मोहन, कला फिल्म अभिनय।
1: श्री मुरली मोहन एक बहुआयामी व्यक्तित्व है, जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी अपने कार्य किया।
2: In 1973, श्री मुरली मोहन entered the film industry and recently completed golden jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over 350 films.
0: श्री मोहन नागर, समाज सेवा।
1: मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
2: श्री नागर हैज हैड लेड सेवरल लैंडमार्क कैंपेन्स। इन 2006 ही अंडरटूक ए पदयात्रा टू एडवांस एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मोबिलाइजिंग लोकल कम्युनिटीज to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Machina River catchment area. Dr. Punni
0: Murthy Natation, Pashu Chikitsa.
1: Dr. Punni Murthy Natation, a pratishthit Pashu Aushadh Vigyani, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथनो वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है।
2: A nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Natation has served as a trainer and consultant to organizations
0: Shri
2: such as Sarat Department of
0: Kumar
2: Animal Husbandry
0: Patra,
2: and Dairying.
0: Kala Ikat Bunai.
1: और अगला नाम पुकारा गया है श्री सरत कुमार पात्र का। आप एक प्रसिद्ध हरकरघा शिल्पकार हैं, जो इकत बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त पाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वस्त्र एक उल्लेखनीय कृति है।
2: श्री पात्र कोणार्क टेक्सटाइल यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक इज अनदर रिमार्केबल वर्क। ही सक्सेसफुली डेवलप्ड नियरली 50 शेड्स यूजिंग नेचुरल डाइज। His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. An eminent handloom craftsman who is widely known for his contribution in ikat weaving.
0: Shri Simanchal Patra, Kala Lok Rangmanch.
1: श्री श्रीमांचल पात्र लोक रंगमंच की दुनिया के एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक की भीष्म पितामह के रूप में जाना और सम्मानित किया जाता है। ये नाटक अपने जीवंत संगीत नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है।
2: Born on 7th July 1927, श्री पात्रा hails from a poor rural family. And as per family tradition and culture, he is inclined to Vaishnavism. Shri Patra, from the age of 7, learnt Sakhi Nata, said to be precursor of classical Odissi dance, where male boys act as female Sakhi, from Guru Shri Narsingh Pradhan.
0: Guru

0: संग्यु संग पोंगनर कला लोक कला।
1: गुरु पोंगनर नागा वादी वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य, संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। और आप सुन पा रहे हैं वो, क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं, तो सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा परिधान है नितिश, पारंपरिक परिधान है। और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप यह प्रसिद्धि मिली है।
0: गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद, कला अभिनय।
2: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद इज ए फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर। For over four decades, starting with his debut in 1977, Shri Gadde Babu graced more than 286 films across six languages, even stepping into international waters. His genius lies in his special touch, versatile roles in family stories, social messages and comedy that hit home, blended with skills like mind-making.
1: सभी को घूम के उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए। और पर्दे के पीछे नम्र, विनय, मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
0: सुश्री सविता पुनिया, खेल हॉकी।
2: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personality. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
1: भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पुनिया।
0: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्थ।
1: अगला नाम श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ, जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था। आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे।
2: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ breathed his last on 7th January 2026 and his son is receiving the Padma Shri on behalf of his father.
0: Shri Bhagwan Das Raikwar, Marnoparant, Khel, Bundeli Martial Art, unki putra Shri Rajkumar Raikwar.
1: Agla puraskar bhi Marnoparant Shri Bhagwan Das Raikwar ko diya ja raha hai, jo unke पुत्र माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। श्री भगवान दास रायकवार पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं के संरक्षक तथा गुरु के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं।
2: श्री भगवान दास रायकवार इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज ए पेट्रन एंड टीचर ऑफ ट्रेडिशनल बुंदेली मार्शल आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स, इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग एंड मूवमेंट प्रैक्टिसेस।
0: प्रोफेसर के रामस्वामी, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
1: प्रोफेसर के रामस्वामी, करपगम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि एक मानित विश्वविद्यालय है, के कुलपति, कुल अधिपति, चांसलर हैं। वो कृषि जैव द्रव्य के रूपांतरण, भारत में एनरोबिक माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापक तथा प्राकृतिक खेती की दिशा में मृदा जैविकी के पुनरुद्धार के लिए कार्यरत हैं।
2: As a member of planning commission, Professor Ramaswamy pioneered the traditional agriculture through ethnic
1: medicine and husbandry. Shri Madhavan Ranganathan, Kala Abhinay. And now the name is given to Shri Madhavan Ranganathan, and you will hear the sound of the drums and the drums that you will reach. Madhavan, first of all, we have reached the Prime Minister. We have talked to them, we have accepted their support, we have namaskar ki mudra mein, aur ab maninye राष्ट्रपति की ओर कदम बढ़ाए हैं अपने पद्मश्री को ग्रहण करने के लिए। माननीय प्रधान राष्ट्रपति उनको ये सम्मान दे रही हैं। उनको मैडी के नाम से जाना जाता है, एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं।
0: श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री, कला कर्नाटक संगीत।
2: Shrimati Ranjini and Shrimati Gayatri are eminent Carnatic musicians recognized for their sustained contribution to Indian classical music as a performing duo

0: for nearly four decades.
1: श्रीमती रंजनी और श्रीमती गायत्री को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने कलाई मा मणि पुरस्कार, समागान मंथरा पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार उन्हें हासिल हो चुके हैं। प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्होंने लगभग चार दशकों से
2: श्रीमती गायत्री
1: गायन का कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित है इस क्षेत्र में।
0: Srimati Gayatri along with Srimati Ranjani have received numerous honors in recognition of their contribution to Indian classical music, including the Kalai Mamami Award from the government of Tamil Nadu.
2: Dr. Anil Kumar Rastogi, Kala Natya Kala.
1: Dr. Anil Kumar Rastogi, kalakar, ek vigyanik aur ek paropkari ka anutha mishran hai. डॉक्टर रस्तोगी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जैव रसायन में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान में पीएचडी की।
0: डॉक्टर रस्तोगी हैज बीन वर्किंग इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर 64 इयर्स, हैविंग स्टेज्ड अराउंड 1000 शोज ऑफ 100 प्लेज ऑल ओवर द कंट्री। ही स्टेज्ड हिज 100th प्ले बियॉन्ड द कर्टन इन दिसंबर 2025।
2: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
1: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ रॉय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला संकायों में पूर्व डीन और अलीपुर द्वार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं।
0: बियॉन्ड एकेडमिया ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोशल वर्कर, पर्टिकुलरली फॉर द एफर्ट्स इन अपलिफ्टिंग द कॉमन पीपल। ही हैज डोनेटेड ऑन सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कूल्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज पेरेंट्स for the development of the society.

0: श्री सतीश शाह मरणोपरांत कला अभिनय, उनके भाई श्री अरविंद मामनिया।
1: श्री सतीश शाह, उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हो गया था। सतीश शाह रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में भारत के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जो अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी प्रतिभा और गहरे मानवीय भावों के प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
2: His roles in the films like जाने भी दो, यारो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड numerous other mainstream and parallel films।
0: प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: You'll be remembered by many. Next is Professor Pratik Sharma. He's a professor of medicine at the University of Kansas School of Medicine and holds the Ernick Blaylock Endowed Professorship at the Kansas University Cancer Center.
1: प्रोफेसर शर्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोस्कोपी और जीआई कैंसर क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गैस्ट्रोएंटेरोलाइटल रोगों के और कैंसर के रोगों को बेहतर निदान के लिए अपना
0: खेल क्रिकेट।
2: The man in blue and also in whites when he plays test cricket today can be seen wearing a formal black bandgala two-piece suit, walking up to the president to receive Padma Shri.
1: बिल्कुल, और भारतीय खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते ऋषि शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है।
2: As captain of the international team, Shri Sharma had led India to significant global triumphs, including ICC Men's T20 World Championship 2024.
1: अगला नाम सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू। आप पंजाब पुलिस से उप महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एक प्रेरणादायक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें व्यापक रूप से झाड़ू योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशंसा हासिल की है।
2: बॉर्न ऑन 6 जून 1938 इन विलेज गग्गरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब, श्री सिंधु स्टिल वॉकिंग टॉल टू रिसीव हिज अवार्ड। He joined the Punjab Police as an inspector in 1963. In 1981, he was promoted to the Indian Police Service, IPS.

0: स्वाती प्रेमवती।
1: श्री रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। इनका निधन 1 जुलाई 2025 को हो गया था। आप एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और पारंपरिक बीजों के संरक्षण और प्रचार के लिए आपको जाना जाता है। मुरादाबाद जिले के समथल गांव में आप जन्मे थे।
2: श्री सिंह पास्ड अवे ऑन 1 जुलाई 2025। ही वाज आल्सो एक्टिव इन सोशल लाइफ। ही कंटेस्टेड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम चंदौसी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1980 एंड 1985 बट डिड नॉट विन। Later, he won the election as a member of the Block Panchayat Biladi in 1995 and again in 2020.
1: Shri Raghupat Singh ji ki dharmpatni ye samman grahan karte hain.
0: Shri Khemraj Sundarial Kala Hatkargha Bunai.
1: उत्तराखंड के सुमरी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुंदरियाल ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हासिल किया। खेतों की जुताई से लेकर भारत में वस्त्र परिदृश्य को बदलने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय दृढ़ता, अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
2: श्री सुंदरियाल आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड हट्टा टेक्निक इन पंज दरी लूम फॉर रिप्लेसिंग पंजा एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ वीवर्स। Also in 1980, he introduced polyester yarn in hand loom under Petrofil project.
0: Dr. Budhari Tati, Samaj Seva.
1: माता शंखिनी महिला उत्थान केंद्र हिरनार के अध्यक्ष डॉक्टर पुथरी ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है।
2: डॉक्टर बुधरी विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट वीमेन्स ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग इन बारसू by building the Hiranar Women's Upliftment Center. They are working to empower women with self-reliance.
0: Dr. Kumarasamy Thangaraj, Vigyan Evam Engineering.
1: Dr. Thangaraj ke anuvanshik adhyan ने पहली बार यह स्थापित किया कि अंडमान जनजातियां प्रथम आधुनिक मानव हैं जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे। यह प्रारंभिक मानव प्रवासन के स्पष्टीकरण में एक बड़ी सफलता है।
2: डॉक्टर कुमारस्वामी थंगराज इज द सीएसआईआर भटनगर फेलो एट द सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद।
0: मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनकी पत्नी श्रीमती हीरामणि टूडू।
1: श्री रबीलाल टूडू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपका निधन 4 जून 2026 को हो गया। आप वर्धमान पश्चिम बंगाल से संथाली साहित्य के लेखक थे जिन्होंने संथाली नाटक और भाषा संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति से लेते हुए।
2: Shri Tudu was awarded with Sahitya Academy Award in 2015 for his play Parsi Khate in the Santhali language category. In addition to his national recognition, he received the Banga Bhushan Award from the Government of West Bengal in 2022, honoring his significant contribution to Santhali literature and culture.
0: Shri Naresh Chandra Dev Verma, साहित्य एवं शिक्षा।
1: और अब पद्मश्री में अगला नाम पुकारा गया है श्री नरेश चंद्र देव वर्मा का। आप त्रिपुरा राज्य में साहित्य, भाषा, संस्कृति और सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से व्याप्त है। इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने संपूर्ण समुदाय पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है।
2: एट प्रेजेंट श्री वर्मा सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द Kokoborok Sahitya Parishad, a leading literary organization dedicated to the promotion and development of the Tripuri language.

0: श्री शशि शेखर वेम्पटी साहित्य एवं शिक्षा
1: श्री शशि शेखर वेम्पटी डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इससे पहले वो भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण में इनके क्रांतिकारी नेतृत्व के लिए अपार प्रसिद्धि प्राप्त है।
2: एज द यंगेस्ट सीईओ ऑफ प्रसार भारती बिटवीन 2017 टू 2022 श्री वेम्पटी रोज टू द चैलेंज बाय लॉन्चिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स।
1: श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के प्रसिद्ध पीतल उत्कीर्णक हैं। आपने विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2010 में ढाका बांग्लादेश गए और 2015 में उन्होंने भारत सरकार के हस्तशिल्प निर्यात वर्धन परिषद के माध्यम से फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अपनी कला का प्रदर्शन किया।
2: श्री यादव सर्वड एज मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 1980 टू 1982। ही हैज टॉट ब्रास एनग्रेविंग टू 30 चिल्ड्रन इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। ही आल्सो ट्रेन 10 चिल्ड्रन इन कार्विंग वर्क इन मुरादाबाद इन 2011 थ्रू द ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गोरुंग के नेतृत्व में।
1: और व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग फॉर द रिसिपिएंट्स व्हेन दे केम टू दिस हॉल दे वर स्टैंडिंग टॉल बट नाउ दे आर वेयरिंग दोस मेडल्स ऑन देयर चेस्ट व्हाट अ प्राउड मोमेंट।
0: गर्व के पल होते हैं नीतीश ये और ज़िंदगी ये मेमोरीज रहती हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गंतव्य मंडप से बाहर प्रस्थान करते हुए सभी को नमस्कार करते हुए
1: एंड ऑफ कोर्स द रिसिपिएंट्स विल नाउ स्टे पुट फॉर अ सेरेमोनियल फोटोग्राफ विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
0: इस समय हम देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ गए हैं। सभागार का वातावरण गर्व प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। आज सम्मानित सभी विभूतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और इसी के साथ वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे नागरिक सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह समारोह राष्ट्र की ओर से उन महान व्यक्तित्वों को नमन है जिन्होंने अपने कर्म और योगदान से भारत को समृद्ध बनाया है। आकाशवाणी की ओर से सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से पद्म पुरस्कार समारोह 2026 का सीधा प्रसारण। तकनीकी प्रमुख श्री जितेंद्र भरूथी के साथ तकनीकी टीम के सदस्य थे शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्रित, सुमित कटियार और हेमराज मीना। ओबी इंचार्ज थे मधुलिका श्रीवास्तव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। और अब अपने साथी कमेंटेटर नीतीश अरोड़ा के साथ मैं शालिनी मित्तल आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा

की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की।
8800-4400-559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल

0: का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों में हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन।
1: बसंती, अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू है?
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सब को बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
4: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई।
2: खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो
3: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया,

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहला गीत भूल भुलैया फिल्म से, आवाज अरिजीत सिंह की, समीर का गीत और प्रीतम का संगीत।

अगला गीत जर्सी फिल्म से, आवाज़ सचिन टंडन की, शैली का गीत और सचिन का संगीत।

अरुणिता कांचीलाल और शाश्वत सिंह की आवाज़ों में अब सुनिए सीतारमन फिल्म का ये नगमा, कुमार का गीत और संगीत विशाल चंद्रशेखर का।

तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा को सुनिए फिल्म कबीर सिंह से। कुमार के लिखे गीत की धुन बनाई है अखिल सचदेवा ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा आर्टिकल 15 से, आवाज़ें यसीर देसाई और आकांक्षा शर्मा की, रश्मि विराग का गीत और पीयूष शंकर का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है अंतराल का।
1: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
2: आकाशवाणी

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
5: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
4: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए।

0: विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस

0: योजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारतीय नौसेना के आधुनिक स्टेल्थ युद्धपोत INS उदयगिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान कल वियतनाम के नारोंग बंदरगाह पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंधों तथा बढ़ती हुई समुद्री साझेदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 ग्रुप ए में पुर्तगाल का मुकाबला होगा उज़्बेकिस्तान से। ग्रुप एल में रात 1:30 इंग्लैंड का सामना घाना से होगा और वहीं सुबह 4:30 क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में कल सुबह 7:30 कोलंबिया का सामना कांगो से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8:00 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:45 और 10:00। उर्दू प्रोग्राम कहकशा आप सुनेंगे 9:30। आज का मुख्य आकर्षण है महफिल समा। 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन, ताल तीन ताल। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। और अब हम आपको बता दें कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। पहले जानकारी देते हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा, जिसमें 11:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12:00 और 2:30। 12:30 संग्रहालय के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक भुवन मोहिनी की 6वीं कड़ी। कल दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 लोक संगीत, 2:45 सुगम संगीत और 5:02 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत सुना जा सकेगा कल दोपहर 2:00, 5:33 पर, 6:30 और 7:45। कल 6:00 प्रसारित होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुर्खियों में। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 8:00। कल 9:30 चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। कल 10:00 सुनिएगा हसन सआदत मंटो का लिखा नाटक हतक, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। कल 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे संगीता गोस्वामी का ख्याल गायन, राग होगा यमन। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कल के कुछ मुख्य कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे रमेश पुरी गोस्वामी के गाए गीत। क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल का कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:30। जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी कल सुबह 10:00 और 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम महिला संसार। कल सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे सरवर हुसैन का सारंगी पर बजाया राग नट भैरव। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल सुबह के कार्यक्रम। और हम आपको बता दें कि आकाशवाणी भोपाल से कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे

डॉक्टर दिलीप जाट से ली गई भेंटवार्ता, विषय है सटीक कृषि हेतु उन्नत उपकरणों के खेत बचाव अभियान में भूमिका। और श्रोताओं, हम ये भी बता दें कि आज शाम 7:21 पर आप ग्राम सभा में सुनेंगे डॉक्टर मीना यादव से ली गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवाड़ को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IAS प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवोभव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ रुपए की योजनाओं को मिली मंजूरी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, बोले धारा 370 हटाकर साकार हुआ एक विधान का सपना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 वर्ष के लिए 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक का नाम शामिल रहा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के समाजसेवी मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। वहीं प्रदेश के बुंदेली मार्शल आर्ट के जनक भगवान दास रायकवाड़ को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि समाज सेवा एवं खेल जगत में इनके उल्लेखनीय योगदान ने न केवल मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS 2024 बैच के 183 अधिकारी प्रशिक्षुओं से संवाद किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए राष्ट्र निर्माण में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने युवा अधिकारियों को नागरिक देवोभव का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे लाखों लोगों की आकांक्षाएं और समस्याएं जुड़ी होती हैं, इसलिए शासन को संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने के लिए करीब 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल और 300 हाईस्कूलों को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली, जिस पर 635 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च होंगे।
1: सुजालपुर में लॉ कॉलेज के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना तथा उसके

0: ये पदों की स्वीकृति दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में अगले 3 वर्षों में 315 स्कूलों को हाईस्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।
1: इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की नई शर्तों को मंजूरी दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में अब तक लगभग 43% कम बारिश हुई है और लगभग 315 जिले सामान्य से कम बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें 111 जिले उच्च प्राथमिकता वाले हैं।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है, और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉ मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी का सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर साकार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है, जिसमें 106 सदस्यों को शामिल किया गया है और 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉ वीरेंद्र कुमार के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को जगह मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक इस वर्ष परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। भोपाल के आचारपुरा स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में आज 5 दिवसीय आदिरंग शिल्पकार महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर शिल्पकारों से संवाद किया। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए 140 से अधिक जनजातीय शिल्पकारों ने अपनी पारंपरिक कला और हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज मंत्रालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुविधा से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज लेवल काउंसलिंग राउंड के महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। इस राउंड में प्रदेश के 1,29,265 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है, जिनमें 94,703 स्नातक और 34,562 स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल हैं। विभाग ने विद्यार्थियों से 30 जून तक प्रवेश शुल्क जमा करने का आग्रह किया है। भोपाल में अवैध कफ सिरप निर्माण और सप्लाई नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा उर्फ सलमान को STF ने तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार आरोपी वहां पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसे तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर पकड़ा गया। भोपाल लाकर विशेष न्यायाधीश डॉ मुकेश मालिक की अदालत में पेश किए जाने पर उसे 27 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। अब बात करते हैं मौसम की। मानसून की रफ्तार धीमी होने से प्रदेश में सामान्य से 52% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि आज बड़वानी, खरगोन, नर्मदापुरम और धार जिले में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने

जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के कृषि विज्ञान केंद्र में खरीफ 2026 वर्ष के तहत सोयाबीन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सागर की पुलिस प्रशिक्षणशाला PTS में नव आरक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ। राजगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में ITI और 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कटनी कलेक्टर ने अस्पतालों में पर्याप्त एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपील की है कि सांप काटने पर झाड़फूंक के बजाय अस्पतालों में इलाज कराएं। अशोकनगर में जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी ने आम जनता की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए। नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत उमरिया में आयोजित जन कल्याण शिविर में विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण कराया। और किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की मई 2026 की रैंकिंग में झाबुआ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 65 पद्म पुरस्कार। प्रदेश के भगवान दास रायकवार को मरणोपरांत और मोहन नागर को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला पद्मश्री सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IAS प्रशिक्षु अधिकारियों को दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 5,960 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा सुनवे बारे हमें सभी भयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की प्रेम भरी ने भरी राम राम। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब इन्होंने हुओ। और देखो का है भैया बहन हरो, थोड़ो थोड़ो मौसम बदल गयो है, बस कारे और तेज हवा ने ठंडक तो कर दई है, लेकिन राहत मिलबे के अलावा प्री मानसून के दौरान तापमान नीचे आने लगो है। लेकिन हमारे किसान भैया बहनन को तो इंतजार है बारिश की झड़ी लगबे को, सो वे अपने खेतन में बोनी कर पावे। सो बातचीत अपन और भी कर हैं, जानकारी भी आपके लाने दे हैं, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं जो भजन काशीराम अहिरबार को गाओ भाव।

0: ग्राम सभा में अब बेरा हो चली है बुंदेली समाचारन की।
1: बुंदेली समाचार
0: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली में समाचार। सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कारन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी में 2026 के लाने 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण, 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल रहे। पुरस्कार पावे बारन में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक को नाम शामिल रहो। ई मौका पे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भई मंत्रिपरिषद की बैठक में 5,960 करोड़ रुपया की योजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 सालों तक जारी रखने के लाने करीब 1740 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गई है। उतई शिक्षा के क्षेत्र में 225 शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलन को हाई सेकेंडरी में उन्नयन करवे की योजना सैद्धांतिक स्वीकृति सुई दी गई है। जी पे 635 करोड़ 24 लाख रुपया को खर्च हुए। इसके अलावा किसानन को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण फसल ऋण दबे की नई शर्तन को सुई मंजूरी दी गई है। और अब बात कर लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस की। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश समेत पूरे देश में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री ने कही है कि डॉक्टर मुखर्जी को सपना एक देश एक प्रधान और एक विधान को हतो जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटा के साकार करो गो है। उन्हें जो भी बताई है कि राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करवे की दिशा में सोई आगे बढ़ रही है। जिसके लाने प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। और अब बात करते हैं अल नीनो की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि सरकार अल नीनो के कारण मानसून से प्रभावित दुष्प्रभावन से निपटने में किसानन की मदद के लाने अग्रिम तैयारियां कर रही है। उन्हें बताई है कि देश में अब तक 43% वर्षा कम हुई है और लगभग 315 जिलों में सामान्य से कम वर्षा से प्रभावित भी हो सकते हैं। जी में 111 जिला उच्च प्राथमिकता वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा कर दी है। जी में 116 सदस्यों को शामिल करो गो है और 41 नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाओ गो है। कार्य समिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के संगे 2 उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा को भी जगह मिली है। अब बात करते हैं CUET नतीजन की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के स्नातक दाखिलन के लाने परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक जा साल परीक्षा में 15 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार ने पंजीकरण कराओ हो तो जी में से 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल भय। अब बात करते हैं आदि रंग शिल्पकार महोत्सव की।

0: भोपाल के अचारपुरा स्थित डिजाइन संस्थान में आज 5 दिवसीय आदिरंग शिल्पकार महोत्सव को समापन भव। समापन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल भय। उन्हें जनजातीय शिल्पकारों द्वारा विकसित नवाचारपूर्ण उत्पादन की प्रदर्शनी को अवलोकन करके शिल्पकारन के संग संवाद भी करो। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा काउंसलिंग की। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लाने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज लेवल काउंसलिंग के राउंड महाविद्यालय आवंटन जारी कर दिए हैं। ई राउंड में प्रदेश के 1,29,265 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित करी गई है। और अब बात करते हैं कप सिरप को लेकर भई गिरफ्तारी की। भोपाल में अवैध कप सिरप के निर्माण और सप्लाई नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड राहुल कुशवाहा उर्फ सलमान को स्पेशल टास्क फोर्स ने तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार कर लो है। लंबे समय से फरार आरोपी उतय पहचान छिपा के रह रहो तो जिसे तकनीकी निगरानी खुफिया इनपुट ई के आधार पर पकड़ो गो है। भोपाल लिया के विशेष न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक की अदालत में पेश करे जाबे पे उखो 27 जून तक रिमांड पे भेजो गो है। और अब बात करते हैं मौसम की। मॉनसून की रफ्तार धीमी होवे से प्रदेश में सामान्य से 52% बारिश कम दर्ज करी गई है। हालांकि आज बड़वानी खरगोन नर्मदापुरम और धार जिला में तेज बारिश भई। मौसम विभाग ने जबलपुर मंडला दमोह और उमरिया में हीट वेव को अलर्ट भी जारी करो है। प्रदेश में कई जिलों में आंधी तूफान के संग बसकारे की संभावना सुई जताई गई है। फिलहाल अगले 2 से 3 दिन में मानसून के प्रदेश में प्रवेश करने को अनुमान है। और ई के संग बुंदेली समाचार समाप्त भय।
1: बुंदेली समाचार।
0: किसान भैया बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनावे के लाने हमारी सरकार कई सारी योजनाएं समय समय पर लेके आते हैं। और इन्हीं में से एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो भारत सरकार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख योजना है। इसके तहत किसानों को खेती के लाने अल्पकालिक ऋण, फसल उगाबे के लाने बीज खरीद बे, पशुपालन और मछली पालन के लाने सस्ती ब्याज दरन पे दौ जात है। जिको मुख्य लाभ जो है कि किसानन की खेती की जरूरत के लाने सामान्य से 3 लाख रुपया तक को लोन किफ़ायती ब्याज दर पे मिल जात है। पशुपालन या मत्स्य पालन के लाने भी ई कार्ड के जरिए अतिरिक्त सीमा आमतौर पर 2 लाख रुपया तक प्राप्त करी जा सकत है। साथ ही समय पर लोन चुकाबे वाले किसानन को प्रभावशाली ब्याज दर मने केवल 4% ब्याज दर पे ही लोन लेने पड़त है। कार्ड 5 साल तक के लाने वैध होते हैं और जी पे सालाना समीक्षा करी जात है। इमें अतिरिक्त सुविधाओं में केसीसी धारक किसान दुर्घटना को शिकार हो जाए तो उनको बीमा भी दौ जात है। कोनो किसान चाहे वो जमीन को मालिक हो या पट्टेदार हो, वे संगे संगे खेती पशुपालन और मछली पालन करत है, ई के लाने पात्र हो सकत है। और आवेदन के लाने हमारे किसान भैया को आधार कार्ड प्रमाण पत्र के रूप में पते को प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे भूमि के स्वामित्व वाले प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी जमीन के कागजात और पासपोर्ट साइज के फोटो ई के लाने आवेदन करवे के लाने होने चाहिए। और किसान भैया बहन नज़दीकी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या ग्रामीण बैंक में या सहकारी बैंक में जाके ई के लाने आवेदन कर सकते हैं। और जनसमर्थ पोर्टल या माई स्कीम पर जाके भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को देखो जा सकत है। सो जो तो हती बातचीत। और अब अपन सुन लेते हैं जो दादरा इको गांव है अखिलेश सोनकिया ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: फंसी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भैया बहना हरों खरीफ फसलन की अच्छी पैदावार के लाने मानसून से पहले खेत की गहरी जुताई करके खेत को समतल बनाबो। बुआई से पहले बीजन को फफूंद नाशक, कीटनाशक और जैविक कल्चर से उपचारित करो जात है, ताकि फसल को शुरुआती रोगों जैसे कि जड़ सड़न और दीमक से बचाव जाए। सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन EK लाने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इको उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखवो और फसलन की उत्पादकता को बढ़ावो। और ई के लाने फसलन को पोषक तत्व देवे के लाने उपलब्ध स्रोतन को संतुलित उपयोग कैसे करो जाए, ई के संबंध में ही अपन और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है जो भेंट वार्ता सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीना यादव और इनसे बातचीत करी है राधा चौरे बहन ने।
5: खेती हमारे न सिर्फ जीवन का बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, भूमि की घटती उर्वरता और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच कृषि को टिकाऊ बनाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है। ऐसे में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में सामने आता है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों, जैव उर्वरकों और गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद जैसे जो अपने जैविक स्रोत हैं उनको संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग करके इससे बचा जा सकता है। इससे न केवल फसलों की उत्पादकता बढ़ती है बल्कि मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की भूमिका पर, जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर मीना यादव जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेज यूनिवर्सिटी में। मैम बहुत बहुत स्वागत है ग्राम सभा कार्यक्रम में आपका।
6: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: डॉक्टर मीना यादव जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पौधों में पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं और क्यों आवश्यक होते हैं?
6: जो पोषक तत्व होते हैं वो वैसे ही जैसे हम मनुष्य हमारे शरीर के प्रॉपर विकास के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिंस लेना ज़रूरी होता है, ऐसे जो हमारे पौधे होते हैं उनको भी अपने प्रॉपर विकास के लिए, अपनी वृद्धि के लिए ऐसे 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। वो 17 आवश्यक पोषक तत्व जो है वो फर्दर दो

0: तरह के होते हैं, एक जिनको हम महापोषक तत्व भी बोलते हैं और एक सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। तो जो महापोषक तत्व होते हैं एक्चुअल में इनकी जो ज़रूरत होती है वो पौधे को ज़्यादा होती है अपने जीवन काल में, जबकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी जो ज़रूरत होती है पोषक तत्व हैं उनके कंपैरिजन में कम होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं, इसमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, फॉस्फोरस आता है, पोटाश आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये महापोषक तत्व हैं। ऐसे ही 8 जो और पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, उसमें आता है आपका आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम, क्लोराइड, निकल। तो ऐसे ये 8 पोषक तत्व होते हैं। तो एक्चुअल में जो आपका जो मैंने शुरुआत में बोला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये पौधा अपने वातावरण से, क्योंकि पर्यावरण में हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होते हैं और हमारा पौधा उधर से ही उनको अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए उसको अपने जीवन काल में इन पोषक तत्वों की कभी कमी महसूस नहीं होती है। जबकि उसके बाद जो आता है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट को वो होती है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटाशियम की। ये जो पोषक तत्व हैं इनको पौधा अपने जीवन काल में मेनली मिट्टी से प्राप्त करता है, तो इसलिए जनरली इनकी कमी देखने को मिलती है। इसलिए जो हम उर्वरक डालते हैं या कोई भी खाद डालते हैं वो इसलिए डालते ताकि ये जो पोषक तत्व हम अपने जो पौधा है, अपनी फसल है, उसको उपलब्ध करा पाए।
1: मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन होता क्या है।
0: एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें हम रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद जिसमें FIM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आता है, इसके अलावा हरी खाद, जैविक उर्वरक जो आते हैं, और हमारा जो पहले की जो फसल अवशेष होते हैं हम उन सबका एक साथ हम उनका उपयोग करते हैं ताकि हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे और हमें अच्छा उत्पादन मिले।
1: जी डॉक्टर मीना यादव जी, तो कृषि के विकास में इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है?
0: ये हम सबको पता है कि जो हमारे देश में हरित क्रांति है वो 1960 के बाद हमारे देश में आई थी, और हरित क्रांति जब आई तो उसके बाद से ही जो रासायनिक उर्वरक जो है उनका जो इस्तेमाल है वो हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ा। बट रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के दौरान फार्मर जो है, हमारे जो किसान भाई बहन हैं, वो खादों को उन्होंने पूरी तरह से उनको नज़रअंदाज कर दिया और पूरी तरह वो जो भी हमारी रासायनिक जो उर्वरक है वो उन पर निर्भर रहने लगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो, अभी मैंने आपको जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था कि शुरुआत में बताया कि जो हमारा पौधा होता है उसको अपने जीवन काल में 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना पूरी तरह से विकास कर पाए। लेकिन अगर आप देखोगे जो हमारे मार्केट में जो रासायनिक उर्वरक मौजूद होते हैं वो मेजरली या मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होते हैं, या पोटैशिक फर्टिलाइज़र होते हैं, या फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, मतलब जो कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन, जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है, कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जिनके अंदर फॉस्फोरस होते हैं, कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोटेशियम होता है। मतलब हमारे जो मार्केट में जो रासायनिक उर्वरक हैं वो मुख्यतः इन्हीं 3 न्यूट्रिएंट के आसपास घूमते हैं। लेकिन अगर इन 3 पोषक तत्वों को छोड़ के भी हमारे पास अभी भी और 11 पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे को ज़रूरत है अपने पूर्ण विकास और अपनी वृद्धि के लिए, उदाहरण के साथ अगर मैं आपको ये समझाऊं तो एक्चुअल में जो हमारा मिट्टी होता है वो एक घड़े की तरह है जिसके अंदर जैसे कॉइन्स, जो सिक्के भरे हुए हैं, अगर मान लो हम उन सिक्कों को एक एक करके निकालते रहेंगे, उसमें डालेंगे नहीं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा घड़ा खाली हो जाएगा। उसी तरह से हमारी मिट्टी होती है, हमारी मिट्टी में वो सिक्के पोषक तत्व हैं, बट अगर वो पोषक तत्व हम हर बार फसल लगा लगा के निकालते रहेंगे और किसी भी तरह से हम उनको वापस मिट्टी में नहीं डालेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी मिट्टी से सारे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे, जो बहरहाल अभी हो रहा है।
1: मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रासायनिक एकीकृत उर्वरकों पर निर्भर रहने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं?
0: जी मैम, जैसे कि हम आजकल जो जो हमारे देश में जो हालात हैं वो यही है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो पोषक तत्वों के लिए एकमात्र वो उर्वरकों पे, रासायनिक उर्वरकों पे निर्भर रहते हैं। बट मैं आपको शुरुआत में ही बता

0: चुकी कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, हाँ मैं एक कि उनका फ़ायदा ये होता है कि जब हम रासायनिक उर्वरक हमारे खेत में डालते हैं, जैसे मान लो मैं मुझे अपने खेत में नाइट्रोजन डालना है, उसके मैं के लिए मैं यूरिया डाल रही हूँ, तो जिस मोमेंट में यूरिया डालूंगी तो वो क्या होता है कि वो पूरा का पूरा उस यूरिया में जितना भी नाइट्रोजन होगा वो मेरे प्लांट को 2 या 3 दिन के अंदर वो उपलब्ध करा देता है, 2-3 दिन या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर वो सारा का सारा जितना भी उसके अंदर पोषक तत्व रहेगा वो उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर यही एक जो फर्टिलाइज़र है या रासायनिक उर्वरक है उनका एक अच्छी बात है, बट जो अगर इनकी नेगेटिव बात की अगर बात करें तो अगर हम रासायनिक उर्वरकों का अगर लंबे समय तक अगर यूज़ करते हैं तो हमें ये पता है कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो पूरी तरह से केमिकल होते हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है। इन शॉर्ट अगर मैं इसका एक कंक्लूजन में बताऊं तो वही है कि जो फर्टिलाइज़र है उनका एकमात्र जो बेनिफिट है वो यही है कि वो जिस मोमेंट हम डालेंगे वो हमारे पौधों को तुरंत जो है पोषक तत्व वो उपलब्ध कराते हैं। दूसरा जो फर्टिलाइज़र होते हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉइल में पोषक तत्वों को ऐड करते हैं,
1: ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन मिट्टी को इनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। डॉक्टर मीना जी, अगर हम बात करें कार्बनिक खादों की, जैसे अभी आपने बताया कि कार्बनिक खाद बहुत ज़रूरी होते हैं, तो कार्बनिक खादों के उपयोग की सीमाएं क्या होती हैं या इनसे क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: देखिए जो कार्बनिक जो खाद होती है, जैसे इसमें FIM आता है, कंपोस्ट आता है, वर्मी कंपोस्ट आता है, तो ये जो खाद होती है इनका इनका अच्छी बात ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये क्योंकि कार्बनिक खाद है तो मतलब इनमें इनके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, और यही कार्बनिक पदार्थ जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तो ये हमारे मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं को खाना प्रदान करता है, हमारी जो मिट्टी है उसकी भौतिक, रासायनिक और जो जैविक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छा करने में मदद करता है, मतलब ओवरऑल हमारा जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को अच्छा करता है। लेकिन इनके साथ जो प्रॉब्लम है, अगर हम केवल खाद डालेंगे, हम रासायनिक उर्वरक नहीं डालते हैं, तो उससे दिक्कत ये आती है क्योंकि जो खाद है, ये जो FIM है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, और दूसरा इनसे जो रिलीज होता है, मतलब ये जो पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे करवाते हैं, मतलब धीरे धीरे इनका अपघटन होगा और धीरे धीरे ये जो है पौधे को पोषक तत्व प्रदान करते, तो उससे दिक्कत ही आ जाती है। जैसे जो भी हमारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी पोषक तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे मक्का हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, तो इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी जो पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती अगर हम केवल खाद प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो पोषक तत्व बहुत थोड़ी मात्रा में हमारी मिट्टी में ऐड करते हैं, और दूसरा कि वो बहुत ही धीरे धीरे ऐड करते हैं, तो यहाँ इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो हमारा उत्पादन है वो कम हो जाता है। बट हाँ, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि ये जो कार्बनिक खाद होती है ये हमारी ओवरऑल जो हमारी मिट्टी की सेहत है उसको अच्छा करते हैं, उसमें रहने वाले हमारे जीवाणु हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और उनकी भी जो कार्य करने की जो क्षमता है उनको बढ़ाने का काम करते हैं।
1: बिल्कुल। डॉक्टर मीना जी, हरी खाद फसलों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में कैसे सहायक होती है?
0: एक्चुअल में जो हरी खाद है, पहले मैं ये बता दूं कि हरी खाद होता क्या है। तो हरी खाद जो होता है इसमें, जैसे अभी तक जो भी हमने कार्बनिक खादों की बात की वो सभी जो खादें हैं वो तैयार होती हैं जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनके सड़ने गलने से जो खाद बनती हैं वो सभी कार्बनिक पदार्थ में आता है। बट कि जबकि जो हरी खाद है इसमें हम कोई भी किसी भी तरह से जो पौधे की जो भी मटेरियल हम लेते हैं हम उनको सड़ाते गलाते नहीं हैं। इसमें क्या किया जाता है हरी खाद में कि जैसे अभी हमने मैंने अपनी फसल हमने उसकी कटाई कर दी, कटाई करने के बाद जब मैं दूसरी फसल मैं उगाऊंगी उससे पहले जो बीच में मुझे समय मिलेगा उसमें मैं क्या करूँगी, कोई भी दलहनी जो फसल है वो मैं ले लूँगी, जैसे कि डेंचा हो गया, सन हेम्प हो गया, या लोबिया हो गया, या मूंग हो गया, इनमें से मैं कोई भी क्रॉप जो है वो लेके मैं क्या करूँगी, हम अपने खेत में लगा दूँगी, और जब वो क्रॉप जो है 45 से 60 दिन की हो जाएगी, उसके बाद क्या करूँगी मैं उसको, हम उसको क्या करते हैं अपनी मिट्टी के अंदर उसकी प्लोइंग करवा देते हैं, उसको उसकी जुताई करवा देते हैं। अच्छा। इससे होता क्या है, मैंने ये बोला कि वो हम जो करते हैं जुताई करवाते हैं वो केवल 45 से 60 दिन पे करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि एक्चुअल में हमें ध्यान रखना है कि जो भी मैंने दलहनी फसल लगाई है उसमें फ्लावरिंग नहीं आनी चाहिए, उसमें फूल नहीं आने चाहिए, फूल आने से पहले ही मुझे उसको मिट्टी के अंदर मुझे मिला देना है। वो इसलिए क्योंकि अगर उसमें फूल, क्योंकि जब तक फूल नहीं आते हैं पौधे में तब तक क्या होता है कि उसका तना बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वो ईजिली उसका डिकम्पोजिशन बहुत ही फास्ट हो जाता है, लेकिन अगर उसमें फूल आ गए तो तना सख्त हो जाता है और उसका डिकम्पोजिशन फिर उतना ईजिली नहीं हो पाता।
1: डॉक्टर मीना जी, अभी आपने फसल अवशेष की बात की, तो फसल अवशेष मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में कैसे योगदान देते हैं और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में इसका उपयोग कैसे करता है, संक्षेप में जाके?
0: जी मैम, देखिए मैम, हम देखते हैं कि हर जगह जो फसल अवशेष हैं उनको आग लगा के उनको नष्ट कर दिया जाता है, बट इससे दिक्कत ये आती है कि जो फसल अवशेष होती हैं वो भी पोषक तत्व का स्रोत होते हैं और अगर आप उनको जला दोगे तो वो सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, जब आप खेत में आग लगाते हो तो उस मिट्टी का टेम्परेचर जो है वो इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ पे जो रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं वो उस आग की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं अगर आपकी मिट्टी में अगर जीवाणुओं की संख्या नहीं रहेगी तो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, मिट्टी की जो भी कार्य करने की या उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाएगी।
1: जी,
0: तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस जो भी हमारे फसल अवशेष हैं उनको जलाने के बजाय एज ए खाद की तरह उसको प्रयोग करें, लेकिन एक ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप फसल अवशेष जो हैं जब आप उसको वापस मिट्टी के अंदर डालें तो वो कम से कम आपका 25 से 30 दिन पहले होना चाहिए, जब आपकी आप नई फसल लगा रहे हो टाइम आपका 25 से 30 दिन होना चाहिए ताकि जो भी फसल अवशेष मिट्टी के अंदर गए हैं उनका डिकम्पोजिशन हो पाए।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर मीना यादव जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि फसल जो अवशेष हैं उनको हमें जलाना नहीं है बल्कि उनको खाद की तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि श्रोताओं मिट्टी हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यदि हम और आप उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तभी कृषि उत्पादन भी लंबे समय तक बेहतर बना रह सकता है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन न केवल अधिक उत्पादन का मार्ग दिखाता है हमको बल्कि आने वाली अपनी जो पीढ़ियां होंगी उनके लिए भी कृषि संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर मीना यादव जी, आप यहाँ आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: नमस्कार।
2: मैया बहना हरों, अब अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता, सतत कृषि के विकास में एकीकृत पोषक प्रबंधन की भूमिका। विशेषज्ञ हती डॉक्टर मीना यादव और उनसे बातचीत करी हती राधा चौरे बहन ने। भैया बहनाहरों, देखो का है कि जब हम अपनी फसलें कहूँ बेच पे बाजार में ले जाते हैं तो बड़ी ही समस्याएं हमारे किसान भैया बहनन को उठाने पड़त हैं। ई के लाने भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जी अंजात है, जी को नाम है बाजार हस्तक्षेप योजना, जो एक मूल्य समर्थन योजना है। ई को मुख्य उद्देश्य है खराब हुई बारी बागवानी और कृषि फसलन के उत्पादकन को बम्पर पैदावार के समय अगर कीमतन में गिरावट से बचाने हैं तो जो योजना काम में आते हैं, और किसान भैया बहनें जो हैं वे अपनी उपज को औने पौने दाम पे बेच बेचने सोई बच जाते हैं। योजना के बारे में एक और बात जो है कि ई के दायरे में वो फसलें आते हैं जो MSP के दायरे में नहीं आती हैं। ई में मुख्य रूप से शामिल हैं प्याज, आलू होगा, टमाटर होगा, सेव है, लहसुन, संतरा, अंगूर और मशरूम जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलें शामिल होती हैं। योजना राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही है और अब फसल की आवक अधिक होने से बाजार में भाव ना मिले और सामान्य वर्ष की तुलना में 10% या उससे अधिक की गिरावट आते हैं तो जो योजना कारगर साबित होते हैं। ई के लाने नुकसान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में साझा करो जाते हैं, और बता दें कि पूर्वोत्तर राज्यों के लाने जो अनुपात 75-25 को है। केंद्र सरकार ने योजना के लाने प्रभावी बनावे एकीकृत PM आशा पहल को भी हिस्सा बना दो है। इसके तहत राज्य सरकारन को भौतिक खरीद के बजाय बाजार हस्तक्षेप मूल्य और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच के सीधे अंतर पर किसानन के बैंक खातन में खरीद की राशि ट्रांसफर करने की अनुमति भी दी गई है। सो तो होती जानकारी, और अब आप और उनको हम सुनवा देते हैं जो जल संरक्षण लोकगीत अजुद्दी दास कबीरपंथी को गाओ भाव।

भैया बहना अब आप और उनको कछु सलाह दें देते हैं। खरीफ फसलन की बुआई की तैयारी करवें और पर्याप्त नमी मृदा में बनाए रखें। ई किलाने बुआई के पहले खेतन को मिट्टी हल्की करवे की सलाह दी जाते हैं। मृदा परीक्षण किलाने खेत की मिट्टी के नमूना भेजवें और हर 3 साल में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके फसल अवशेष भी खेतन में न जलापे। मेड़बंदी के संगे संगे जल मृदा संरक्षण संबंधी कार्य करवे की सोई सलाह दी जाते हैं। आगामी खरीफ मौसम की लाने सोयाबीन मक्का अरहर की उन्नत किस्मों के बीजन की व्यवस्था भी करके आप और रखें। सोयाबीन की बुआई रिस फैरो और ब्रॉड फैरो पद्धति से करवें ताकि बेहतर अंकुरण और जल निकास सुनिश्चित हो पावे। और चलो अब आप और उनको सुनवात हैं जो अगलो लोकगीत अखिलेश सोनकिया को गाओ भाव।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा, यह आकाशवाणी भोपाल है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट।
3: कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।
4: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता। देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है।

है जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती। हालांकि मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों और विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों को दिए गए पुरस्कारों को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता। ये सम्मान कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से

0: व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
1: इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज जैसे जाने माने नाम सम्मिलित हैं। इसके अलावा चिकित्सा, समाज सेवा, कला और लोक मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई अन्य हस्तियों को भी यह सम्मान दिया गया। इनमें डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयडू, भगत सिंह कोश्यारी, के आर पलानी स्वामी, एस के एम मेलानंदन, शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे, शिबु सोरेन और वी के मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव शंकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाजसेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
2: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
3: गांव इरानार में ही मेरा जन्म है। यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे। हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर के हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे। तब से माँ बाप के साथ पे माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है।
2: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
3: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे हमको समझ में नहीं आता है। हम उनके पास जाना है, उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है। तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
1: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रविलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नोवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रहीं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2022 में बंगभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
4: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना के बारे में हमें बताएं।

0: किताब एक ड्रामा का है, पारसी खातिर, पारसी खातिर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो अठवा तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
0: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
1: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना टूट जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पिछले 3 दशकों से अधिक समय से वे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरदराज और आदिवासी बहुल इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने, कुपोषण से लड़ने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
3: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहाँ से गतिविधियां शुरू की, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
4: भुजबार में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय। हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबुजमाड़ में गए थे।
3: महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुजमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या देखा?
5: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रहते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
2: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
6: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
7: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
6: इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
7: जो हमारी परंपरागत किस्में थीं अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थीं और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हो, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
6: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
7: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
2: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 ICC खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत। पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के

0: माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
1: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कुदरत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, मजरू सुल्तानपुरी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब सुनिए हर जाई फिल्म का यह नगमा। निदा फाजली के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने।

आप तो ऐसे ना थे। लीजिए सुनिए इस फिल्म से हेमलता को, निदा फाजली का गीत और उषा खन्ना का संगीत।

मांग भरो सजना। लीजिए सुनिए इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, कुर्बानी फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है कंचन, मनहर और आनंदी। गीत इतिवर का और संगीत कल्याण जी, आनंद जी का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:42 होने को हैं, वक्त है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार

0: देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के 7वें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय

0: सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे एनएसए की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ उनरवा के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफ़ी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4

0: recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुताल्लिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनेकास से मुताल्लिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हाउस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के आईएएस के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानिब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और प्लेबैक्स गुलूकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बाद अज़मर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57

0: फणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है शान फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है राहुल देव वर्मन ने।

आशा भोंसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में सुनिए राम बलराम फिल्म का ये नगमा, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

बपी लहरी और उषा उत्थुप को सुनिए वारदात फिल्म से। रमेश पंत के लिखे गीत की धुन बनाई है बपी लहरी ने।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सलीम अल्लावाले का तबला वादन।

उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब।

Dinning and the dagger,

दादा दिन्ना एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः दादी दादा दिन्ना दा तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक

दिल्ली घराने का एक बहुत ही खूबसूरत कायदा उस्ताद अमीर मोहम्मद खान।

फरमाइशीगत तिपल्ली चौपल्ली उसमें एक दुपल्ली दिन्ना ना दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना दिन दिन्ना दा दिन दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़ दगड़

तिपल्ली का तीन पल्ले तीन ले, पहली धा पहली संपर, दूसरी धा दूसरी संपर, तीसरी धा तीसरे संपर। दिन दिन दिन तक के तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक के धा तक

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सलीम अल्लाह वाले का तबला वादन। तबले पर तीन ताल, वायलिन पर लहरा दिया था प्रवीण शिवलिकर ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश KT Thomas को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।